0: तैरना सीखा तो बढ़िया उस्ताद बुला ही रखे। इसलिए डुबकी लगा करके नीचे नीचे चलना और जो है फिर ऊपर तैरना, लेट के तैरना, खड़े होके तैरना, नाना प्रकार से जो तैरने की कलाएं हैं वो सारी कलाएं उसने सीख ली। जब सारी कलाओं से निपुण हो गया तो इतने में जो है उसका समय भी पूरा हो गया। एक वर्ष का ही समय निश्चित था, वहां का नियम था। अब जब समय आया तो जनता जो है अब दुखी होने लगी, कहा अब तो ये राजा हमारे हाथ से चला जाए। लेकिन वो खुश था, उसके चेहरे पर कोई मिलानता नहीं थी, कोई सिकुड़न नहीं थी, वो प्रसन्न था, क्योंकि उसने अपना कार्य व्यवस्थित रूप से किया था। अब जो है जनता दुखी थी, जब राजा हमारा जिसने इतना सुख दिया वो चला जाएगा, लेकिन कर क्या सकती थी, वहां का नियम था। अब नियम के अनुसार जो है पहल की सजाई गई, उसे बैठाया गया और नए राजा का चयन किया गया, लेकिन वो रो रहा था पहले ही से। अब ले जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां पर उससे कहा गया कि भाई इनको है सारी सत्ता संभालो। उसने कहा जो नया राजा बनने वाला था उससे कहा ये लो चाबियां, और सारे वही खाते दिए, और उसने उससे कहा कि आप जैसे मैंने राज्य चलाया है ठीक इसी प्रकार से आप भी राज्य चलाओ। हैं बोलते तो हैं हम लोग, दादा चरत श्रेष्ठ तत्त देवी तरोजना सैयद प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तन, लेकिन वह अनुवर्तन नहीं होता। अब जो है ये उसने कहा और कहा कि मैंने सारी रूपरेखा या सहारा बायलॉज बनाकर के रख दिया है, कैसे राज्य को चलाना है ये सब जो है खजाने की कोठरी में ही हमने रख दिया है, ये चाबियां लो, जैसे मैंने राज्य को चलाया है ठीक इसी प्रकार से आप राज्य को चलाएंगे तो आप प्रजा को भी सुखी कर सकेंगे और आप भी सुखी हो सकेंगे। और ऐसा कहकर के वह प्रसन्नता पूर्वक उस पाल की नौका में बैठ गया। जनता ने जो ले जाकर के गहरे समुद्र में जाके उसे छोड़ दिया, डुबा दिया, वो डुबकी ले गया। उधर से वो जो लोग हैं नौका को वापस ला करके नए राजा को उन्होंने बैठाया, उसका अभिषेक किया और शंख नाद भेरी आदि बजाने लगे। और जब देखा तब तक वो डुबकी लगाए हुए चलता रहा, फिर धीरे से निकल के बाहर आया जल के ऊपर, उसने देखा चले गए तो तैरता रहा। लेकिन इससे पहले ही उसने एक काम और किया था, ये है बुद्ध सिंह की बुद्धिमत्ता। वो क्या, उस राज्य में रहते रहते ये सब काम भी किया, लेकिन ये सब काम करते हुए, ये लौकिक उन्नति करते हुए उसने क्या किया था, उसने देखा कि उन्नति होने पर भी कोष तो और वृद्धि को प्राप्त हो रहा, अब इस कोष का क्या प्रयोग होना चाहिए, क्या सदुपयोग होना चाहिए, तो उसने समुद्र के पार एक दूसरा टापू था, उस टापू पर जमीन खरीदी और उस टापू पर जमीन खरीद करके वहां एक सुंदर महल बनवाया, वहां जो अयोग्य वृक्ष समझे उनको कटवा दिया, जो योग्य वृक्ष समझे उनको रखा और नवीन वृक्षों को वहां लगवाया और सुंदर जो है भवन बनवा करके और सुंदर जो है सैनिकों को वहां स्थापित किया और सुंदर मकानों को बनवा करके जनता को वहां बसा दिया और राज्य का आधा खजाना वहां पहुंचा दिया। और ये सब तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। जब ये सब उसने कर रखा था तो तैरते हुए जब गया तो पहले से वहां तैनात थे लोग, जैसे ही किनारे पहुंचा तो लोगों ने उसे निकाल लिया और सुंदर गर्म जल से स्नान आदि करा करके और उस टापू पर उसे अभिषिक्त कर दिया। वहां का वह राजा बन गया और वहां का राजा बन गया और वहां के विकास को देख करके उस टापू की तरफ जो जंगली राज्य थे वहां के राजाओं ने भी जो छोटे छोटे राज्य थे उसे स्वीकार कर लिया कि ये बहुत प्रवीण है, उसकी शरण में आ गई और एक सम्राट बनकर के वहां पर उसने जो है फिर राज्य चलाना प्रारंभ किया और सारे जंगली राजाओं को जो है सुखी बना दिया। ये तो है क्या उदाहरण, दृष्टांत। इसका तात्पर्य क्या, इसका तात्पर्य ये संसार ही टापू है। ये संसार ही टापू है और इस टापू पर हम लोग भी आए हैं, है? सारे प्राणी आए हैं राज्य करने के लिए। तो वो कितने समय के लिए आए, वो भी निश्चित समय है। इसके बाद जो है आप राज्य कर सकते नहीं। और ये मर्त्य लोक ही वह है, क्या है का यही समुद्र है, इसमें आपको डूबना ही पड़ेगा, कोई भी चाहे तो बच सकता नहीं। अब जो है यदि हम ऐसा विचार कर लेते हैं कि वास्तव में इस शरीर के अंतर्गत एक एक देवता बैठा हुआ है, एक एक अवयव के अंतर्गत कितनी सामर्थ्य है, कितना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना अन्य किसी के पास नहीं। इसलिए बुद्धि प्रधान समस्त योनियों में, समस्त प्राणियों में यदि बुद्धि की प्रधानता है तो किसमें है, एक मानव में है। और यदि मानव इसको नहीं कर पाता है तो इससे बड़ी उसकी हानि कुछ नहीं। आप श्रुतियों में सुनते रहे, यह चेद वेदी अथ सत्यवस्ति। तो अब जो है ऐसा संकेत वहां पर दिया गया, तो ये मर्त्य लोक है। अब यदि हम शुद्ध मन को, शास्त्र की बात को स्वीकार करते हुए और अपने स्वरूप को समझते हैं, तो इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा, अर्जुन इस हृदय की दुर्बलता का त्याग कर, है उत्तिष्ठ और उठ और कर्म कर। लेकिन कैसे कर्म कर, तो वो सब रूप रेखा भगवान ने बतला दी। फिर वो कर्म तुझे लिपायमान नहीं कर पाए, ये सारा का सारा गीता का रहस्य भगवान ने दिया। और इसी को श्रुति कहती, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजविषे कतम क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोऽस्ति न कर्म लिप्यते तरे। ये सारे संकेत की, और केवल शास्त्र ही नहीं, जिन ऋषियों ने इसे हृदयंगम किया, उन ऋषियों ने जिन्होंने शास्त्र को कभी देखा भी नहीं, उन्होंने भी स्वाद की चर्चा की। कबीरदास कौन से पढ़े लिखे थे, लेकिन जीवन में अनुभव आया, उस तत्व को समझा, तो उन्होंने भी क्या कहा, क्योंकि नियम तो ये है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शिवाश ना भुक्तम खियते कर्म कल्पकोट, ये नियम है। लेकिन ये शास्त्र क्या कहता कि कर्म लिपायमान नहीं करेगा, भगवान ने भी कह दिया नमाम कर्माण लिपंती, है ना। तो कैसे लिपायमान नहीं करेगा, कैसे वो दुख हमारे सामने नहीं आएगा, और कबीरदास ने भी लिख दिया। और कबीर ने लिखा, काजल की कोठरी में कितनो हु सयानो जाए, पे एक लीख काजल की लाग है, पे कोयले का व्यापार करो। और चाहो कि हम कोयले की कालिक से रहित हो जाएंगे तो ये संभव, क्योंकि वो रेक उड़ेगी आपको, जो है कालक तो लगेगी। अब जो है कबीरदास ने कहा नहीं, इसका भी उपाय है। कहा क्या उपाय है, तो कहने लगे कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रम रहा दूजा कहां समाए। जिसकी सिंदूर की चर्चा कर दी, और सिंदूर का रूप क्या है, केवल लाल रंग को हम देख करके सिंदूर कह दें वही नहीं, सिंदूर की परंपरा क्या थी। सिंदूर जो निर्मित होता था तो सिंदूर में दो वस्तुएं होती, एक तो लाल रंग होता और दूसरा पारा, दूसरा क्या होता पारा। लेकिन कैसा पारा होता, सोधा हुआ, सोधने का मतलब उसके अंदर जो विकार है उसकी निवृत्ति कर देना ही शोधन है। तो पारा का स्वभाव क्या है, पारा का अपना निजी गुण क्या है, चंचलता। पारा कैसा होता है, चंचल, स्थिर नहीं रहता, लेकिन जब उसको शोध दिया जाता है तो वही पारा स्थिर हो जाता है। और ऐसे पारे को, और फिर उस पारे में स्थिरता और भारीपन भी होता, तो जब चंचलता समाप्त हो गई तो वो स्थिर हो जाता है। और उस पारे से युक्त जो लाल रंग होता, लाल रंग अनुराग का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक, और उससे जब युक्त होता है तो वो होता है सिंदूर। इसलिए सीमांत केशवे से इसका भी तात्पर्य क्या था, सिंदूर लगाने का मतलब क्या था, मन भी चंचल है, उस चंचल मन को स्थिर कर देने का नाम ही क्या था, ये सब हमारे यहां परंपराएं थी। ये परंपराएं जो है इनके उद्देश्य हैं, इनके तात्पर्य, लेकिन उन परंपराओं को हम समझते ही नहीं। आजकल शिक्षा भी हम वह ग्रहण करते हैं जो स्वतः सिद्ध है, लेकिन जो शिक्षा जो है सीखनी चाहिए वो शिक्षा को तो हमने हटा दिया और वो शिक्षा लिया है जो स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध की सिद्धि करने की क्या जरूरत, सिद्धि तो उसकी करनी है जो हमारे लिए अज्ञात, जिसको हम सीखने में असमर्थ हैं, ऐसी शिक्षा को सीखना चाहिए। तो अब जो ये परंपराएं थी, खैर उसकी चर्चा फिर अलग चली जाए। तो यहां संकेत जो किया गया, तो जैसे चंचल मन आदि की स्थिरता होना और अनुराग का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, वहां पर एकता हो जाना, तो ये सब संबंध बतलाए गए। तो वैसे ही जब मानव के जीवन में यह चंचल मन एक जगह स्थिर होता है और कहां प्रेम करता है, तो कहां परमात्मा, और निर्णय कर लेता है, अपने मन के विकार को दूर कर लेता है। जब मन का विकार दूर होता है तभी मन निश्चित सत्य संकल्प वाला होता है, है? तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, वो सत्य संकल्प तभी ले पाएगा। इसलिए उस अर्यमा से किया गया कि हमारे मन का शोधन तू ही कर सकता है, हमारे मन को विकार जो है उनको निवृत्त तू कर सकता है, और वो बल दे सकता है जिस बल के द्वारा हमारे अंदर वो विवेक शक्ति आएगी, और विवेक शक्ति आएगी तो बुद्धि में वह निश्चय आएगा और उस निश्चय के द्वारा हम सुख को प्राप्त कर लेंगे और हम लौकिक उन्नति भी कर सकेंगे और पारलौकिक उन्नति भी कर सकेंगे। जैसे उसने उस टापू पर रह करके ये सब कुछ कर दिया ऐसे ही, और तब क्या है फिर हमारी डिवो देने पर भी मृत्यु नहीं होगी। स्तुति तो कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवनीयन्ते, तो क्या मतलब उसके प्राण कहां गए, होता है तो जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं, जाते हैं लोग है? और अनाड़ी भव सागर से है तो उनको तो डूबना पड़ेगा। तो आर्य अनार्य ये शब्द होते, तो यहां पर भी आर्य मन, अर्य मन, वह अर्य मन माने श्रेष्ठ मन, सुसंस्कृत मन, और अर्थात निर्विकार मन। तो ऐसे निर्विकार मन वाला, निर्विकार संकल्प वाला ऐसा जो देव है, वो देव ही हमारे अंतर्गत रहने वाले उन विकारों को जब निवृत्त करेगा तो हमारा शमन होगा, हमारे विकारों का शमन होगा, शमन विकारों का होगा, तो निर्विकार स्वरूप हमारा प्राप्त होगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए यहां संकेत किया कि सन्नो भवत्वर्यमा, हे अर्यमा न मेरे लिए शम भवतु, शमन करने वाले हो, अर्थात वह बल वह शक्ति हमें प्रदान करो जिससे हमारा मन जो है विकारों से रहित हो, स्थिरता को प्राप्त हो और जो है स्वच्छता को प्राप्त हो। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो मन जो संकल्प करेगा तो शुद्ध संकल्प करेगा, और जब मन शुद्ध संकल्प करेगा तो बुद्धि उसका निर्णय लेकर के और उसके अनुसार अनुवर्तन करेगी, और जब बुद्धि उस वृत्ति पर स्थिर हो जाएगी और बुद्धि के स्थिर होने पर फिर क्या होगा, का उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, प्रागतिक हमारी स्थिति हो जाएगी, उन्नत हमारी स्थिति हो जाएगी। और ये जब स्थिति हो जाएगी तो हमारे जीवन की जो कुटिलता है वो समाप्त हो जाएगी, सरलता हमारे जीवन में आ जाएगी, और सरलता आ जाएगी तो कुटिलता क्या है, कुटिलता का मतलब है छिपाव। फिर हमारे जीवन में जो छिपाव है, छिपाव किसको लेकर के है, अज्ञान को लेकर। तो अज्ञान जब आता है तो हमारे अंदर अहम लाता है, और अहम के आने पर मम आता है, और मम के आने पर कामनाएं होती, और कामना के होने पर राग द्वेष होता है, और राग द्वेष होने पर अयोग्य संबंध होता है, और अयोग्य संबंध को लेकर के ही जन्म मरण होता है, और इसी जन्म मरण को लेकर के सारे दुख आ जाते। तो इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है कि हे अर्यमा, अर्थात श्रेष्ठ मन, सुसंस्कृत मन वाले हैं, बल से युक्त जो आप हैं वो हमें क्या करें, ऐसा बल दें कि हम भी अपने मन को निर्विकार बना सकें। तो इस प्रकार से यहां ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, इसी प्रकार से आगे संकेत करते हैं। सन्न इंद्रो बृहस्पति, आगे कहा इंद्र न सन, हे इंद्र तुम जो है मेरे लिए क्या करो, कल्याण करो, शमन करो मेरे विकारों का। तो इंद्र क्या है, इंद्र यहां पर बल का देवता, श शौर्य का देवता है, वीर पराक्रम का देवता है, स्वामित्व वाला है। तो इंद्र के अंदर वह स्वामित्व है, इंद्र के अंदर वह पराक्रम है, इंद्र के अंदर वह बल है। तो ऐसे इंद्र से, अब इंद्र शब्द का कहीं ईश्वर पर कर लिया तो यहां तो भी वही तात्पर्य है, और देवता संबंधी भी लिया, और यहां पर जो है शरीर को लेकर के यथाए है पिंडे तथा ब्रह्मांडे करके संकेत ही किया जाता, तो उसको समझ ही लेना आप लोग सब, तो संस्कृत तो हो ही। तो यहां पर जो है ऐसे इंद्र से, बलशाली इंद्र से प्रार्थना। तो इंद्र से क्या मांग रहे, जब अर्यमा तक पहुंच गई, शुद्ध संकल्प निश्चय वाली बुद्धि निश्चयात्मका वृत्ति हो गई, तब अब क्या चाहिए? तो कहा बल चाहिए। कहें बगल बल के भी सुख मिल सकता नहीं, बल की भी आवश्यकता। अब बल चाहिए तो बल कौन सा चाहिए? शस्त्र बल, धन बल, जन बल, क्या ये बल चाहिए? ये नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म बल, ये भी सब बल, विद्या बल, ये सब बल हैं, लेकिन कहा इन बलों से काम नहीं होगा। इसलिए भक्ति पक्ष में भी जहां मानस में तुलसीदास ने सरल भाषा में लिख दिया, जहाति पहाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई है, भक्तहीन नरसो है कैसे, और जिनु जम वारिद बिनु जल भारिद पेखिए जैसे, ये संकेत कर दिया, वही यहां संकेत है। तो बल कौन सा चाहिए? ये सब बल काम आने वाले नहीं। तो कौन सा बल हो? आपने जिसका निश्चय किया, उस निश्चय में ही आपकी स्थिरता हो जाए, उसी में रमण होने लगे। आत्मनिर्भर, आत्मना, संतुष्टता, ये सब इसी के प्रतीक है, ये जो कहा गया। तो अब जिसका निर्णय लिया है, उसी निर्णय में हमारी जो है स्थिति हो जाए, तो उस बल का नाम। इसलिए श्रुति कहती नायम आत्मा बल ही ने न लभ्य। तो कौन से बल की बात की श्रुति? तो वो बल क्या है? इसलिए बलस्य भावः इत बाल्यः, बलस्य भावः इत बाल्यः, बल का भाव जिसमें रहे उसी को क्या कहते हैं? बालक। बालक किसे कहते हैं? का जिसमें बल हो। कौन सा बल है बालक में? बालक के अंदर कौन सा बल है? बालक के अंदर बल है विधि निषेध से रहित होना। इसलिए भगवान क्या कहते? त्रैगुण्या विषया वेदा, निस्त्रैगुण्या भवार्जुन, तीनों गुणों से परे हो जा। और जब परे हो जाएगा तो कहने लगे ऐसा जो है व्यक्ति है तो पथ विचरता को विधि को निषेधा, उसके लिए कोई विधि और निषेध नहीं रखता। ये संकेत, वही संकेत यहां इतने अंश में, बालक का उदाहरण इतने अंश में दिया कि उस बालक में विधि और निषेध की रहता होती। तो क्या विधि और निषेध? तो देखो सामान्य रूप से समझो, शास्त्र कहता है, वेद कहता है स्नात्वा भुंक्ते, स्नान करके ही हमें क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। इस वेद का उद्घोष है, वेद का आदेश है, वेद की शिक्षा, तो हमें स्नान करके भोजन करना चाहिए। लेकिन ये तो वेद का नियम हो गया, वेद की विधि हो गई। आप हरिद्वार पहुंच गए और जनवरी के महीने में पहुंच गए और रात्रि के 2 बज रहे, ठंडी ठंडी हवा चल रही, आपके पास में है छोटा सा बच्चा 5-6 महीने का, और 2 बजे बच्चा रोने लगा, रोने लगा तो भूखा है। अब भूखा है तो आप क्या करेंगे? हाँ, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, कहोगे नहीं, वेद की आज्ञा है, स्नात्वा भुंक्ते, स्नान करके भोजन करना चाहिए। तो क्या करोगे? बच्चे को नहलवाओगे। ठंडी पड़ रही है, जनवरी का महीना और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, और उस हरिद्वार के है बंबई में हो तो चल भी जाए, लेकिन कहां हो? हरिद्वार। तो क्या करोगे? उस बच्चे को नहलवाओगे नहीं, किंतु क्या करोगे? उसे दूध पिलाओगे। वहां पर ये वेद की विधि काम नहीं है। तो बालक पर ये वेद की विधि लागू नहीं, अन्य के लिए लागू है, एक नागरिक होने के पश्चात फिर तो लागू है, लेकिन उससे बालक पर वो विधि लागू नहीं होती। और मान लीजिए मां जो है 10,000 रुपए की साड़ी पहन करके और भोजन करने बैठी हुई, बालक गोद में है, बालक गोद में है और वो भोजन कर रही, और बालक को मल का वेग आया और उस बालक ने मल का विसर्जन कर दिया, तो मां क्या उसे दंडित करेगी? हैं? मां उस बच्चे को दूसरे को पकड़ाएगी, बच्चे की सफाई करेगी, थाली को हटा देगी, है साड़ी बदलेगी और फिर बच्चे को गोद में लेकर के वहीं, तो ये बल किसमें है? उस पर कोई विधि और कोई निषेध लागू नहीं। मनुष्य के लिए तो है कि आपको जो है दिशा विधान आदि जो है एकांत देश में करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए, ये सब विधान है, लेकिन बालक के लिए ये कोई विधान नहीं है। तो बालक कैसा है? विधि और निषेध से परे। तो ये विधि निषेध से परे होना, ये बल आ जाए। और ये बल कब आएगा तो इसकी भी चर्चा है। तो इंद्र से प्रार्थना वही कर रहे। अब जो है सनत सनंदन सनत कुमार को आपने सुना, इन लोगों को कैसा बतलाया? ये भी विधि और निषेध से परे, इसलिए इनको क्या कहा गया? नाम ही रखा गया क्या? सनत कुमार। सनत शब्द का अर्थ क्या है? शाश्वत, अनवरत, निरंतर है, त्रिकालावाद्य कहे दोषी हो तो वो तो हो गया सनत। और कुमार, कुत्सित मारयत इति कुमार, जो कुत्सितता को जिसने मार दिया उसे क्या कहते हैं? कुमार। कुमारो पंचहायनः, पांच वर्ष के बालक को भी क्या कहते हो? कुमार कहते हो। तो जहां कुत्सितता नहीं है, जहां कोई कामना नहीं है, उसे कहते कुमार। ऐसे सनत कुमार हो, अब इनकी चर्चा क्या है और कैसे उनमें बल है इसकी चर्चा फिर कल बतला दें।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ஓம் சிவாய நம. நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனைகள். இதில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் பாடல் நன்றுடையானை இறந்துடவும் திருஞான சம்பந்தர் திருப்பதிகம். பாடிப்பவர் ஆனத்தூர் சகோதரர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நம.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

प्रजाभ्यो वर्चो दसो वर्चा से पवेथाम को ओसिकतमो ओसिकस्या आसिको नामा आसी।

कृष्णहये दैत्यद्रुमकुठाराय नमस्ते शूलपाणये महादनुजनाशाय नमस्ते परमेश्वर अम्बिकापतये तुभ्यं नमः सर्वास्त्रधारक नमस्ते पार्वतीनाथ परमात्मन्महेश्वर नीलकंठाय रुद्र

तुभ्यं अकार परतारक प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरघ्न महेश्वर नानावाच्याय देवाय वर्णप्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृते पुरुषात्पर निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोस्तुते सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकिने सर्वज्ञाय शरण्याय सद्योजाताय ते नमः वामदेवाय रुद्राय तदाप्यपुरुषाय च अघोराय सुसेव्याय भक्ताधीनाय ते नमः ईशानाय वरेण्याय भक्तानन्दप्रदायिने रक्ष रक्ष महादेव भीतान्नः सकलामरान् दग्ध्वा च त्रिपुरं सर्वे कृतार्था अमराः कृताः स्तुत्वैवं देवताः सर्वाः नमस्कारं पृथक् पृथक् चक्रुस्ते परमप्रीताः ब्रह्माद्यास्तु सदाशिवं भगवन्देवदेवेश त्रिपुरान्तकशङ्कर त्वयि भक्तिः परामेस्तु महादेवानपायिनी सर्वदा मेस्तु सारथ्यं तव देवेश शंकर अनुकूलो भव विभो सदा त्वं परमेश्वर।

0: जगतां पतये नमः, त्वयि भक्तिर्दृढा मेऽद्य वर्धमाना भवत्विति। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.

0: श्रेष्ठाचार्य जी ने अपने वार्तिक में इस स्तोत्र के विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। इस श्लोक का सामान्य अर्थ यह हुआ, विश्वम यानी तमाम नाम रूपात्मक व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ, जड़ और चैतन्य पदार्थ, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ, कार्य और कारण के रूप में जिन पदार्थों का प्रतिपादन करते हैं वो सारे पदार्थ, स्वर्ग से लेकर नरक पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, सारे के सारा पदार्थ समूह को यहां विश्व शब्द से संकेत किया। दो चीज हैं, एक अहम है और दूसरा इदम है। अहम एक अलग चीज है और इदम अलग चीज है। विश्व शब्द के अंतर्गत इदम आते हैं, यानी इदम पद के द्वारा जिसको भी संकेत किया जाएगा वह विश्व के अंतःपाती है, विश्व के अंतर्गत है। ये आपकी कुर्सी आप जो बैठे हैं, और ये आपकी दरी जो आप बैठे हैं, ये आपके कपड़े जो आप पहन रखे हैं, ये आपका शरीर जो आप जिस पर रहकर सारे कर्मफल भोगते हैं, ये सब के सब विश्व के अंतर्गत है। क्योंकि जो वृष्टि है वह समष्टि के अंग होकर समष्टि के रूप में ही रहता है, समष्टि से बाहर नहीं जा सकता है, और जो समष्टि का रूप है वही वृष्टि, और जो वृष्टि का रूप है वही समष्टि, समष्टि वृष्टि ये दोनों ही एक है। तो उसी को यहां कहा विश्वम। ये कैसा है विश्व, क्योंकि कल के प्रसंग में ये बता रहे थे, पदार्थ यानी व्यवहार करने के लिए पदार्थों में दो चीज चाहिए, एक तो पदार्थों में होनापना अस्तित्व, और दूसरा पदार्थ के जाननापना ज्ञातृत्व। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहारो प्रवर्तते। तब ये प्रश्न हुआ था कि उन पदार्थों में जो अस्तिता है, होनापना है, ये कहां है, पदार्थ के अपने निजी है कि पदार्थ से भिन्न किसी और का अस्तित्व में ये पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, उसके प्रतीत होना ये स्वतंत्र अपनी है कि कोई और के प्रतीति में ये प्रतीत हो रहे हैं। इसको आप यूं समझ लीजिए, ये पदार्थ होना ये स्वतंत्र है कि इसके होने में कोई और हेतु है। ये पदार्थ यहां है इसको प्रूफ करने वाला, प्रमाणित करने वाला पदार्थ से भिन्न है। एक बार आपको एक प्रश्न और पूछ लूं, यदि आप नहीं रहोगे तो ये पदार्थ है करके प्रमाणित कौन करेगा, पदार्थ खुद प्रमाणित करेगा कि नहीं करेगा?
1: नहीं करेगा।
0: तो इसे क्या सिद्ध हुआ, पदार्थ का होना पदार्थ में निर्भर न होकर किसी अन्य में निर्भर हो गया। यदि आप नहीं हैं, यदि आप नहीं हैं तो फिर पदार्थ के होने का प्रमाण कैसे सिद्ध होगा, पदार्थ है ये कौन सिद्ध करेगा, कैसे सिद्ध होगा? आपके पहले होने पर ही न पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध होगा। ये तो होने के बारे में आपसे प्रश्न किया। दूसरी बात, यदि आप ही नहीं रहेंगे तो पदार्थ ज्ञात होगा कि नहीं है? तो आप कहोगे कि मैं नहीं रहूंगा तो दूसरे तो रहेंगे ना। अरे बाबा, जिसको हम आप कह रहे हैं वो सब आपके अंतर्गत जितने भी जानने वाले हैं वो सभी आ गए। तो दुनिया में जानने वाले यदि कोई नहीं रहा तो पदार्थ जाना जाएगा कि नहीं? यदि पदार्थ में जाननापना उसके अपने निजी होती तो कोई न रहे तो भी वह जाना जाता। इससे यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ के होने का अस्तित्व में भी दूसरा प्रमाण है, यानी दूसरे के द्वारा दूसरे के अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। और जानने में भी यही है कि दूसरे द्वारा दूसरा जाना जा रहा है। विश्व के सारे पदार्थों का ये नियम है। तो अन्य के अस्तित्व में अन्य सिद्ध हैं और अन्य के ज्ञातृत्व में अन्य जाने जाते हैं। तो आपके होने पर ये सिद्ध होगा, अन्यथा सिद्ध नहीं होंगे। आपके जानने पर ये जाना जाएंगे, अन्यथा ये जाना नहीं जाएंगे। तो यही बात यहां बता रहे हैं मूल श्लोक के द्वारा। ये जो सारा जो विश्व है ये कैसा है? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। दर्पण के अंदर दिखा हुआ, दिखाई देने वाला जो दृश्य है, पदार्थ है, दृश्य है या पदार्थ है, उस दर्पण के अंदर के जो दृश्य हैं या पदार्थ हैं, वह पदार्थ स्वतंत्र हैं कि नहीं? वे पदार्थ जहां दिख रहे हैं दर्पण के अंदर, वहां वो पदार्थ स्वतंत्र है कि नहीं, अस्तित्व में है कि नहीं?
1: नहीं।
0: जिस तरह दर्पण के अंदर के पदार्थ स्वतः अस्तित्व में नहीं है, अपने निजी अस्तित्व में नहीं है, स्वतंत्र रूप में वो पदार्थ सिद्ध नहीं है, इसी तरह आप ये पक्का निश्चय कर लो कि ये सारा का सारा विश्व प्रपंच स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है। स्वतंत्र सिद्ध नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है। दर्पण में दिखाई पड़ने वाला दृश्य दर्पण के अंदर है कि दर्पण के बाहर है? बताओ। दर्पण के अंदर, दर्पण में दिखाई पड़ने वाला दृश्य दर्पण के अंदर है कि दर्पण के बाहर है?
1: बाहर है।
0: दर्पण में दिखाई पड़ने वाला दृश्य न दर्पण के अंदर है न दर्पण के बाहर है। ध्यान देना, हम दर्पण में दिखाई देने वाले दृश्य की बात पूछ रहे हैं, दर्पण से बाहर दिखाई देने वाले दृश्य के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। हम बिंब के बारे में नहीं पूछ रहे, प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहे हैं। हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। दर्पण में दिखाई पड़ने वाला दृश्य दर्पण के अंदर है कि दर्पण के बाहर है?
1: कहीं नहीं
0: है, न दर्पण के अंदर है न दर्पण के बाहर है। यदि दर्पण के अंदर हो तब वह दर्पण की सत्ता से भिन्न सत्ता होकर रहना पड़ेगा, या दर्पण के बाहर हो तो भी दर्पण के सत्ता से भिन्न सत्ता वाला होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि वह दर्पण में केवल दिख रहा है, न दर्पण के अंदर है न दर्पण के बाहर है। तो ये जैसे दर्पण का दृश्य केवल प्रतीति मात्र है, उस दृश्य का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। दर्पण के अंदर दिखने वाले दृश्य का स्वतंत्र कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो जैसे कई बार होता है, एक को दुगना करना हो तो कितना समय लगता है? तो आप व्यापारी हो तो आपको पता होगा कितना समय लगेगा। एक लाख को दो लाख करना हो, एक सौ को दो सौ करना हो, एक हजार को दो हजार करनी हो, एक पांच सौ को एक हजार करना हो, तो वो तो फिर आपका काम है कितना समय लगाते हो। लेकिन 1000 का नोट सामने रखा है और उसके सामने दर्पण रख दो तो वह 2000 के नोट हो जाएंगे कि नहीं है? तुरंत ही हो जाएंगे, तुरंत ही दो नोट हो जाएंगे, 1000-1000 के दो नोट होंगे नहीं। और दो को हजारों करने के लिए कितना लगेगा? उसके सामने फिर दूसरा शीशा रख दोगे तो वह दो के हजारों हो जाएंगे। क्योंकि एक रुपया के सामने दूसरा शीशा रख दोगे तो दो रुपये हो गए, है ना? उस शीशे में एक तो हो गया बाहर, दूसरा हो गया उसके अंदर प्रतिबिंब हो गया, तो दो हो गए, डबल हो गया। और उसके सामने और दूसरा शीशा रख दोगे तो फिर गिन के अनगिनत हो जाएंगे, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें, ये इस तरह प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब। देखो मूल एक है बिंब, उसका दूसरा प्रतिबिंब इधर के शीशे में पड़ा, और इधर के शीशे का प्रतिबिंब फिर इधर के शीशे में, इधर के शीशे का इधर, इधर। देखो बिंब के बिंब प्रतिबिंब के प्रतिबिंब प्रतिबिंब के प्रतिबिंब प्रतिबिंब कॉपी के कॉपी कॉपी के कॉपी। ये तो कितने जेरोक्स हैं, सब यहां खड़े हैं, यहां बैठे, कितने फोटो कॉपी है। और कॉपी कहां, मूल कॉपी कहां है पता ही नहीं है, सब फोटो कॉपी है। ये कैसे हो गया महाराज? तो बोले जितने अंतकरण होते जाएंगे उतने ही फोटो कॉपी होते जाएंगे। मूल कॉपी कहां है तो उसको तो किसी को पता ही नहीं है, वो तो खो गया है। फोटो कॉपी के सामने मूल कॉपी खो गया है, असली के सामने, नकलियों के सामने असली खो जाता है। रहेगा उसको पता तो लगाओ ना पहले, कहां है वो असली। और हम लोग तो उसी फोटोकॉपी में गुजारा कर रहे हैं, नकली में गुजारा कर रहे हैं, प्रतिबिंब में प्रतिछाया में गुजारा कर रहे हैं। और उसी को लेकर इतना अभिनिवेश, इतना घमंड, इतना अभिमान हो रहा है। तो असली कहां है उस किसी को पता नहीं है। इसलिए होता है ना, कोई व्यक्ति मेला देखने के लिए जाता है तो जब तक मेले में नहीं पहुंचता तब तक वो मेले से अलग रहता है और कहता है कि मैं मेला देखने जा रहा हूं। जब वो मेले में पहुंच जाता है तो वह मेला ही बन जाता है। बोलो, वो मेला देखता है कि मेला बनता है? मेला बन गया। परिणाम क्या हुआ कि वो मेला देखने वाला मेला बन गया, और दूसरा कहता कि मैं भी मेला देखने जाऊं। और जाते जाते जब नजदीक पहुंचता है तो क्या हो जाता है, वो भी मेला हो जाता है, मेला का ही एक अंग बन जाता है। तो सभी मेला देखने के लिए जाते हैं और मेला देखते नहीं परंतु मेला हो जाते हैं, और कह के आते हैं कि मेला देख के आया था। किसको देखा तुमने, किसको देखा? तो मेला देखा, मेला हो गए, होकर आए, देखकर नहीं आए, मेला होकर आ गए। तो यहां यही बात कह रहे हैं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। ये सारा का सारा विश्व दर्पण में दिखाई देने वाले पदार्थों की तरह है, नगरी की तरह है, वस्तुओं की तरह है। अब जब आप दर्पण में दिखाई देने वाले पदार्थ के बारे में समीक्षा करते हो कि ये पदार्थ दर्पण के अंदर है कि दर्पण के बाहर है, तो आप न दर्पण के अंदर सिद्ध कर पाओगे न दर्पण के बाहर सिद्ध कर पाओगे। पदार्थ का दर्पण के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दर्पण में पदार्थ है ही नहीं और पदार्थ खुद है ही नहीं। पदार्थ खुद नहीं है, दर्पण में दिखाई पड़ने वाला पदार्थ खुद दर्पण में नहीं है, दर्पण के अंदर भी नहीं है, दर्पण के बाहर भी नहीं है। ये अलग है कि उसका जो बिंब है वो स्वतंत्र पदार्थ है, उसके दर्पण से कोई संबंध नहीं है फिर। और दर्पण से जिसका संबंध है वो न दर्पण के अंदर है न दर्पण के बाहर है, केवल प्रतीति मात्र है। ये सारा का सारा विश्व क्या है, उसी तरह है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि वहां दर्पण अधिष्ठान है और उस अधिष्ठान दर्पण में प्रतीति के रूप में पदार्थ दिख रहे हैं, अनिर्वचनीय रूप में पदार्थ दिख रहे हैं, क्योंकि उसको भिन्न भी नहीं मान सकते, अभिन्न भी नहीं मान सकते। यदि अभिन्न मानते हैं तो उसको दर्पण ही है कहना चाहिए, पदार्थ है क्यों कहते हैं? भिन्न मानते हैं तो फिर उससे अलग होना चाहिए, तो अलग भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। इसलिए जहां इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वहां वेदांत दर्शन उसको कहता है अनिर्वचनीय। दर्पण में जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं वह अनिर्वचनीय दृश्य है। तो वहां अधिष्ठान तो दर्पण है, फिर यहां ये सारा विश्व कहां दिख रहा है? तो किसको दर्पण माना जाए? तो निजांतरगतम, निजांतरगतम, तुम जिसको बाहर देख रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है। तुम मुझे बाहर देख रहे हो कि अंदर देख रहे हो? अपने अंदर देख रहे हो। बोलो, तुम्हें क्या लग रहा है? आत्मानंद गिरी मेरे अंदर बैठे हैं ये लग रहा है कि मेरे से बाहर है, भिन्न है लग रहा है? सारे जगत सभी को यही भ्रांति हो रही है कि पदार्थ सब के सब मेरे से बाहर हैं, यही लग रहा है कि नहीं? सभी वस्तु मेरे से बाहर हैं ये लगता है, लेकिन हकीकत वास्तविकता यह है कि ये तुमसे बाहर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी सत्ता से भिन्न सत्ता वाले नहीं है, इसीलिए ये तुमसे बाहर नहीं है। आप बताइए, ये जो कागज में सफेदी है, ये कागज में जो सफेदी दिख रही है, वो सफेदी और कागज दोनों एक ही है कि अलग अलग है? आप बता सकते हो? सफेद ये रंग कलर सफेदी और कागज, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? तो आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, ये कह रहे हैं अलग अलग है, वो कह रहे हैं एक ही है। अब बताओ कि ये सफेदी कागज के अंदर है कि कागज के बाहर है? ये सफेदी कहां दिख रही है? तो कागज में दिख रही है। इसका मतलब हो गया कि सफेदी की सत्ता कागज की सत्ता से भिन्न सत्ता नहीं है, लेकिन कागज से सफेदी अलग है, क्योंकि कागज कागज कागज, लेकिन एक ही कागज में कोई सफेद, कहीं ब्लू, कहीं येलो, कहीं ग्रीन, कहीं ब्लैक। कार्बन कैसा होता है? ब्लैक होगा उसका कलर, या ब्लू भी होगा, है ना? लेकिन वो जो कार्बन है वह कागज है, जैसे ये कागज है वैसे वो कागज है। तो उसी कागज में कलर अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वो कलर उस कागज से अभिन्न होकर रहेगा, क्योंकि कागज की सत्ता ही रंग की सत्ता है। दूसरे उदाहरण दें, ये कपड़ा कैसा दिख रहा है आपको? लाल दिख रहा है, गेरुआ दिख रहा है। अब ये गेरू रंग ये कपड़े से अंदर है कि कपड़े के बाहर है? अब ये कपड़े से भिन्न है कि कपड़े से अभिन्न है? कपड़े की सत्ता ही रंग की सत्ता बनकर बैठा हुआ है, रंग के कपड़े के सत्ता से भिन्न सत्ता नहीं है। जबकि रंग भिन्न प्रतीत हो रहा है कपड़े से, भिन्न प्रतीत होता हुआ भी भिन्न सत्ता नहीं है, जैसे दर्पण के अंदर दिखने वाला दृश्य दर्पण से भिन्न प्रतीत होकर दिख रहा है, भिन्न सा दिखने पर भी भिन्न सत्ता वाले नहीं है। दर्पण की सत्ता से भिन्न सत्ता वाले दर्पण में दिखाई पड़ने वाले दृश्य नहीं है। इसी तरह ये सारा का सारा विश्व जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सब आपके अपने अंदर ही है, निज अंतर्गतम है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी सत्ता से भिन्न सत्ता वाले नहीं हैं, ये आपकी सत्ता से ही सत्तावान हुए हैं, या आप शब्द से जो हम कह रहे हैं बार बार, ये केवल चेतना सत्ता, आत्मसत्ता। और आत्म शब्द से हम बार कहते हैं अपनोति व्यापनोति इति आत्मा। ये समझ लेना, आपके शरीर की अलग अलग सत्ता हो सकती है, आपकी सत्ता अलग अलग नहीं हो सकती है। आपकी सत्ता और मेरी सत्ता अलग अलग नहीं हो सकती, आपकी शरीर और मेरा शरीर ये अलग अलग होने पर भी आप और मैं अलग अलग नहीं। और इसीलिए आपका शरीर और मेरा शरीर मेरी सत्ता में टिका हुआ है, ध्यान देना। आपका शरीर और मेरा शरीर मेरी सत्ता में टिकी हुई है। इसका मतलब होगा कि मेरा शरीर और आपका शरीर आपकी सत्ता में टिकी हुई है, क्योंकि सत्ता आपकी और मेरी एक ही सत्ता है। शरीर अलग हो सकते हैं, सत्ता एक है। तो यही वेदांत का रहस्य है। विश्वम, ये बड़ा विचित्र है, ये सभी की समझ में नहीं आएगी। ये सभी को आबाल बनिता, सभी को ये अनुभव हो रहा है कि सारे पदार्थ मेरे से बाहर दिख रहे हैं, मेरे से बाहर हैं, बाहर प्रतीत हो रहे हैं, बाहर ही उत्पन्न हो रहे हैं, बाहर ही अस्तित्व में आ रहे हैं और बाहर ही विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। ये सभी को सर्वमान्य अनुभव हो रहा है, लेकिन इसके विपरीत आचार्य कह रहे हैं ये सारे के सारे विश्व प्रपंच सभी को अपने से भिन्न नहीं है, सभी के अंदर है, ये सारा जगत सभी के अंदर है और सभी को अंदर ही प्रतीत हो रहा है। लेकिन भ्रांति ये हो रही है कि मुझे मेरे से बाहर है, भ्रांति ये है कि मेरे से बाहर। दो दृष्टांत दिया है शंकराचार्य जी ने। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, पहले तो इतना निश्चय कर लो ये सारा का सारा दृश्य जगत प्रपंच केवल दर्पण में दिखे हुए प्रतिबिंब की सराह है, प्रतिबिंब से भिन्न नहीं है। अब ये बिंब रूप है तो फिर इसका माने प्रतिबिंब रूप है तो फिर इसका बिंब क्या है, ये जिज्ञासा का विषय बनेगा ये सब। तब फिर ये प्रश्न बन सकता है, तब ये अलग अलग अलग अलग जो दिख रहे हैं इसका क्या बिंब भी अलग अलग है। दृष्टांत में और दृष्टांत में मिल एकता होनी चाहिए, तभी वह दृष्टांत सार्थक होता है। दृष्टांत जो दिया गया है वह दृष्टांत में मिलना चाहिए। जैसे कि दर्पण के अंदर अलग अलग पदार्थ दिखाई पड़ते हों, दर्पण के अंदर, तो वह दर्पण के बाहर यदि कोई पदार्थ अलग अलग हैं तो दर्पण के अंदर भी अलग अलग ही प्रतीत होंगे। और यदि दर्पण के बाहर एक ही है तो दर्पण के अंदर भी एक ही प्रतीत होगा। बिंब एक है तो प्रतिबिंब एक होगा, बिंब अनेक हैं तो प्रतिबिंब अनेक होंगे। ये सर्वमान्य नियम है। दो आदमी यदि दर्पण के बाहर खड़े हो तो उसी दर्पण के अंदर दो प्रतिबिंब खड़े होंगे, होंगे कि नहीं। दर्पण के अंदर एक, बाहर एक आदमी खड़ा हो तो दर्पण के अंदर भी एक ही खड़ा होगा। दर्पण के बाहर दो कुर्सी रखी हो तो दर्पण के अंदर दो कुर्सी दिखेंगे, दर्पण के बाहर एक कुर्सी रखी हो तो दर्पण के अंदर एक ही कुर्सी दिखेगा, दर्पण के बाहर कुर्सी और टेबल दो रखे हो तो दर्पण के अंदर भी कुर्सी और टेबल अलग अलग दिखेगा। और जब दर्पण के बाहर केवल टेबल रखा हो तो दर्पण के अंदर कुर्सी और टेबल नहीं दिखेगा, केवल टेबल दिखेगा। इसी प्रकार के ये सारा का सारा स्त्री पुरुष बाल वृद्ध पशु पक्षी ये जितने भी जीव बाहर दिख रहे हैं, जब ये दर्पण में दिखने वाले पदार्थ की तरह हैं, प्रतिबिंब की तरह हैं, इनको एक प्रकार से प्रतिबिंब मान लेते हैं, तो इनका बिंब कौन होगा और क्या होगा?
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
3: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन नायनमार पुराणम। द टाइटल इज Kannappa Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक महान संत या नायनमार की कहानी, जिनका नाम है कन्नप्पर। ये दक्षिण भारत में काफी प्रचलित हैं, लेकिन पूर्वी या उत्तरी या दक्षिणी भारत या पश्चिमी भारत में कम ही इनका नाम सुना गया है। लेकिन दक्षिण भारत में ये बहुत बड़े संत माने जाते हैं। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है। पांडवों के वनवास के समय अर्जुन जब वन में थे, तो उन्होंने भगवान शिव से पाशुपता अस्त्र पाने के लिए उनकी पूजा आराधना करनी शुरू कर दी थी। शिव ने किरात रूप में उनको दर्शन दिया और उन्हें उनसे कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे परम भक्त बनकर जन्म लोगे। क्योंकि अर्जुन से उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो अर्जुन ने कहा कि सिर्फ आपका प्रेम ही मुझे चाहिए। तभी शिव ने यह वरदान दिया था कि तुम अगले जन्म में सिर्फ मेरे भक्त बनोगे। इसके कई साल पश्चात अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ। ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में श्री कालाहस्ती नामक क्षेत्र के करीब पोती पिन्नाडुन नामक एक राज्य रहता था, एक राज्य था। प्राचीन काल में नागन नाम का एक व्याधराज या भील राज उस राज्य का शासक था। उसकी राजधानी उड़पुर थी। दीर्घ काल तक निसंतान रहने के उपरांत भगवान कार्तिकेय की उपासना के फलस्वरूप नागन को एक पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का शरीर स्वस्थ सुडौल और बलशाली था, इसलिए उसका नाम तिन्नन रखा गया। तिन्नन का पालन पोषण अत्यंत लाड़ प्यार से हुआ था। वह भील प्रजाति के अस्त्र शस्त्र में काफी काबिलियत हासिल कर चुका था। धनुष विद्या में वह विशेष निपुण था। युवक तिन्नन एक दिवस अपने दो साथियों नानन और कादन के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। भील साथियों के साथ उन्होंने बड़े कौशल से कई शिकार किए। इसी बीच एक जंगली सुअर जाल काटकर भाग निकला। उसका पीछा करते हुए तिन्नन बहुत दूर तक बीहर जंगल में पहुंच गए। काफी दौड़ धूप के पश्चात तिन्नन ने उस सुअर को मार डाला। उस स्थल के निकट एक पहाड़ी दिखाई दी। उसने अपने साथियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह श्री कालाहस्ती पर्वत है, जहां कुरुमी देव या फिर भगवान शिव का लिंग है। पहाड़ी पर चढ़ने पर भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के दर्शन हो सकते हैं। तिन्नन और नागन तो पहाड़ी पर चढ़ने लगे और कादन जो कि उनका साथी था सुअर के मांस को भूनने की तैयारी में लग गए। पहाड़ी पर भगवान की मूर्ति को देखते ही तिन्नन गदगद हो उठे। उनके उस लिंग के प्रति उनकी प्रेम उनके मन से निकल पड़ी। नेत्रों से अश्रुधारा भवतरित होकर बहने लगे और वे कह उठे, हे नाथ, तुम इतनी दूर अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें व्याध लोग की भांति वन में एकाकी क्यों रहना पड़ रहा है? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। जब मैं तुम्हारा दास यहाँ हूं तो तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकते हो? कालाहस्तीश्वर की मूर्ति पर चढ़े पत्र पुष्पों को देखकर उसने अपने दोस्त नानंद से यह जिज्ञासा प्रकट की। नानंद ने बताया, यहाँ प्रतिदिन एक पुजारी ब्राह्मण आके पूजा करते हैं। वे जल अभिषेक और पुष्पों से पूजा करते हैं और फिर भगवान को भोग भी लगाते हैं। तिनन पुनः भाव विभोर हो गए और अपने अहम को भूलकर मानो अपने अस्तित्व को ही भूलकर नाथ के चरणों में गिर पड़े। उनके मन में विचार आया कि भगवान को भूख लगी होगी। पहाड़ी से नीचे उतरकर उसने अपने दोस्त जो कि सुअर को भून रहा था उस सुअर के मांस के टुकड़ों को चखा और सबसे कोमल और स्वादिष्ट टुकड़ों को अलग अपने एक हाथों में उठा लिया। फिर भगवान के अभिषेक के लिए वो पास ही में पोग मुगली नामक नदी का जल मुंह में भर लिया। एक हाथ में धनुष, दूसरे में मांस का दाना, मुंह में अभिषेक के जल और भगवान को अर्पित करने के लिए फूल इत्यादि अपने ही सर के बालों में खोस तिन्नन ऊपर पहुंचा। विग्रह पर पहले से चढ़ा पुष्प गुच्छ उसने अपने चप्पल वाले पैर से हटाया, मुंह का जल उंडेल कर कालास्तिनाथ का अभिषेक किया, धनुष एक और रख कर बालों में लगे फूल पत्ते उतार कर मूर्ति को सजाया, अंत में मांस को पत्ते पर रखकर हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर लिया और वह प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने इस कोमल मांस को भलीभांति भूना है, इसमें पर्याप्त मधु डाला है, यह बहुत स्वादिष्ट है, इसे कृपया स्वीकार करें। नेत्र खोलने पर देखा कि प्रभु ने मांस नहीं खाया। सोचा, संभव है अभी भूख न हो या फिर मेरे सामने खाने में संकोच करते हैं। यह सोचकर वह मंदिर के बाहर वह थोड़ी दूर में जाकर बाहर धनुष बाण लेकर रक्षा के लिए बैठ गया। पूरी रात पहरा देने के बाद प्रातः फिर वह नीचे गया भगवान के लिए पूजा की सामग्री और मांस इत्यादि जोड़ने के लिए। तिन्नन नीच जाति या भील जाति का रहने वाला था। उसे पूजा की विधियां कुछ पता नहीं थी, इसलिए उसने अपने मन से जो भी आया उसी तरह से भगवान का पूजा करने लगा। अभी वो बहुत दूर जाकर फल फूल मांस जल इत्यादि संग्रह करने में लग गया। इसी बीच उस शिवलिंग को रोज पूजा करने वाले ब्राह्मण जिनका नाम गोचरिया था वह आ गए पूजा करने के लिए। भगवान पर चढ़ाए गए जल और नीचे रखे गए मांस को देखकर उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने उस जगह को पुनः से साफ किया और अपने फूल फल फूल और पुष्प और तब से भगवान की सेवा की, दीप जलाया और फिर अपने दुख को प्रकट किया कि कौन यह भगवान के पास मांस इत्यादि रख के जाता है, और वह चला गया। इसी बीच तिन्नन के पिता वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपने पुत्र को वहां पर काफी दूर से फल फूल मांस इत्यादि लेकर आते हुए देखकर उसने अपने पुत्र से आग्रह किया कि हे पुत्र, तुम कहाँ रह गए थे रात भर, चलो घर चलो। लेकिन तिन्नन को अभी अपने स्वयं का भी ज्ञात नहीं था। उसने अपने पिता से हाथ छुड़ा लिया और कहा कि यही मेरा घर है, मैं यही रहूंगा अपने नाथ के साथ। इधर तिन्नन के पिता नागन को अपने पुत्र के विचित्र व्यवहार से विस्मित हो गए। उनके लाख पूछने पर भी तिन्नन घर नहीं लौटे, वो वहीं रह गए। तिन्नन फिर पहाड़ी पर चढ़े और अपने ही तरह से भगवान की सेवा अर्चना करने लगे। उन्होंने फिर से मांस के टुकड़े लगाए, फिर से अपने मुंह से जल को भगवान पर उंडेल दिया और उस जगह पर दूर जाकर भगवान की रक्षा के लिए धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। इसी तरह तिन्नन रात भर पहरा देते रहा। ब्राह्मण गोचरिया रोज सुबह आते और जब वह आते उसी समय तिन्नन अपनी पूजा सामग्री इकट्ठा करने के लिए जंगल में चले जाते थे, इसलिए उन्होंने कभी उस ब्राह्मण का साक्षात्कार नहीं किया। ब्राह्मण जो गोचरिया रोज सुबह आकर भगवान को इस तरह मांस में ढका हुआ देखकर बहुत दुख व्यक्त करते हैं। पांच रात्रि ऐसे ही गुजर गए। पांचवी रात्रि ब्राह्मण गोचरियर को स्वप्न में प्रभु के दर्शन हुए और उन्होंने अपने नए भक्त तिन्नन की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे गोचरियर ब्राह्मण, हे मेरे पुत्र, क्या तुम जानते हो तिन्नन की महिमा? उतना प्रेम विभोर हुआ है मेरे प्रेम में, उसे न आव पता है न दाव। वो अपने ही विधि से मेरी पूजा अर्चना करता है, लेकिन उसमें वेदों का सार है, उसकी मुंह उसके द्वारा मुंह में लाया गया जल मेरे लिए गंगा जल सदृश है। जिन पैरों से वह लिंग से पुष्प आदि हटाता है वे मुझे सुब्रह्मण्य या फिर कार्तिकेय के पांव से भी अधिक कोमल लगते हैं। उसका पूर्ण अस्तित्व ही प्रेममय हो गया है। उसकी चेतना हमारी ही चेतना है। कल तुम उसके भक्तिभाव को प्रत्यक्ष देखना। छठे दिन नियमानुसार तिन्नन जब पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि ईश्वर की एक आंख से रक्त बह रहा है। वे घबरा गए, हर प्रकार से उपचार करने लगे, फिर भी रक्त रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो जंगल से जड़ी बूटी उठाकर भगवान के आंखों में चढ़ाने लगे, फिर भी रक्त नहीं रुका। फिर तिन्नन ने सोचा, अपने सहज भाव से सोचा, मांस को मांस से ही भरना होगा। उन्होंने अपनी एक तीर निकाली और अपनी एक आंख निकालकर उसे शिव की आंख में घंस दिया। रक्त का प्रवाह उसी क्षण रुक गया। तिन्नन को खुशी हुई और अपना दर्द भूलकर नाचने गाने लगा। तभी उनकी दृष्टि भगवान के मुख पर पड़ी। अरे यह क्या, अब दूसरी आंख से भी खून बह रहा था। तिन्नन ने आंख देखा न था, अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीक्ष्ण तीर उठाया। तभी उसके विचार में आया कि दोनों आंखों को निकाल देने पर वह अंधा हो जाएगा और किस स्थान पर अपने निकाले गए आंख को भगवान के रक्त भरे आंख में रखेगा इसका ज्ञात उसे नहीं होगा। यह विचार कर उन्होंने भगवान की दूसरी आंख के पास अपना पैर टिका दिया और अपनी आंख निकालने लगे। ब्राह्मण गोचरियर जो कि छिपकर ये पूरा दृश्य देख रहे थे विस्मय विमूढ़ हो गए थे। इस स्थिति को देखकर भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए। तिन्नन के अहेतुक प्रबल निष्काम प्रेम को वे झेल नहीं पाए। उन्होंने तीन बार कहा, ठहरो कन्नप्पा, ठहरो तिन्नन, तुम्हारी भक्ति से मैं बह गया हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और भक्त के और तिन्नन के हाथ को बाई ओर मोड़ा। तिन्नन के नेत्र दान से प्रसन्न होकर प्रभु तिन्नन के नेत्र जिसे तमिल में कन्न भी कहते हैं, ये प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें कन्न पर नाम दिया। प्रभु के अनुग्रह से उनके दोनों आंख वापस आ गए, वापस वो सब कुछ देखने लगे। तभी ब्राह्मण गोचरियर ने सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी भर तपस्या और पूजा अर्चना की, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन न हो पाए। तिन्नन के भक्ति में 6 दिन में वो इतना प्रेम किए कि हिमालय पर पहुंच गया, उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए और उसके कारण मुझे भी दर्शन हो गए। तो आज से मैं भगवान को तिन्नन की भांति ही पूजा करूंगा, तिन्नन प्रेम से पूजा करूंगा। तिन्नन की भांति मतलब तिन्नन के प्रेम विचार वाली भाव से पूजा करूंगा और साथ में तिन्नन की भी एक छोटी सी मंदिर बना के वहीं पूजा करूंगा। यह है तिन्नन की गाथा।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
5: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी, प्रेजेंटेड बाय आदिगुरु शंकराचार्य जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
6: धर्मार्थ काम मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थ सिद्धि के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ फल देगा नहीं तो फिर जीवन तो बेकार जाएगा भाई। शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में उस किसान के भावना को ध्यान में रखते हुए उपमा के माध्यम से शिव भक्ति है, जैसे बादल देखकर किसान प्रसन्न होता है और जब बारिश होती है तो किसान और ज्यादा प्रसन्न होता है। क्यों होता है? कि खूब फसल पकेगा और खूब फसल पकेगा तो फिर बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो इसीलिए भक्त किसान की जगह पर है। भक्त यदि किसान की जगह पर है तो शिव भक्ति, शिव का चरण आकाश की जगह है, शिव भक्ति बादल की जगह पर है। और संतोष वृष्टि पानी की जगह पर है, और भक्त का मन खेत की जगह पर है। और क्योंकि उस मन से परिचालित जीवन फसल की जगह पर है, तो जीवन सफल तब होगा, अन्यथा जीवन निष्फल होगा। शिव भक्ति के बिना जीवन निष्फल है, क्योंकि शिवानंद लहरी है। इसलिए शिव भक्ति के बिना जीवन निष्फल है। अब आप वैष्णव हो तो फिर विष्णु भक्ति के बिना जीवन निष्फल है। अब आप यदि शाक्त हो तो देवी भक्ति बिना जीवन निष्फल है। अब यदि आप कार्षणी हो तो कृष्ण भक्ति के बिना जीवन निष्फल है। यदि आप गणपत्य हो तो गणेश भक्ति के बिना जीवन निष्फल है। कुछ न कुछ हो ना, कुछ न कुछ हो। तो ये नहीं समझ लेना कि शिव भक्ति के बिना जीवन बेकार हो जाएगा। शिव का मतलब परमात्मा, बस। इसलिए किसी नाम और रूप पर दुराग्रह नहीं है। यहां प्रसंग शिव भक्ति से जुड़ा हुआ है, शिवानंद लहरी है, इसलिए शंकराचार्य जी ने शिव भक्ति कह दिया है। और शायद शंकराचार्य कृष्णानंद लहरी की रचना करते हैं, वही तो कह रहे ना, कृष्णानंद लहरी की रचना करते तो फिर कृष्ण भक्ति के बिना जीवन बेकार है कह देते। तो इसमें मेरे तरफ से कोई दुराग्रह नहीं है कि आप कृष्ण भक्ति छोड़कर शिव भक्ति ही करो। हाँ, तो मैं तो ये कहता हूं, न शिव भक्ति करो न कृष्ण भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। मैं हमेशा यही कहता हूं, बस। और आगे क्या कहते हैं देखो। बुद्धि स्थिरा भवितुमीश्वर पाद पद्मा सक्ता बधुर विरहिणी व सदा स्मरंती सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि सम्मोहिते व शिव मंत्र जपे नविंती। अब ये भी रूप का अलंकार है, उपमा है इसमें भी। रूपक यह है कि कोई युवा शादी कर लेता है, किसी युवती से शादी कर लेता है, तो उसको विधिवत शास्त्र विधि से, वैदिक विधि से, शास्त्र विधि से अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है। तब वह नववधु उसको अपना सर्वस्व मानती है। वर अपने वधु को, अपने पत्नी को सर्वस्व भले ही न माने, समझ गए नहीं, लड़का अपनी पत्नी को सर्वस्व भले ही न माने लेकिन पत्नी अपने पति को सर्वस्व मानती। थोड़ा अन्याय तो है वो थोड़ा अन्याय तो है। पत्नी अपने पति को सर्वस्व मानती है तो फिर पति अपनी पत्नी को सर्वस्व क्यों नहीं मानता है? तो ये अन्याय तो है, सामाजिक साम्यता नहीं है, वही सम्यता तो है। लेकिन यह शंकराचार्य जी उपमा दे रहे हैं उसी रूप में। बुद्धि स्थिरा भवितुमीश्वर पाद पद्म शक्ता बधुर विरहिणीव अब वो शादी कर लिए और शादी करते ही वह वर विदेश चला गया, घर में उस नववधू को छोड़कर विदेश चला गया। अब नववधू अपने पति को सर्वस्व मानती है, लेकिन मानकर करें क्या, घर में तो है ही नहीं। अब रात दिन उसी का ही स्मरण करती है, चिंतन करती है। सक्ता, अपने पति के प्रति उसकी आसक्ति रहती है, सक्ता। इसलिए वो वीराहिणी इव, दृष्टांत दिया उपमा, क्या करती है, बोले सदा स्मरंती। तो वहां तो नववधु विरहिणी है, अब नववधु अपने पति को सदा स्मरंती। और विरह योग से युक्त होकर सदा स्मरंती, तो यहां तुम्हें कौन स्मरण करता है, तुम्हारा पति कौन है, तो बुद्धि। ये जो बुद्धि है यह नववधु है, उसका पति कौन है, तो परमात्मा। तो बुद्धि ने परमात्मा को वरण किया, किसने, बुद्धि ने परमात्मा को वरण किया है। तब परमात्मा में स्थिर होती है। शादी के बाद कन्या विकल्प नहीं खोजती है, नववधू विकल्प नहीं खोजती है। जब तक वरण नहीं होता, जब तक शादी नहीं होती है, तो हजार विकल्प खोजती है। जो भी लड़का हैंडसम देखेगी कल्पना करी लेगी, वो समझेगी नहीं। जो भी लड़का जरा सुंदर देखेगी, खाता पीता देखेगी, अपडेट देखेगी, पढ़ा लिखा देखेगी, शिष्टता शालीनता आदि जो देखेगी, जो भी युवा उसके सामने खड़ा होगा, तुरंत कल्पना कर बैठती है इसने शादी किया होगा कि ना किया हो, क्या पता कहां का होगा, कैसा होगा, है मेरे से शादी कर लेता तो अच्छा है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है बात करने की, कल्पना के जगत में तो घूम जाती है वो। एक प्रकार से वरण तो कर ही लेगी, वह पोह में तो पड़ जाएगी वो चला जाएगा, फिर दूसरा कोई और दूसरा लड़का आएगा तो फिर उसके बारे में ही सोचने लग जाएगी। ये स्वाभाविक ही है। लेकिन किसी एक लड़के के साथ जब उसका स्वयंवर हो जाता है विधिवत, तब वह जिसका वरण हो, जिसने वरण कर लिया या जिसको पति मान लिया, वह भले ही विदेश चला गया हो, दूसरा लड़के को देखकर वह उसका विकल्प नहीं खोज सकती हो। वो विदेश चला गया, इसे शादी कर लेते तो अच्छा था, विकल्प नहीं खोज सकती है। वह उसके विरह में या उसके आने की प्रतीक्षा में वर्षों रह सकती है, उसका विकल्प नहीं खोज सकती है। आजकल की बात छोड़ दो आजकल की बात छोड़ दो, फिर भी आजकल भी लोक मर्यादा आदि के चलते इतनी जल्दी तो नहीं करते हैं, तो उसी को कहते हैं बुद्धि स्थिरा। परमात्मा के साथ बुद्धि का एक बार संबंध हो गया, जुड़ गया, तो बुद्धि ने अपने आप को परमात्मा की नववधु स्वीकार कर ली, तो वह बुद्धि परमात्मा के अलावा दूसरे का विकल्प नहीं खोज सकती है, इसलिए वही स्थिर हो गई है। ईश्वर पाद पद्मम, उस परमात्मा के चरण में बुद्धि स्थिर हो गई। शक्ता इवा,

शक्ति है, समझे कि नहीं। जब तक मारपीट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा नववधू अपने नवपति का, पति तो नव ही होगा, नवपति के दुर्गुणों का स्मरण नहीं कर सकती है। सद्भावना अच्छे अच्छे गुणों का स्मरण करती है, मेरे पति कितने अच्छे हैं, अरे तुम कितने अच्छे हो, तुमने कितना क्या क्या कहा था, तुम चले गए हैं, मैं तुम्हें फलाने जगह घूमने ले जाऊंगा कहा था और तुम छोड़कर अमेरिका चले गए, कब आओगे मुझे घुमाने, कब ले जाओगे है? कोई ये स्मरण करेगी? मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तुझे डंडे से पीटूंगा, ये कहा था कब आओगे डंडे से पीटोगे, ऐसा स्मरण करेगी वो? पति के दुर्गुणों का स्मरण करेगी वो? तुमने कहा था दूसरे साल शादी के एक वर्ष में सालगिरह में तुम्हारे लिए एक ज्वेलरी किन खरीद दूंगा, तो कब आ रहे हो सालगिरह है, एनिवर्सरी आने वाली है, तो मेरे आभूषण कान के झुमके कब खरीदोगे, गले के हार कब खरीदोगे? सद्गुणों का ही स्मरण करती है। इसी प्रकार से बुद्धि परमात्मा के सद्गुणों का स्मरण करती है। ये बुद्धि के साथ नववधु का उपमा। सक्ता वधुर विरहिणी सदा स्मरंती, क्या क्या? सद्भावना स्मरण दर्शन। बाहर यदि कोई आया, शायद मेरे ही पति आ गया, उसको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है उसको, आ गया मेरा पति। और यदि नहीं भी आया हो तो सुबह सुबह उठकर उसके फोटो दर्शन करेगी, कमरे में रखेगी उसको फोटो, सिराने में रखेगी, दर्शन करेगी। सद्भावना स्मरण दर्शन। और अपने साथी सहेलियों से जब वार्ता करना होगा तो कीर्तन, अपनी पति के प्रशंसा करेगी। निंदा करेगी? अपनी मां से पति की निंदा करेगी? बोलो। अपनी सहेलियों से पति की निंदा करेगी? कीर्तन, हां उसके सद्गुणों की बखान करेगी। सम्मोहित इव, हिप्नोटाइज, मानव की उपति ने उसको सम्मोहित किया और वो ऐसे सम्मोहित हो गई है कि उसके नकारात्मक किसी भी पक्ष को वह सोच ही नहीं सकती है, सोच ही नहीं सकती है। शिव मंत्र जपे नविन्ते, नित्य निरंतर जैसे अपने पति का ही नाम स्मरण जप करती रहती है नववधू, उसी तरह ये मेरी बुद्धि सतत शिव का स्मरण नाम मंत्र जप करती रहती है। विनते, विशेष रूप में उसको ही स्वीकार करती है। एक कवि हुए हैं कश्मीर के, जगद्धर भट्ट, उन्होंने स्तुति कुसुमांजलि में शिव भक्ति, कश्मीर शैव रहे ना वो, कश्मीर के जितने भी ब्राह्मण प्राय शिव शैव ही होते हैं, तो उनका उदाहरण दिया बड़ा सुंदर। आदो भक्ति वयस्यस्याः परिचरण नीतोन्मुखत्वम शनैः, लोक व्यवहार को उपमा देकर सबसे पहले कोई लड़की, किसी लड़के प्रति उसका मन टिक जाता है तो पहले वो कहां रहता है, क्या करता है, उसकी पूरे जा

0: जानकारी हासिल करती है। फिर उसके बाद किसी अपने खास सहेली के माध्यम से उस तक पहुंचने का रास्ता पूछती है, कैसे उसके पास पहुंचा जाए, और उससे पहुंचने के साधन माध्यम आदि को पूछने के बाद वह धीरे से किसी को चिट्ठी लिखकर भेजती है। अब तुम भागवत का सुभद्रा को स्मरण कर लो भाई, रुक्मिणी को स्मरण कर लो, रुक्मिणी का स्मरण करो, है ना? पहले तो कृष्ण के बारे में उसने खूब जानकारी ली, जब पता चला द्वारिकाधीश हैं, वाह राजा है द्वारिकाधीश हैं, सर्वगुण संपन्न है, अच्छा वाह, तो वहां कैसे पहुंचे? फिर अंत में किसी को चिट्ठी लिखकर भेज दिया। जब चिट्ठी आदान प्रदान हुआ, आईफोन में चैटिंग शुरू हुई, आदान प्रदान हुआ, तो लास्ट में उसने डिसीजन कर ली और सब कुछ उलिया बता दी, सहेली से उसको भेज दिया, इतनी बजे इस टाइम में इस दिन में फलाने जगह मैं आऊंगी, तुम आना, सब टैक मिल गया और कृष्ण को सब कुछ जानकारी हो गई। अच्छा भाई, वो भी तो क्या कम थे, ठीक समय में वो भी पहुंच गई, वो भी पहुंच गए, उठा के ले चले, बस और क्या, रुक्मिणी हरण हो गया काम। ये द्वितीय, ये भक्ति भी ऐसे ऐसे ही करती है। पहले तो परमात्मा के बारे में साधुओं से, संतों से, गुरु से सुनती है खूब। धूती कृत्य नव नवद्य वचसम, वाणी को वह धूती बनाती है और पुकारने वाणी को भेजती है। वचसम देवीम दूतिम कृत्य तम उपगंतुम इच्छति पतिम प्रोद्दाम कामहमती, तो मैं तुम्हें स्वीकार करना चाहती हूं। तो भगवान को भी फिर ये इच्छा हो जाता है कि तू मुझे स्वीकार करना चाहती है तो हम किससे कम है। रुक्मिणी ने जब स्वीकृति दी तो कृष्ण फिर किससे कम थे, आदि आदि भाव को प्रेमिका को भक्ति के साथ और परमात्मा को प्रेमी के साथ की उपमा देकर व्याख्या की है। उस श्लोक का ये अभिप्राय है। अब इस श्लोक से, 78वें श्लोक से, पहले 77वें श्लोक में बुद्धि को एक विरहिणी प्रेमिका के रूप में उपमित किया कि तुम्हारे लिए तड़प रही है। अब इस 78वें श्लोक के द्वारा ये कह रहे हैं कि इसका तुम उद्धार करो, स्वीकार करो भाई, किसका, बुद्धि को स्वीकार करो। कैसी है तुम्हारी बुद्धि, हम स्वीकार करने योग्य है कि नहीं? बोले हां, वो तो बहुत योग्य है। सदुपचार विधि स्वनुबोधितम है, सदउपचार, अच्छे सद विद्या से, सदाचार से सुशिक्षित है। सदाचार, सदुपचार माने सदाचार से सुशिक्षित है। विधिषु अनुबोधिताम, सविनयाम, बड़ा विनम्र है। महाराज तुम जो कहोगी वो मानेंगे, हठिली नहीं है, ये हट करना तो जानती ही नहीं है महाराज, बड़ा सुसंस्कारी कन्या है। सुहृदाम, इसका हृदय बड़ा सरल है, समुपाश्रिताम। मम बुद्धिमिमाम समुद्धर, प्रभु हे प्रभु मेरी इस बुद्धि कन्या का आप उद्धार करो। मैंने इस बुद्धि कन्या को सुसंस्कृत बनाया है, सुपद सदुपचार विधि स्वनुबोधिताम सविनयाम सुहृदम समुपाश्रिताम इमाम मम बुद्धि, इमाम मम बुद्धिम समुद्धर, प्रभो मेरी बुद्धि का आप उद्धार करो, स्वीकार करो। बर गुणेन, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं और इन्हीं गुणों के चलते आप इसका उद्धार करो। और आप वरगुण हैं, आप में वो योग्यता पूरी की पूरी योग्यता है कि इसको बुद्धि रूपी कन्या को आप वधु बना सकते हो। वर होने की योग्यता आप में पूरा है और वधु होने की योग्यता मेरी बुद्धि में पूरी है और आपके ही योग्य है, और के योग्य नहीं है। यदि और के योग्य और के कहीं पीछे लगेगी तो दुख मिलेगा, उसको कष्ट होगा, क्योंकि मैंने इसको अच्छे संस्कार दिया है तो ये दूसरी जगह जाएगी तो दुख पाएगी। समझे कि नहीं? मैंने इसको शुरू से कहा कि मीठा मटन नहीं खाना, इसने मटन खाना छोड़ दिया है? तो अब यदि आपके पास ना आकर किसी और मटन खाने के यहां चली गई तो दुख मिलेगा, इसको मिलेगा कि नहीं? दुख भोगेगा। प्रभो बर गुण नवोढ़ नव ओढ़, नव माने अभी अभी शादी की हुई, ओढ़ा माने स्वीकार किए गए, नव वधु नवविवाहिता स्त्री को नवोढ़ वधु इव। जैसे अच्छे कन्या का कोई वरण करता है लड़का तो उसको तुरंत मैके से अपने घर ले जाना चाहता है, इसी तरह मेरी बुद्धि कन्या कमजोर नहीं है, सुशिक्षित है, सब है। जैसे नया वधु को वर आगे करके लेके जाता है, स्वीकार करता है, ले जाता है अपने घर, उसी तरह इस मेरी बुद्धि कन्या को आप सहस्र स्वीकार करो, परित्याग न करो। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

चौथे श्लोक में जो विचार किया गया था कि कई तर्कवादी ऐसे हैं, श्री पुष्प दंत जी कहते हैं कि मैं उनको मंद बुद्धि कहता हूं, प्रलपन करने वाले कहता हूं, वादी, आपके तत्व को क्यों वादी क्यों प्रलपन करते हैं? क्योंकि आपके तत्व को जानते नहीं है। परमात्मा को न जानना कोई गलत बात नहीं है, कोई नहीं जानता है, पर न जानने का प्रयत्न न करना, जानने का प्रयत्न न करना, वो हमारा गुनाह हो जाता है। तो एक तो आपको जानने की चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई चेष्टा कर रहा है परमात्मा को जानने की, और उस अवस्था में कुछ परमात्मा के बारे में अज्ञान या गलत भी बता देते हैं तो वो क्षम्य है। क्यों? क्योंकि वो अभी जान रहा है, उसे पूरा पता नहीं है। पर ये क्षम्य क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जानने का कोई भी प्रयत्न मैं इन वादियों में, यानी प्रलपन करने वालों में, तर्क वालों, तर्क यानी क्या, देखिए कि परमात्मा का जो अस्तित्व है, परमात्मा है, उसे नहीं मानते। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि परमात्मा है, अस्थि, बस इतना ही मानना है। परमात्मा के होने में, अस्तित्व में श्रद्धा या विश्वास, बस। आगे का काम सब वेद है, शास्त्र है, ईश्वर है, गुरु है, ये तीन संभाल लेते हैं। हमें क्या करना है सिर्फ, और इसी को आत्मकृपा कहते हैं। चार प्रकार की कृपा जब कहते हैं, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, आत्मकृपा अंतिम नहीं आती है, आत्मकृपा पहले आती है कि पहले अपने आत्मा पर, खुद पर कृपा कीजिए। कैसे? परमात्मा को मानने वाली कृपा। कोई भी, जो भी परमात्मा, 33 करोड़ देवता में से जो भी परमात्मा के लिए आपको अगर ऐसा होगा, अस्थि, कोई शक्ति है, कोई परम तत्व है, जगत है तो कोई बनाने वाला है, तो अपना काम बन जाएगा। पर जो नास्तिक है, जो आपके अस्तित्व को नहीं मानते, वो मन बुद्धि वाले तर्क तो करते हैं, पर तर्क की भी सीमा के आगे जाते हैं। देखिए, ज्ञान में जब प्रवृत्त होते हैं तो ज्ञान की हमारी सीमा कहाँ है, कहाँ जाके हम रुकते हैं? एक भी प्रवचन आपने यहाँ सुना ना, या परमात्मा के मंदिर में गए, तो वो आपको कहाँ तक ले जाएगा? आपको पता है उसकी अवधि? आपके खुद के स्वभाव तक, एक दिन, या कोई भी जन्म में, ये जन्म या कोई भी जन्म में, वो कहाँ जाके रुकेगा? ये जो धक्का लग गया है, एक बार भी मंदिर में जाके मूर्ति को प्रणाम किया, तो वो धक्का लगा हुआ आपको अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये ब्रह्म हूँ, वहां तक पहुंचा देगा। पर जो नास्तिकवादी परमात्मा के बारे में तर्क करने का शुरू करेगा, तो धक्का तो उसको भी लगेगा। क्योंकि देखिए, सत्ता और स्फूर्ति तो आस्तिक और नास्तिक दोनों में वो परमात्मा की ही है। तो वो शक्ति इतनी है, प्रबल है, तो ये प्रबल शक्ति जब परमात्मा को अस्थि कहती है कि हाँ परमात्मा है, तो वो अहम ब्रह्मास्मि तक धक्का लगा के ले जाती है साधक को। पर कोई अज्ञानी में, नास्तिक में ये शक्ति आ गई और वो कहता है परमात्मा नहीं है, तो वो परमात्मा की शक्ति कहाँ तक उसे ले जाती है? तर्क तक नहीं, कुतर्क तक ले जाती है। और वो कुतर्क कहाँ है? वो अंतिम अवधि, नास्तिक की अंतिम अवधि कहाँ है, उसकी थोड़ी बात बताई गई है। तो कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके बारे में कुतर्क करने वाले हैं, तो हम सब कहेंगे कि भाई, हम तो परमात्मा के बारे में कभी तर्क भी नहीं करते, कुतर्क की तो बात ही नहीं है, तो हमें श्री पुष्प दंत जी ऐसा क्यों बता रहे है? तो कहे कि भाई, ऐसा कुतर्क कभी कोई कर्म फल के हिसाब से, या देखिए, ऐसे व्यक्तियों के बीच आ गए, ऐसी परिस्थितियों के बीच आ गए कि वहां कुतर्क करने वाले के साथ हमें रहना ही पड़ा, तो इस प्रकार की परिस्थितियां में, इस प्रकार की जो स्थिति आ जाती है, अगर रहना ही पड़ा, तो तब आपके मन को आपको कैसे संभालना है? तो कुतर्क जान लीजिए, अज्ञान को भी जान लीजिए क्या है, क्योंकि उससे बच सके। तो कोई अगर ऐसा कुतर्क करने वाला हो, तो समझ लीजिए कि ये कुतर्क करने वाला है, तो हम उससे दूर रहेंगे, या हम उसकी बातों में नहीं आएंगे। दूसरा श्री पुष्प दंत जी बता रहे हैं कि कभी साधक को ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कुतर्क करते हैं? तो श्लोक में देखेंगे, किमी ह किम काय ह,
जो चौथे श्लोक की बात थी कि परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण, ये जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण एक ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, वो महाशिव है जिससे ये सब उत्पन्न हुआ है। तो बोलेंगे कि अगर परमात्मा ही सृष्टि का कर्ता है ऐसा आप कह रहे हैं तो वो सृष्टा की सृष्टि की रचना में चेष्टा कौन सी है भाई, किस प्रकार कौन सी चेष्टा से परमात्मा ने यह जगत उत्पन्न किया। पहले तो परमात्मा की चेष्टा के बारे में आपने कुतर्क किया, किमी ह किम काय, कौन से शरीर से, कौन सा शरीर, जब परमात्मा ने जगत की उत्पत्ति की तो उन्होंने कौन सा ऐसा शरीर, क्योंकि जगत इतना बड़ा है और जो कर्ता होता है वो कारण से तो बड़ा ही होगा ना, जो कार्य जो है वो कारण से, कार्य तो सूक्ष्म ही होगा क्योंकि कारण बड़ा होने से ही वो कार्य को जन्म देने लगेगा। तो ये जो सृष्टि इतनी बड़ी लगती है तो उससे बड़ी काया क्या परमात्मा ने उत्पन्न की थी, किम काया, कौन सा उपाय यानी उपादान कारण, किस प्रकार परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना की। अच्छा, रचना करने के लिए आधार चाहिए, कोई घाट देना है, कोई सुनार कोई घाट देता है कुछ अलंकार को, सोने को, तो उसके पास यहाँ एक टेबल रहता है या वो एरन रहता है निहाई, और निहाई के ऊपर सब घाट देते हैं। तो परमात्मा ने ये सचराचर सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए आधार किसका लिया और उसकी सामग्री कौन सी है, मटेरियल, और जो सामग्री से उन्होंने ये त्रिभुवन की रचना की। कहते हैं अचिंत्य सामर्थ्य वाले अतर्क्य ही त्वयि अनवसर दुस्तो हतधिय, हतधिय यानी उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि इतने अचिंत्य सामर्थ्य वाले आपके विषय में भी बिना अवसर। देखिए, हम कभी किसी को मिलते हैं या बैठे होते हैं ऐसे ही, तो बिना अवसर कोई भी, बिना कोई भी मतलब बिना की बातें हम करने लगते हैं, कोई सार नहीं होता है, यानी ये सब बातें हैं वो बिना सार की है। यहाँ कोई प्रकाश तो, बात में से प्रकाश तो उत्पन्न नहीं होता है, घर्षण ही केवल उत्पन्न होता है, ये कोई सार नहीं है ये बात में। देखिए, ये लक्षण होना साधक का बहुत जरूरी है। साधक को जब, बराबर ध्यान से सुनना, साधक को जब ऐसी बातें होने लगे ना तो कंटाला आना ही चाहिए, आपको अंदर से जी मचलना ही चाहिए कि अब कब छुटू, अब कब ये बात बदलू, ऐसा आपको होना ही चाहिए भीतर से, तो ही आप छूट सकेंगे। ये साधक का लक्षण है, जब भी कुछ कुतर्क होता है परमात्मा के बारे में तब ये पुष्पदंत जी हैरान हो गए, हम कहते हैं ना कंटाल गए, ऐसे वो हो जाते हैं। और ये कुतर्क कई मंदबुद्धि मनुष्यों ने ये जगत को ठगने के लिए, ये जो कुतर्क है वो मंद बुद्धि मनुष्यों को मुखरयति वाचाल बनाते हैं। वाणी का जो मौन जो है, अगर वेदांत के हम साधक हैं तो सबसे पहले वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये जो उपाधि है उसमें सबसे पहला जो साधन है वो क्या करना है, तो मौन का साधन है। देखिए, मौन तय करेंगे कि मौन रहना है तो हम कम बोलेंगे, मौन रहना है ऐसा कोई ने निश्चय किया तो वो आदमी मौन नहीं रह सकता और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। पर हम मौन रहना क्यों कहते हैं कि आपको अगर हम मौन ही रहना कहे तो 10 घंटे में से आप 5 घंटे बोलेंगे, क्योंकि मौन है तो घड़ी घड़ी बोलने से मौन याद आता रहेगा, इसलिए मौन कहा है। तो ये वाणी का, और हमेशा सोचिए कि एक की एक बात में दो या तीन या चार बार तो नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो भीतर बहुत समय, भीतर सोचना पड़ता है और करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है और करनी पड़ती है। तो हमेशा अपनी जो वाणी जो है उसके ऊपर एक फिल्टर लगा दीजिए और मन को एक सजेशन दे दीजिए कि एक बार मैंने बात की रजिस्टर नहीं हुई तो दूसरी बार की, पर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, एक ही एक बात, देखिए ये आदत हो गई है, इसमें हमारा कुछ चलता भी नहीं है, वी आर नॉट एट फॉल्ट, ये आदत बनी गई है। अब वही आदत को आप
देखिए और वापस जाइए आपके स्वभाव में। एक बार कहा, किसी ने नहीं सुना, दूसरी बार बातें खत्म हो गई। फिर भी जो काम नहीं हुआ तो फॉरगेट इट, क्योंकि ये परम तत्व की बात जान लेने से आपको ये निर्णय में तो आप आ ही जाएंगे कि काम हुआ या नहीं हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो परमात्मा में ही सब कुछ अनुस्यूत है। तो साधक को एक और बात जाननी जरूरी है कि कोई भी बात के लिए निवृत्ति, नैष्कर्म्य सिद्धि में कहा है सुरेश्वराचार्य ने, निवृत्तिम अपि मृदनाथ सम्यक बोध प्रवृत्तिवत। क्या है, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो परम तत्व को प्राप्त करने के लिए चल पड़े हैं, उनके लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक ही है। एक ही है यानी प्रवृत्ति करनी है तो करनी है, पर करनी ही है ऐसा नहीं है, और निवृत्ति, निवृत्त होना है तो होना है पर होना ही है ऐसा नहीं है। बोलने का मन हुआ बोलेंगे, चलने का मन हुआ चलेंगे, पर चलते चलते बीच रास्ते में बैठने का भी मन हुआ तो वो बैठ भी जाएंगे, उस फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, चलते हैं तो उठा नहीं सकते, और उठ के चले हैं तो आप बिठा नहीं सकते। हाँ, तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति में ज्ञानी जन ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ है वो परमात्मा में ही हो रहा है, वो हो समझ गए हैं। तो ये जरा कुतर्क को हम देख ले कि किमी है किम काय है। भाई हमें जवाब आप दे ही दीजिए कि परमात्मा में से उत्पन्न हुआ है तो कैसे हुआ है। हमें कोई ऐसी चीज उत्पन्न हुई दिखाइए जो वो चीज में से ही उत्पन्न होती है और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम जगत को क्या कहते हैं, परमात्मा का ही विवर्त कहते हैं, वो एकदम अंतिम बात है। पर जो भी कुछ जगत में है, सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसा कहते हैं, सब कुछ परमात्मा है ऐसा कहते हैं, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उत्पत्ति परमात्मा में से बताइए और उत्पत्ति होने के बाद भी ऐसा का ऐसा ही रहे। मोर है, मोर का अंडा है, उसमें से मोर का बच्चा निकलेगा तो दो हो गए, उत्पत्ति मोर में से ही हुई है पर क्या है, दो है। जो कुम्हार है घड़ा बनाता है मिट्टी का, तो वो बनाता है तब कुम्हार और घड़ा दो हो गए, बनाने वाला अलग, निमित्त और जो उपादान कारण जो है मिट्टी, और जो घड़ा बन गया कार्य वो उससे अलग है। तो क्या ऐसे परमात्मा है और कार्य अलग है? तो बोले कार्य और कारण यहाँ ऐसी उत्पत्ति है जो कार्य और कारण से अलग नहीं है। तो भी आप कैसे बता सकते हैं? तो मुंडक उपनिषद बहुत सुंदर दृष्टांत देखे ये बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब हमारी साधना शुरू होती है तब एतस्माद् आत्मनः आकाश सम्भूतः, वो आत्मा में से, परमात्मा में से, भाई परमात्मा ने कामना की, सो कामयत बहुस्याम प्रजा येति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगम सर्वम सृजत तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। भाई वो परमात्मा अकामयत परमात्मा, जो कामना कर ही नहीं सकता है, उसने वो कामना की, सृष्टि की, यानी कि परमात्मा ने संकल्प किया। पर ये परमात्मा का जो संकल्प है वो कैसा है? जैसे हम रात को सो जाते हैं और स्वप्न सृष्टि में आप रात को संकल्प करके नहीं सोचते कि आज ये स्वप्न, आज यहाँ जाएंगे, आज स्वप्न में इसे मिलेंगे, नहीं, वो कैसा है, पर स्वप्न का संकल्प कैसा है, वही समय आ जाता है और घट जाता है। और ये स्वप्न सृष्टि एक ही ऐसी है जो घटना घटने के बाद पता लगता है कि ये हो रहा है। जागृत में आप कुछ भी बोलना भी चाहे तो भीतर तो अंदर हो ही जाता है, विचार तो आ ही जाता है कि ये विषय पे, ये व्यक्ति के साथ हम बोलेंगे, और फिर हम कर्म करते हैं। स्वप्न में कर्म हो जाने के बाद सुबह उठ के हम बोलते हैं कि आज मैंने ये देखा। तो ये स्वप्न का दृष्टांत लेके पूरा मांडुक्य उपनिषद का वैत्यत्य प्रकरण जो है, ये स्वप्न सृष्टि का उदाहरण लेके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई संकल्प से भी कुछ हो सकता है, उत्पत्ति हो सकती है। पूरी स्वप्न सृष्टि हम रोज उत्पन्न करते हैं, ये एक बात ख्याल में रखिए। पर शुरुआत के साधक के लिए संकल्प की बात आती है, परमात्मा ने सर्जन किया, सर्जन करने के बाद परमात्मा अंदर प्रवेश हो गए। तो भाई प्रवेश कैसे हो गए? ये फ्लावर है, ये पुष्प है, ये पुष्प के अंदर भीतर मुझे अभी भी प्रवेश करना है, इसी क्षण तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे ये शरीर छोड़ के क्या सूक्ष्म शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, कोई ऐसी विद्या, मुझे हठ योग सीखने चला जाना पड़ेगा कोई गुफा में, कोई गुरु के पास कि भाई हमें ये सिखा दीजिए ये विद्या कि मैं अंदर प्रवेश हो जाऊं। तो वेदांती गुरु बोलते हैं ऐसी मेहनत मत करो, मैं अभी आपको प्रवेश करवा देता हूं। कैसे? तो आपको इतना ही मानना है कि मैं ये फ्लावर हूं, बस बात खत्म हो गई, ये मेरा प्रवेश हो गया पुष्प में। अभी पुष्प के साथ जो होगा, ये पुष्प किसी के गले में पड़ा तो मैं मानूंगी अरे भाई मैं आपके गले में पड़ गई हूं, अब मैं गिरने वाली हूं, ओ मैं तो मुरझाने वाली हूं, ओ मेरी सुगंध तो ऐसी है, मुझे किसी ने पानी के फ्लावर वाज में डाल दिया। पुष्प के साथ जो जो होगा वो मेरे साथ होने लगेगा, इसके अंदर प्रवेश यानी ये मैं हूं बस। ऐसे ही परमात्मा ने ये शरीर मन बुद्धि का संघात किया और उसमें प्रवेश किया। पर प्रवेश किया ऐसे कैसे किया कि ये मैं हूं, मैं का प्रवेश हो गया, यहां से ये जो अज्ञान जो है ये यहां से जुड़ गया परमात्मा की माया से, क्या हो गया ये संघात के साथ जब परमात्मा की शक्ति मिल गई तो अविद्योपाधि जीव, ये एक एक एक एक मैं की उपाधि क्या लग गई, बड़े मैं की उपाधि क्या है, बड़े अहम की उपाधि क्या है, माया। वही माया सैकड़ों टुकड़ों में, ये क्या है एक मिरर है, एक कांच के, वो मिरर के मैं हजार टुकड़े कर दूं, मैं हजार टुकड़े कर दूं और मैं आके खड़ी रह जाऊं तो मैं कितनी दिखूंगी, हाँ मैं हजार दिखने लगूंगी, पर हर मिरर मैं जो ये बाहर जो हूं ऐसी के ऐसी हर टुकड़े में नहीं दिखूंगी, उपाधि बदल जाऊंगी। मैं कैसी दिखूंगी हर मिरर में, जिसके जैसे टुकड़े, जैसा वजन, जैसी शाइनिंग। कोई टुकड़ा खराब होगा, कोई टुकड़ा दाग वाला होगा, कोई टुकड़ा एकदम स्वच्छ होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, उपाधियां बदलती है। एक ही प्रतिबिंब सब टुकड़े में है, ऐसे वो एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म हम सब में, हम ऐसे टुकड़े टुकड़े टुकड़े हैं, हम सब में वो झलक रहा है। कैसे? देखिए सब भिन्न टुकड़ों में हजार हम दिखते हैं, पर हजार में है कौन? हर एक हजार प्रतिबिंब बोलेगा तो क्या बोलेगा, वो एक ही मैं है, ऐसे एक ही अहम वृत्ति। पर क्या हो जाता है कि टुकड़े के अंदर का जो व्यक्ति है वो कैसा है, वो बोलेगा अरे भाई मैं तो इतना छोटा दिख रहा हूँ, मैं प्रतिबिंबित हूँ, मैं ऐसा छोटा दिख रहा हूँ, और आप बाहर जो भी कार्य कर सकते हैं, भीतर का टुकड़ा स्वतंत्र नहीं है कार्य करने में। इसीलिए लगता है कि परमा जीव कैसा है भाई, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं अल्पशक्तिमान हूँ, मैं छोटा हूँ। तो उसे आके बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, जो तू है वही मैं हूँ, तेरी छोटी उपाधि निकाल ले, मेरी बड़ी उपाधि निकाल ले, तो अहम प्रत्यय से हम एक ही है। ऐसे ये परमात्मा सब जगह अहम वृत्ति से एक ही है। हम क्या समझना चाहते हैं कि प्रवेश किया वो कैसे किया, ये मैं हूँ। और करना क्या है, पूरी जिंदगी ये मैं हूं ऐसा जो प्रवेश से घटित हो गया, वो जो घटित हो गया उसे प्रबोध समय यक साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम एव अद्वयम। ये परमात्मा जो अहम वृत्ति से शरीर मन बुद्धि में प्रवेश कर गया, वो परमात्मा क्या है, वो जो टुकड़ा जो है कांच का टुकड़ा, उसे जब समझ में आता है कि मैं ये जो भीतर जो अहम अहम मेरा छोटा हो रहा है वो सत्य नहीं है, मैं किसका प्रतिबिंब हूँ वो मुझे जानना चाहिए, तो मेरा प्रवेश किसने मेरे अंदर प्रवेश किया है, उसका सच्चा ज्ञान जब से मुझे जब मुझे होगा तब मुझे पता लगेगा कि ये मैं शरीर मन बुद्धि की उपाधि नहीं हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। ये कैसे पता लगेगा, मात्र प्रबोध समय मात्र ज्ञान से। इसीलिए हम कहते रहते हैं ज्ञातवातम मृत्यु मत्येति नान्य पंथा। ये इसलिए, ये ज्ञान को इतना महत्व महात्म्य देते हैं, ये इसलिए क्योंकि उसके बिना आपको समझ में आने वाली बात नहीं है। तो उपनिषद का दृष्टांत इतना सुनने के बाद परमात्मा में थोड़ी श्रद्धा थोड़ा समझ में आने लगा तो हमारे दृष्टांत बदलते रहते हैं। अब मुंडक उपनिषद का दृष्टांत आया, यथोर्ण नाभि सृजते गृण्णते च। ये सब कुतर्क को यहाँ ये श्लोक में भेदन हो जाता है। हाँ यथा पृथिव्याम, और आप सब उपनिषद के श्रवण किए हुए साधक है तो ज्यादा समझ में आएगा। यथोर्ण नाभि सृजते गृण्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति। यथा सत्पुरुषात् केशलोमानी तथा अक्षरात् संभवन्ति इह विश्वम्। भई ये विश्व कैसे उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप पूछते ही है, जानना ही है, तो सुन लीजिए। उपनिषद कहते हैं यथोर्ण नाभि,
जो मकड़ी होती है, गुजराती में उसको करोलिया कहते हैं, तो ये जो मकड़ी है वो लार से अपनी ही अपने ही पेट से अपने ही मुख से वो अंदर जो ग्रंथि होती है उससे एक तार निकालती है और वो पूरा जो उसका जाल है वो धीरे धीरे धीरे करके बुनती है और उसी में वो स्थापित रहती है, सेंटर में रहती है। इसी प्रकार उसी में तो मटेरियल कहाँ से लाई वो मकड़ी, तो बोले खुद के अंदर से ही। हाँ, पर जाला जो बनाते हैं ये जाला बनाने का ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो बोले वो ज्ञान उसके भीतर ही था, कोई और की मदद लेनी नहीं पड़ी। भाई जैसे मकड़ी ने अपने ही भीतर से मटेरियल निकाल के जाला बुना, इसी प्रकार ये आकाश से लेकर ये पुरुष तक का जितना भी है झुंबन दिख रहा है वो परमात्मा में से ऐसे उत्पन्न हुआ। ये मकड़ी के दृष्टांत से इतना समझ लीजिए कि जो निमित्त कारण है वो उपादान भी हो सकता है, इतना ही आपको हमें समझाना है। बोले समझ गए। अच्छा, किम काय स खलु किम उपादान मिति, उपादान की बात हो गई। अब कहते हैं कि कैसी कौन सी काया से बनाया, तो उसके लिए यही श्लोक दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। कौन सा? यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती। अच्छा, मकड़ी ने तो कर्म भी किया, दिख रहा है कि कर्म हो रहा है, और यहाँ तो परमात्मा को आप अकर्ता कहते हैं, कोई भी प्रकार का कर्म वह नहीं कर सकते, फिर भी उत्पत्ति बतानी है, तो उसके लिए दृष्टांत दिया यथा पृथिव्याम, जैसे पृथ्वी में धरा में औषधियां उग जाती है, घास जो उग जाता है तो पृथ्वी पे चलेंगे, पानी अपने आप जब आता है भेज होता है, तो जो बारिश के समय में बहुत सारी वनस्पतियां अपने आप उग जाती है। आपने बीज बोए क्या अंदर? हाँ, आपने तो बीज नहीं बोए, आपने लॉन भी उगाई होगी तो क्या होगा, उसमें कोई दूसरे प्रकार की भी घास उग जाती है और फिर उसको हम निकाल देते हैं, तो वो अपने आप स्फुरित हो जाती है, कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं, कर्म नहीं, किसी और का कर्म नहीं, और वो वनस्पति जैसे फूट जाती है जमीन में से, ऐसे ये विश्व उत्पन्न हुआ है, आप इतना ही ध्यान रखिए। अच्छा, किमी है किम काय, फिर कहते हैं किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च। अभी आधार क्या है, तो आधार के बारे में एक दृष्टांत देते हैं। जब ज्ञानी जन संत हमें समझाते हैं तब एक दृष्टांत दिया जाता है कि भाई हजारों मील ऊपर पक्षियां हम यहाँ जो देखते हैं वो ही इतने नहीं है, अब ऊपर हिमालय में जाइए, नारायण आश्रम में जाइए, तो बड़े पक्षी हैं वहाँ, बड़े बड़े हैं, तो वहाँ 9000 फीट पे वो आश्रम है और वो पक्षी तो उससे भी ज्यादा ऊपर उड़ रहा है, यानी ही इज फ्लाइंग एट दी लेवल ऑफ 11000 या 10000, पर आप उससे भी ऊपर चले जाएंगे, कैलाश मानसरोवर भी जाएंगे तो वहां भी पक्षी दिखेगा, तो वो पक्षी 18000-20000 की हाइट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था देखी है वहां 18000-20000 पे सब जगह बर्फ ही होगा, बर्फ में अगर अंडा दे भी दिया तो सेवन कहां होगा, बर्फ के अंदर तो रख नहीं सकेंगे, ढक नहीं सकेंगे, तो ये जो पक्षियां ऊपर जो है उसके बच्चे अंडे में से निकलेंगे कैसे? हाँ, परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि वो पक्षी एकदम ऊंचे आकाश में उड़ता है 20000-25000 की हाइट के ऊपर, और वहां से अंडा जब देता है तो रास्ते में गिरते वो जो उसका पतन जो होता है नीचे आना होता है, ग्रेविटी से नीचे ही आएगा, वह नीचे आते आते आते 10000-9000 पे तो वो फूट जाता है। ये जो फोर्स होता है वो फोर्स ही उसके सेवन का कारण बन जाता है, ये फोर्स से जो उष्मा होती है वो उष्मा से वो फूट जाता है और पक्षी उड़ने लगता है। ये कितनी व्यवस्था है, धरती पे ऐसा हमें दिखा, धरती पे जरूर नहीं है क्योंकि बर्फ नहीं है, यहाँ व्यवस्था है, आराम से वो अंडा सेवन होगा और बाहर आएगा, वहां व्यवस्था नहीं है, सभी प्रकार की ऑक्सीजन भी कम है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए परमात्मा ने ये। तो भाई पक्षी का हमें क्या समझना है, हमें वो पक्षी के ऊपर पीएचडी नहीं करना है, हमें ये समझना है कि भाई जैसे बिना कोई आधार अंडे में से बच्चा भी निकल सकता है, तो वो पक्षी और अंडे का आधार जो परमात्मा है वो बिना आधार क्या कुछ नहीं बना सकता, उसे आधार की जरूर है। बोले नहीं, उसे आधार की जरूर नहीं है। हाँ, अब समझ में आया कि सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे हो सकती है, आप इतना ही समझे कि हम हमारा प्रिय दृष्टांत लेकर उपस्थित हो जाते हैं। कौन से प्रिय दृष्टांत लेकर उपस्थित हो जाते हैं?
जो बोले रज्जु सर्पवत ये उत्पत्ति हुई है, वो दृष्टांत बाद में, मैं आपको दृष्टांत की सीमाएं बताती हूँ। जैसे हमारा साधन का, हमारा साधन जैसे सशक्त हो जाता है, बुद्धि का साधन, सूक्ष्म बुद्धि, ऐसे ये दृष्टांत बदलते रहते हैं। साधक को ध्यान रखना चाहिए, कोई भी एक दृष्टांत को लेकर जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि नहीं यहाँ ऐसा ही कहा है तो उत्पत्ति ऐसी ही होगी, यही कहते हैं तो ऐसी ही होगी। कभी साधक एक ही एक समझ लीजिए, साधक जिद्दी नहीं होता, जिद छोड़ दीजिए बस, तो ही आपको वो परमात्मा बहुत सरलता से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार परमात्मा में से ही ये सब उत्पत्ति हुई। और अब मांडुक्य उपनिषद आगे प्रवृत्त होकर बताती है कि हकीकत में उत्पत्ति हुई ही नहीं है। क्यों हुई नहीं है? जैसे स्वप्न सृष्टि निर्माण होती है, स्वप्न सृष्टि थोड़ी देर के लिए रहती है और चली जाती है, तो जागृत अवस्था में वो स्वप्न की कितने पदार्थ रहे आपके साथ? एक भी रहे नहीं। और उत्पत्ति हुई थी कि नहीं? उत्पत्ति तो हुई थी, दिख भी रही थी और हम उसमें एंजॉय भी कर रहे थे या दुखी भी हो रहे थे। उत्पत्ति दिख रही है तो हम और आप भी हमारे छोटे से संकल्प से, हाँ, हमारा संकल्प छोटा छोटा होता है, हमारी जो भी विषय की वासनाएं वृत्तियां होती है जागृत में जो भुगत नहीं सकते वो रात को हम भुगतते हैं। ये तो साइड वर्क है, ये तो बाई प्रोडक्ट है कि भुगती जाती है। मेन इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि दुखी हो या सुखी हो, स्वप्न जैसे भी आते हो उसकी बात नहीं, स्वप्न आते हैं या नहीं, यू आर दैट मिनी लॉर्ड, यू आर दैट परमात्मा। ये जो मन है संकल्प करके पूरी सृष्टि आपके भीतर उत्पन्न होती है और उत्पत्ति का कार्य सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है और मेरे भीतर कुछ उत्पन्न हो सकता है, तो नक्की वो मेरे भीतर जो अहम वृत्ति से जो परमात्मा जो प्राविश्य अनुप्राविश्य, हाँ, प्रकर्षण अनुप्राविश्य, ये कोई दरवाजे में से आने वाला प्रवेश नहीं है, ये कोई विशिष्ट प्रकार का प्रवेश है। नक्की अब मैं मान रही हूँ कि मेरे भीतर भी वो परमात्मा का प्रवेश हुआ है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों मेरे में हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? संकल्प से हो रहे हैं। मटेरियल कहाँ? मेरा ही। उपादान मेरा ही। निर्माण मेरा ही। स्वप्न सृष्टि में जो भी निर्माण किया, पूरी सृष्टि वो पूरी मेरी है। ओहो, मेरे में ही ऐसा हो रहा है, मेरे में ही वो अहम वृत्ति से परमात्मा है। मैं ये अल्पज्ञ अल्प उपाधि वाली ये जीव जो जिससे समझती हूँ वो भी ये उत्पन्न कर सकती हूँ। परमात्मा का ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि रूप से भी अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया, उसको भी सपने आते हैं, वो भी उत्पन्न करता है। तो इमटीरियल ऑफ आइदर यू वेदर यू नो और डोंट नो, वो परमात्मा तो अंदर जृंबण हो ही रहा है। तो मेरा और आपके सचराचर कारण का समष्टि जो परमात्मा जो ब्रह्म है वो क्या ये उत्पन्न नहीं कर सकता, ये धारण नहीं कर सकता हमें? इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो हे परमात्मा, श्रद्धा से आपको न मानने वाले कुतर्क जो करते हैं वो आपके उत्पत्ति के बारे में ऐसे कुतर्क करते हैं, और ये स्तुति करके ये स्तोत्र से मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा कुतर्क मेरे मन में कभी न आए। श्लोक नंबर 6। अजन्मानो लोकाः किमवयभवन्तोऽपि जगताम्

0: मैं वो कुतर का श्री पुष्पदंत जी को इतना अखर रहा है। देखिए, जिसने जान लिया है वो सहन नहीं कर सकता कि मैं जो परमात्मा का उपास्य हूं, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, मुझे हर्ज नहीं है। साधक का यह दृष्टिकोण हमेशा रहना चाहिए। मुझे आप अल्प कह लीजिए चलेगा, पर मैं जिसको, मेरा जो आराध्य देव है, मेरा जो उपास्य है, वो ब्रह्म है और वो बड़ा विराट है, बड़ा है, उसके बारे में तो कोई कम बोलेगा तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे बारे में कुछ भी बोलिए तो मुझे हर्ज नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर परमात्मा को, ब्रह्म को जानने चले हैं तो जिसे आप जानने हैं, जानते हैं, उसकी गरिमा बनाए रखना।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 7. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோர்சஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோர்சஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Nandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Bhakti Shakti Samhita, Vatsal Mayi Matao, Kisne Mayi Veno, Aap Sarva Bandhu. To Taittiriya Upanishad ko Madhyam Bana Karke, उपनिषद के प्रारंभ में जो किया गया मंगलाचरण उसको लेकर के चर्चा की जा रही है. तो ऋषि मंगलाचरण करते हुए शांति पाठ रूप जो मंगलाचरण है उसको करता हुआ संकेत करता है, सन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमः सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्रमः. यहां पर जो है सबसे पहले संकेत किया सन्नो मित्र. मित्र शब्द का अर्थ बतलाया, मित्र क्या है? जो मान्य करता है, सहायक है, उसका नाम ही है यहां मित्र शब्द. श्रेष्ठ है, ये सब शब्द बतलाए. उसकी प्रकार से फिर आगे किया वरुण, अर्थात वर्ण करने अर्थ में धातु से वर्ण शब्द बना वरुण, अर्थात जो उत्तम है, श्रेष्ठतम है, ऐसे उसका वर्ण करना, ये सब संकेत किया. आगे संकेत किया भवत्वर्यमा. अर्यमा शब्द से अर्थ बतलाया, अर्य माने होता है श्रेष्ठ, सुसंस्कृत, ज्ञान आदि आदि शब्द उसके बतलाए. तो वो क्या है? तो मां शब्द का अर्थ मापना, अर्थात हम जो कुछ भी मापते अपने मन के द्वारा ही संकल्पित होकर के मापते हैं. तो मां शब्द का अर्थ मन कहा. तो श्रेष्ठ मन या जो है अकुटिल मन, सरल मन, ये सब संकेत किया गया. ऐसा हमारा मन हो तो हमारे मन में ये सब जो है गुण प्रदान करने वाला जो देव है उससे प्रार्थना की गई. आगे संकेत किया कि इंद्र, सन्नो इंद्र. इंद्र क्या है? तो इंद्र शब्द को लेकर के बतलाया, ये बल का परिचायक, पराक्रम का परिचायक है, शौर्य का परिचायक है. ऐसे इंद्र को लेकर के यहां संकेत किया कि वो इंद्र हमारे में बल प्रदान करे. अब बल प्रदान करे तो बल क्या है इसको लेकर के चर्चा की गई. कौन सा बल हम चाहते हैं? तो यहां पर ऋषि जो है, ऋषि का तात्पर्य ही होता है वेद शास्त्र तत्वा अवगंताराः इति ऋषयः मुनयः वः. ऋषि हम किसे कहते हैं? जो वेद शास्त्रों के तत्व का अवबोध करने में लगा हुआ है उसका नाम है ऋषि या मुनि. इसी को दूसरे शब्दों में भी संकेत कर दिया जाता है, मननम शीलम एशान ते मुनयः ऋषयः वा. मनन करना, चिंतन करना ही हो गया है स्वभाव जिसका, उसे क्या कहते हैं? ऋषि मुनि. दूसरे अर्थों में कह सकते हैं जो अनुसंधाता है, अन्वेषण करता है उसको भी ऋषि शब्द से कहा। और आधुनिक को भाषा के अंतर्गत उसी को वैज्ञानिक कहा। वैज्ञानिक लोग भी अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, वो भी अनुसंधाता है, और ऋषि भी यही कार्य ऋषियों का है, वो भी अन्वेषण करने वाले, खोजने वाले। फिर कहने लगे कि वही वैज्ञानिक और ऋषि, इनमें दोनों शब्दों में अंतर क्या है? जब दोनों ही खोज करने वाले हैं, अन्वेषण करने वाले हैं, अनुसंधाता हैं, तो फिर वैज्ञानिक और ऋषि में कोई फर्क है क्या, या दोनों एक ही? कहने लगे अन्वेषण खोज की दृष्टि से दोनों में साम्य है, एकता है। फर्क किसमें है? फर्क भी बतलाया। फर्क किसमें है? वैज्ञानिक कार्य को प्रधानता देते हुए अन्वेषण करते हैं, उनके यहां कार्य की प्रधानता है। ऋषियों के यहां खोज करते हैं लेकिन कारण को वो प्रधान मानते हैं। ये अंतर, एक कार्य को प्रधानता देते हुए अन्वेषण कर रहा है, एक कारण को जो है प्रधानता देते हुए अन्वेषण कर रहा है। तो ये ऋषि में अंतर है। तो ऋषि की लक्ष्यात्मक जो दृष्टि है वो किस पर है? कारण पर है। वैज्ञानिकों की जो लक्ष्यात्मक दृष्टि है वो किस पर है? कार्य पर है। इसलिए कार्यगत जो सिद्धांत होता है वो परिवर्तित होता रहता है, और कारणगत जो सिद्धांत है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। तो ऋषि यहां लक्ष्य उनका क्या है? ऋषियों का जो ऋषि शांति पाठ कर रहा है, मंगलाचरण कर रहा है, उसका लक्ष्य है कारणात्मक, जो अपरिवर्तनीय है। तो इस प्रकार से अपरिवर्तनीय को लक्ष्य बनाकर के जब खोज करेगा तो उससे जो उसे लाभ होगा वो कैसा होगा? अपरिवर्तनीय होगा। और जब हम कार्य को परिवर्तनशील को लक्ष्य बनाकर के खोज करेंगे, उससे जो हम खोज करके निकालेंगे उससे जो लाभ होगा वो भी कैसा होगा? परिवर्तनशील होगा। ये अंतर है। तो ऋषि यहां पर, ऋषि का लक्ष्य समझ लो कि क्या है, तो कारण है। और आप जानते हो कारण की ही सत्ता होती है, कार्य की सत्ता केवल प्रतीयमान होती है या मायिक होती है या व्यावहारिक होती है। कार्य की सत्ता सर्वथा रहती नहीं और कारण की सत्ता सर्वथा रहने वाली होती, यह अंतर है। तो इसलिए ऋषि का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? अपरिवर्तनीय या निरतिशय जो सुख है वही उसका लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति करने के लिए ऋषि चाह रहा है कि उसकी प्राप्ति कब होगी, तो उसके साधन क्या हैं, और उन साधनों से जब हम संपन्न होंगे तभी हम उसे प्राप्त कर सकें। इसलिए उसके साधन क्या हैं उनका ही यहां संकेत किया। वो साधन क्या हैं? तो उसके लिए उन्होंने सहयोग मांगा, और जो है मने सहयोग मांगते हुए मन की सरलता आदि मांगी, और उसी के साथ में बल मांग रहे। तो वो कौन सा बल? जिनके द्वारा, जिन साधनों के द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। तो बल को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो जो श्रुति कहती है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, श्रुति ने भी कहा यह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती। तो कहने ही लगे कौन सा बल? वैज्ञानिकों के पास भी बल है, और हमारे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भी बल है, अन्य लोगों के पास भी बल है। क्या ये बल, क्या उस बल को प्राप्त करने के लिए हमें मल्लशाला में जाकर के मल्लई करनी पड़ेगी, या शस्त्र अस्त्र इकट्ठे करने पड़ेंगे, या इसी प्रकार से अन्य साधन इकट्ठे करने पड़ेंगे? कहा ये सब बल नहीं। तो कौन सा बल? तो उसकी चर्चा कर रहे थे बृहदारण्यक श्रुति के अंतर्गत, संकेत किया पांडित्यम निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेत। क्या कहा? पांडित्यम निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेत। तो पांडित्यम तो पांडित्य क्या है? तो आप जानते हो, सुनते रहते हो, सत और असत का विवेचन करने वाली बुद्धि जिसको पंडा बुद्धि कहते, और वह पंडा बुद्धि जिसमें है उसे पंडित कहते, और ऐसे पंडितत्व धर्म से संपन्न जो है, जो भाव है, उसका नाम है पांडित्य। तो ऐसे पांडित्य भाव से युक्त जो, और जब ये पांडित्य आ जाएगा, ये भाव जिसमें आ जाएगा, सद असद का विवेक करना आ जाएगा, तो उसके अंतर्गत क्या होगा? तो जहां साधन चतुष्टय की बात की गई तो वहां क्या बतलाया? पहले विवेक और फिर वैराग्य। पांडित्य विवेक के बाद वैराग्य आता है, इसलिए कहा पांडित्यम निर्विद्य। आगे निर्वेद शब्द की चर्चा करते हैं। पांडित्य को प्राप्त करता हुआ वह वैराग्य को प्राप्त करता है, और ऐसे पांडित्य वैराग्य से संपन्न जो, वही इस बल को प्राप्त करने वाला होता। वो बाल्यन तिष्ठासी, तो वो क्या है? बाल्य भाव में स्थित हो जाता है, तिष्ठा से। और ऐसा जो बाल्य भाव में स्थित होता है, वही उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता। तो ऐसा बाल्यत्व, बाल्यत्व का मतलब अन्य जो है अवस्थाकृत बाल्यत्व नहीं, अवस्थाकृत जो बाल्यत्व है वो बाल्यत्व नहीं, वो बल नहीं, किंतु यहां पर क्या बाल्यत्व है? तो जहां पर विवेक वैराग्य से युक्तता होकर के जो उसी भाव में विद्यमान है, उसी को यहां बाल्य भाव से संकेत किया गया। अब जब ये बाल्य भाव आएगा तो क्या होगा? सत असत का ज्ञान हुआ तो नियम है, जब हम जानते हैं कि ये पदार्थ सत है और ये असत है, तो किसी भी प्राणी की असत में फिर इहा नहीं हो।

क्या हैं? तो वो हो इस स्थिति वाले, जिस स्थिति का यहां रूप बतलाया जा रहा, उस स्थिति से संपन्न वो सनत कुमार। सनत शब्द का अर्थ होता है शाश्वत, अर्थात जो सर्वदा रहे हमेशा। और कुमार शब्द का अर्थ बतलाया था कुत्सित मारे अति कुमार, माने मार शब्द माने काम। मार शब्द का अर्थ क्या है? काम। तो जिसने कुत्सित कामनाओं का त्याग कर दिया, जिसके अंदर कुत्सित कामना है ही नहीं। कुत्सित कामना का मतलब है राग द्वेष पूर्विका जो कामना होती है उसका नाम होता है कुत्सित काम। और राग द्वेष से रहित जो कामना होती है उसे कहते हैं अकुत्सित काम। इसलिए गीता भगवान ने क्या कहा? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तृष्व। जो धर्म का विरोध न करने वाला, तो धर्म का विरोध क्या है? तो वहां सीधा संकेत है, जहां कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं, लेकिन केवल कर्तव्यता को लेकर के देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार क्रिया करने वाला, ठीक है, उसकी अपनी कोई इहा नहीं, कोई राग नहीं, राग पूर्व का इहा नहीं है या द्वेष पूर्व का इहा नहीं है। ऐसा जो काम है, ऐसी जो कामना है, ऐसी जो इच्छा है, उसका ही नाम क्या है? माने उसी को ही सनत कुमार करके कह दो, या बाल्य की जो है इच्छा कर। तो इस प्रकार से संत कुमार के अंतर्गत चर्चा की गई। और भी इसको देखें, गीता में भगवान ने बड़े ही सरस और सुंदर शब्दों में इन चीजों को बतलाया। इसलिए क्या कहा? मानव जीवन की सार्थकता कब है? तो इसके लिए भगवान ने संकेत किया कि वही ये बाल्यत्व हमारे अंदर आ जाए, और बाल्यत्व को लेकर के हम उस बाल्यवस्था का जो सुख है उसे प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन की सार्थकता। तो संकेत किया ये कब होगा? तो गीता में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने संकेत किया, सक्नोत्तिहैव यह सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। अब देख लो, जो श्रुति कहती है उसी को स्मृति प्रतिपादित करती है, हमारे इतिहास पुराण भी उसी को प्रतिपादित करते हैं। अब संकेत किया, शक्नोति समर्थ हो गया, सामर्थ्य वाला हो गया, शक्ति वाला हो गया। कौन सी सामर्थ्य आ गई, कौन सा बल आ गया, कौन सी शक्ति आ गई? तो क्या कहा? शक्नोति इह एव, एव शब्द भी जोड़ दिया, एव शब्द दृढ़ता का वाचक है। तो इह एव, इह शब्द का अर्थ किया अस्मिन लोके, इसी लोक में, इसी संसार में रहते हुए, अथवा अस्मिन शरीरे वा, इस शरीर में रहते हुए ही, इस देह में रहते हुए ही। शक्नोति माने जो समर्थ हो गया, सामर्थ्य वाला हो। शक्नोति हैव सोढुम का क्या करने में समर्थ हो गया? का सहन करने में समर्थ हो गया। सोढुम माने सहन करने। कहा अच्छा, तो शक्नोति हैव सोढुम कब? तो कहने लगे आचार्य शंकर ने लिख भी दिया, का भी क्या इसकी जरूरत है, वृद्धावस्था आ जाएगी तब सह लेंगे। भाई वहां तो आचार्य शंकर लिखते हैं कि नहीं नहीं, सामर्थ्य रहते रहते और उसको सामर्थ्य को प्राप्त कर ले, सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर ले, उसी की श्रेष्ठता। लेकिन वैसे गथे कहा काम विकारा, सुस्के नीरे कहा का सारा, तो वो स्थिति आए तब कोई लाभ नहीं। इसलिए संकेत किया कि शरीर के रहते रहते, सामर्थ्य के रहते रहते, और फिर जो है हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाए, ये बल आ जाए। तो शक्नोति एव सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर के जीर्ण होने पर या शरीर के नष्ट होने पर के लिए बात नहीं कही, शरीर के रहते रहते, यह शब्द का प्रयोग कर दिया। एक

0: यत्र एवकारा तत्र अन्यत्र नियम। जहां एवकार आ जाता है वो अन्य का व्यावर्तन करते हुए उसी वस्तु में बांध देता। कहीं क्रिया के साथ प्रयोग होता है एव का, कहीं कर्ता के साथ प्रयोग होता है, कहीं कर्म के साथ। जैसे आप सुनते हो अर्जुन एव धनुर्धरा, तो क्या किया, अन्य धनुषधारी हैं लेकिन वहां अर्जुन में बांध दिया, अर्जुन ही धनुषधारी, तो ये क्या है, कर्ता के साथ बांध दिया। पांडुरेव शंख, शंख जो है कैसा होता, का पीला ही होता, तो ये जो है उसके माने कर्म के साथ बांध दिया है। तो इस प्रकार से कहीं भवत्येव क्रिया के साथ जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से यहां पर भी संकेत कर दिया, माने कहा इस शरीर के रहते रहते ही। और जैसे आप कहते हो कि वही सभी लोग आ जाना, लेकिन आपको अवश्य ही आना पड़ेगा, है ना, तो निश्चयात्मक कर दिया। ऐसे ही यहां पर भी माने शरीर के रहते रहते जो समर्थ हो जाए, तो किस में समर्थ हो जाए, किसको सहन करने में, तो वहां भी यही संकेत किया। काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम का जो उद्वेग है, क्रोध का जो उद्वेग है, उनको सहन करने में जो समर्थ हो गया। ये आवेश आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आवेश आता है, आवेश की आंधी आती है तो क्या करती, आंधी वृक्षों को गिरा चली जाती, रुकती नहीं। वैसे ही यहां पर भी ये सदा रहने वाले भी नहीं है, आते हैं जाते हैं, लेकिन आते जाने में ही क्या करते, हमको धराशायी कर जाते, हमारा नुकसान कर जाते। इसलिए कहा ऐसे इन आवेशों को, उद्वेगों को जो सहन करने में समर्थ हो गया, ये है बल, ये सहन शक्ति। अब यही चीज वहां पर संकेत की सनत कुमार शब्द को लेकर के, सनत कुमार की भी वही स्थिति बतलाते हैं कि जो इस प्रकार से सदा जो है अपने में जो बाल्य भाव में स्थित रहने वाले हैं, ऐसे बल से युक्त हैं, तो उनका बल क्या है, संकेत किया। एक बार सनत कुमार जो थे हिमालय की उपत्यका में बैठे हुए थे, और हिमालय की उपत्यका में बैठे हुए थे और अपने इसी बल से युक्त होकर के शांत चित्त बैठे, जब इसके अंतर्गत क्रोध नहीं, कामना नहीं, तो कोई हलचल भी नहीं हो, ऐसे अपने बाल्य भाव में स्थित बाल्य निष्ठा से, उधर से भगवान शिव और पार्वती भ्रमण के लिए आ गए। जब वो उधर से आए तो भगवान शिव ने देखा वो अपनी मस्ती में बैठे हुए थे, भगवान शिव तो समझ गए कि भाई ये अपने बाल्य भाव में स्थित है, लेकिन पार्वती जी ने देखा तो पार्वती जी को लगा जगतः पितरौ बंदे पार्वती परमेश्वरौ, सारे जगत का आदि कारण तो हम लोग हैं, प्रकृतिम तुम आयम विद्धि मायनम तुम महेश्वरम, तो सारे जगत का आदि कारण मैं हूं, हम लोग हैं, तो जगत के माता पिता हम हैं, और ये ठूंठ सा बैठा हुआ है, न इसने नमस्कार किया, न इसने खड़े होकर स्वागत किया है, तो ये जो इस प्रकार से बैठा हुआ है, ऐसा भाव उनके अंतर्गत आया। इसलिए पार्वती ने कहा तू जो है अविचारशील होते हुए और जो है एक ऊंट की तरह से, जड़ व्यक्ति पशु की तरह से बैठा हुआ है गर्दन ऊपर किए हुए, इसलिए जा तू ऊंट हो जा, संत कुमार को ये श्राप दे दिया, पार्वती ने श्राप दे दिया और आगे बढ़ गए। संत कुमार को ऊंट के शरीर की प्राप्ति हो गई, संत कुमार को ऊंट के शरीर की प्राप्ति हो गई, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों परिवर्तन नहीं हुआ, तो गीता का दूसरा अर्थ आपने पढ़ा होगा, भगवान ने क्या कहा, यह बल भी कब आता है, तो एक और श्लोक बच रहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। क्या संकेत किया, आप जो है भोजन छोड़ दोगे आंख बंद कर लोगे देखना छोड़ दोगे, कान बंद कर लोगे सुनना छोड़ दोगे, लेकिन इतना छोड़ देने मात्र से आप जो है विषयों से हैं या हलचल से रहित नहीं हो सकते। कहा क्यों? तो इसके लिए गीता में बहुत प्रकाश से तृतीय अध्याय में भी संकेत किया, तो वो कहा रसवर्ध्यम। हमने ऊपर से तो सुनना छोड़ दिया, खान बंद कर लिए, आंख बंद कर ली, भोजन का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसका रस बैठा हुआ, उसकी कामना यहां बैठी, तो वो हमको जो है प्रताड़ित करेगी। एक दृष्टांत सुना दें आपको, दृष्टांत क्या, घटित घटना सुना दें। सनसी के आसपास की बात है, उस समय हम लोग हरिद्वार में थे, आयु भी छोटी थी। एक बड़े अच्छे संत थे, उनके साथ उज्जैन का शायद कुंभ था, 80 या 89 की बात है, तो उनके साथ हम लोग हरिद्वार से चले, तो वो संत जो थे मौन धारण किए हुए थे, मौनी मौनी उनको कहते भी थे, और 50-55 की आयु भी उनकी थी। हम लोगों की उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हुई, अच्छे संत हैं, शांत प्रिय हैं, तो रास्ते में उनकी सेवा करते हुए खान पान सब पूछते हुए उनके साथ गए। उज्जैन पहुंचे, उज्जैन पहुंच करके वहां मंडलियां चलती, तो हम लोग जहां पर जिस कैंप में रुके थे वहां भी मंडली आई। उस मंडली में वो स्वामी जी भी थे, और जो नारियल वाली चिप्पी कमंडल उनके हाथ में था। एक संत से उनका जो है किसी प्रकार से विवाद हो गया, तो पहले तो वो इशारे से चेष्टाओं से उनसे चर्चा करते रहे, लेकिन फिर वो इतनी बात बढ़ गई कि उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो जो हाथ में चिप्पी थी वही उन्होंने उसके सिर में मार दी, उसके सिर से खून निकल पड़ा। अब हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मौन, तो याद आया भगवत पादाचार्य शंकर कहा हुआ वचन, क्या, गिरा मौनम तु बालानाम, वाणी का मौन तो ये बालकों का काम है, माने अज्ञानियों का काम। वास्तव में मौन क्या होना चाहिए, तो ये संकेत करता। हम ऊपर से जो है वाणी नहीं बोलते हैं, शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलने की चेष्टा बैठी हुई तो हम लिखेंगे, स्लेट चाहिए, अमुक चाहिए, या संकेत करेंगे, तो ये सारी क्रिया। इसलिए संकेत कर दिया गया कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक वह जो रस बैठा हुआ है, यह बैठी हुई है, कामना बैठी हुई है, उसकी निवृत्ति नहीं होगी तब तक बात बनने वाली ऋषि को राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय सन, ये भगवान ने संकेत किया। तो अब जो है ये रस कब जाएगा, इस रस की निवृत्ति कब होगी, तो रस की निवृत्ति कहा जो परम है, जब तक उसकी दृष्टि नहीं बनती है तब तक ये रस जाता। परम को जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं बना पाते हैं, उसमें हमारी दृष्टि नहीं होती है, तब तक रस नहीं जाता, तब तक अपरम जो है उनमें रस बना रहता है। जी संकेत किया। तो यहां संत कुमार के जीवन में क्या था, वो बाहर से नहीं, उनके अंदर रस चला गया था, और जिसके अंतर्गत से रस चला जाता उसकी स्थिति क्या होती, तो इसको यदि समझना चाहे तो अष्टावक्र ने जनक को समझाते हुए इस बात को कहा। अष्टावक्र ने कहा, निर्वासनो निरालंब सुखंद मुक्त बंधन।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. The next program is Shiva Kirtanas. In this, you are about to listen Pranadarthi Haram song sung by Sri Rajaram Iyer. Thank you. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

दानायामे वर्चोदा वर्चा से पवस्व वाचे मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व क्रतु दक्षाभ्याम मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व चक्षुर्भ्याम मे वर्चोदसौ वर्चा से पवेथाम आत्मने मे वर्चोदा वर्चा से पवस्वजा से मे वर्चोदा वर्चा से पवस्वायुषे मे वर्चोदा वर्चा से पवस्वा विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्चोदसो वर्चा से पवेथाम को ओसिकतमो ओसिकस्यासिको नाम आसी

0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karmashaka, Adhyayam 10.
1: Atha Dashamo Adhyayaha
2: Om Deva Savitah Prasuva Yajnam Prasuve Mambhaga Aya Divyogan Dharvah Ke Etapah Ketan Nafpunatu Vachaspatir No Adhya Vajagasvadat ध्रुवसदं त्वां ऋषदं मनस्सदं उपयामग्रेहीतोऽसीन्द्र आजित्वा जुष्टं गृह्णाम्येषते यो निरिन्द्र आजित्वा जुष्टातमम् अप्सुषदं त्वा घृतसदं व्योमसदं उपयामग्रेहीतोऽसीन्द्र आजित्वा जुष्टं गृह्णाम्येषते यो निरिन्द्र आजित्वा जुष्टातमम् पृथिवी सदन त्वांतरिक्ष सदन दिवि सदन देव सदन नाक सदन उपयाम गृहीतोऽसीन्द्र आजित्वा जुष्टं गृह्णाम्येषते यो निरिन्द्र आजित्वा जुष्टातमम् अपाग्य रसमुद्वाज सज्ञ सूर्ये संतज्ञ समाहितम् अपाग्य रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णाम्युत्तमम् उपयामगृहीतोऽसीन्द्र आयत्वा जुष्टं गृह्णाम्येषते यो निरिन्द्र आयत्वा जुष्टातमम् ग्रह आ ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्रा आयमतिम् तेषां विषिप्रियाणां वोहमिषमूर्जज्ञ समग्रभम् उपयामगृहीतोऽसीन्द्र आयत्वा जुष्टं गृह्णाम्येषते यो निरिन्द्र आयत्वा जुष्टातमम् सम्पृचस्थसम् आभद्रेण पृन्ता विपृचस्थ विमा आपापेन पृन्ता इन्द्रस्य वज्रो ओसि वाजसास्त्वजायं वाजज्ञसेत् वाजस्य नुप्रासवे

जज्ञसरिष्यन्ताः बृहस्पतेर्भागमवाजिघ्रत। देवस्यावयज्ञसावितुः सवे सत्यसावसः बृहस्पतेरुत्तमन्नाकज्ञेरुहेमेन्द्रस्योत्तमन्नाकज्ञेरुहेम। देवस्यावयज्ञसावितुः सवे सत्यसावसः बृहस्पतेरुत्तमन्नाकामरुहामेन्द्रस्योत्तमन्नाकामरुहाम। बृहस्पते वाचं जय बृहस्पताये वाचं वदत। बृहस्पतिं वाचं जापयत। इन्द्रवाचं जयेन्द्राय वाचं वदत। इन्द्रं वाचं जापयत। एषा वस्सा सत्या संवागा भूत्यया बृहस्पतिं वाचमजीजपत। अजीजपत बृहस्पतिं वाचं वनस्पतयो विमुच्यध्वम्। देवस्यावयज्ञसावितुः सवे सत्यसावसः बृहस्पतेर्।

नमस्तुभ्यं त्रिलोकीनन्दनाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय वसुदेवाय ते नमः। संकर्षण

विष्टरश्रवसे तुभ्यं नमः सत्यमयाय च सत्यप्रियाय सत्याय सत्यगम्याय ते नमः। नमस्ते मायिने तुभ्यं मायाधीशाय वै नमः। ब्रह्मगाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे ब्रह्मजाय च तपसे ते नमस्त्वीश तपसा फलदायिने। स्तुत्याय स्तुतये नित्यं स्तुतिसंप्रीतचेतसे। श्रुत्याचार प्रसन्नाय श्रुत्याचार प्रियाय च चतुर्विधस्वरूपाय

नमस्तुभ्यं अकार परतारक प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरघ्न महेश्वर नानावाच्याय देवाय वर्ण प्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृते पुरुषात्पर निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोस्तुते सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकिने सर्वज्ञाय शरण्याय सद्योजाताय ते नमः वामदेवाय रुद्राय

त्रिपुरान्तकशङ्कर त्वयि भक्तिः परा मेऽस्तु महादेवानपायिनी सर्वदा मेऽस्तु सारथ्यं तव।

रुद्राय जगतां पतये नमः। त्वयि भक्तिर्दृढा मेऽद्य वर्धमाना भवत्विति।

सुरेश्वराचार्य जी ने अपने वार्तिक में इस स्तोत्र के विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। इस श्लोक का सामान्य अर्थ यह हुआ, विश्वम यानी तमाम नाम रूपात्मक व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ, जड़ और चैतन्य पदार्थ, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ, कार्य और कारण के रूप में जिन पदार्थों का प्रतिपादन करते हैं वो सारे पदार्थ, स्वर्ग से लेकर नरक पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, सारे के सारा पदार्थ समूह को यहां विश्व शब्द से संकेत किया। दो चीज हैं, एक अहम है और दूसरा इदम है। अहम एक अलग चीज है और इदम अलग चीज है। विश्व शब्द के अंतर्गत इदम आते हैं, यानी इदम पद के द्वारा जिसको भी संकेत किया जाएगा वह विश्व के अंतःपाती है, विश्व के अंतर्गत है। ये आपकी कुर्सी आप जो बैठे हैं और ये आपकी दरी जो आप बैठे हैं, ये आपके कपड़े जो आप पहन रखे हैं, ये आपका शरीर जो आप जिस पर रहकर सारे कर्मफल भोगते हैं, ये सब के सब विश्व के अंतर्गत है, क्योंकि जो वृष्टि है वह समष्टि के अंग होकर समष्टि के रूप में ही रहता है, समष्टि से बाहर नहीं जा सकता है, और जो समष्टि का रूप है वही वृष्टि, और जो वृष्टि का रूप है वही समष्टि, समष्टि वृष्टि ये दोनों ही एक है। तो उसी को यहां कहा विश्वम। ये कैसा है विश्व, क्योंकि कल के प्रसंग में ये बता रहे थे, पदार्थ यानी व्यवहार करने के लिए पदार्थों में दो चीज चाहिए, एक तो पदार्थों में होनापना अस्तित्व, और दूसरा पदार्थ के जाननापना ज्ञातृत्व। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहारो प्रवर्तते। तब ये प्रश्न हुआ था कि उन पदार्थों में जो अस्तिता है, होनापना है, ये कहां है, पदार्थ के अपने निजी है कि पदार्थ से भिन्न किसी और का अस्तित्व में ये पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, उसके प्रतीत होना ये स्वतंत्र।

0: मात्र अपनी है कि कोई और के प्रतीति में ये प्रतीत हो रहे हैं। इसको आप यूं समझ लीजिए, ये पदार्थ होना ये स्वतंत्र है कि इसके होने में कोई और हेतु है। ये पदार्थ यहां है इसको प्रूफ करने वाला, प्रमाणित करने वाला पदार्थ से भिन्न है। एक बार आपको एक प्रश्न और पूछ लो, यदि आप नहीं रहोगे तो ये पदार्थ है करके प्रमाणित कौन करेगा? पदार्थ खुद प्रमाणित करेगा कि नहीं करेगा?
1: नहीं करेगा।
0: तो इसे क्या सिद्ध हुआ? पदार्थ का होना पदार्थ में निर्भर न होकर किसी अन्य में निर्भर हो गया। यदि आप नहीं हैं, यदि आप नहीं हैं, तो फिर पदार्थ के होने का प्रमाण कैसे सिद्ध होगा? पदार्थ है ये कौन सिद्ध करेगा, कैसे सिद्ध होगा? आपके पहले होने पर ही न पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध होगा। यह तो होने के बारे में आपसे प्रश्न किया। दूसरी बात, यदि आप ही नहीं रहेंगे तो पदार्थ ज्ञात होगा कि नहीं है? तो आप कहोगे कि मैं नहीं रहूंगा तो दूसरे तो रहेंगे ना। अरे बाबा, जिसको हम आप कह रहे हैं वो सब आपके अंतर्गत जितने भी जानने वाले हैं वो सभी आ गए। तो दुनिया में जानने वाले यदि कोई नहीं रहा तो पदार्थ जाना जाएगा कि नहीं? यदि पदार्थ में जाननापना उसकी अपनी निजी होती तो कोई न रहे तो भी वह जाना जाता। इससे यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ के होने का अस्तित्व में भी दूसरा प्रमाण है, यानी दूसरे के द्वारा दूसरे के अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। और जानने में भी यही है कि दूसरे द्वारा दूसरा जाना जा रहा है। विश्व के सारे पदार्थों का ये नियम है। तो अन्य के अस्तित्व में अन्य सिद्ध हैं और अन्य के ज्ञातृत्व में अन्य जाने जाते हैं। तो आपके होने पर ये सिद्ध होगा, अन्यथा सिद्ध नहीं होंगे। आपके जानने पर ये जाना जाएंगे, अन्यथा ये जाना नहीं जाएंगे। तो यही बात यहां बता रहे हैं मूल श्लोक के द्वारा। ये जो सारा जो विश्व है ये कैसा है? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। दर्पण के अंदर दिखा हुआ, दिखाई देने वाला जो दृश्य है, पदार्थ है, दृश्य है या पदार्थ हैं, उस दर्पण के अंदर के जो दृश्य हैं या पदार्थ हैं, वह पदार्थ स्वतंत्र हैं कि नहीं? वे पदार्थ जहां दिख रहे हैं दर्पण के अंदर, वहां वो पदार्थ स्वतंत्र है कि नहीं, अस्तित्व में है कि नहीं?
1: नहीं।
0: जिस तरह दर्पण के अंदर के पदार्थ स्वतः अस्तित्व में नहीं है, अपने निजी अस्तित्व में नहीं है, स्वतंत्र रूप में वो पदार्थ सिद्ध नहीं है, इसी तरह आप ये पक्का निश्चय कर लो कि ये सारा का सारा विश्व प्रपंच स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है। स्वतंत्र सिद्ध नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है। दर्पण में दिखाई पड़ने वाला दृश्य दर्पण के अंदर है कि दर्पण के बाहर है? बताओ। दर्पण के अंदर, दर्पण में दिखाई पड़ने वाला दृश्य दर्पण के अंदर है कि दर्पण के बाहर है?
1: बाहर है।
0: दर्पण में दिखाई पड़ने वाला दृश्य न दर्पण के अंदर है न दर्पण के बाहर है। ध्यान देना, हम दर्पण में दिखाई देने वाले दृश्य की बात पूछ रहे हैं। दर्पण से बाहर दिखाई देने वाले दृश्य के बारे में नहीं पूछ रहे, हम बिंब के बारे में नहीं पूछ रहे, प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहे हैं, हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। दर्पण में दिखाई पड़ने वाला दृश्य दर्पण के अंदर है कि दर्पण के बाहर है?
1: कहीं नहीं
0: है, न दर्पण के अंदर है न दर्पण के बाहर है। यदि दर्पण के अंदर हो तब वह दर्पण की सत्ता से भिन्न सत्ता होकर रहना पड़ेगा, या दर्पण के बाहर हो तो भी दर्पण के सत्ता से भिन्न सत्ता वाला होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि वह दर्पण में केवल दिख रहा है, न दर्पण के अंदर है न दर्पण के बाहर है। तो ये जैसे दर्पण का दृश्य केवल प्रतीति मात्र है, उस दृश्य का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। दर्पण के अंदर दिखने वाले दृश्य का स्वतंत्र कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो जैसे कई बार होता है, एक को दुगना करना हो तो कितना समय लगता है? तो आप व्यापारी हो तो आपको पता होगा कितना समय लगेगा। 1 लाख को 2 लाख करना हो, 100 को 200 करना हो, 1000 को 2000 करनी हो, 500 को 1000 करना हो, तो वो तो फिर आपका काम है कितना समय लगाते हो। लेकिन 1000 का नोट सामने रखा है और उसके सामने दर्पण रख दो तो वह 2000 के नोट हो जाएंगे कि नहीं है? तुरंत ही हो जाएंगे, तुरंत ही 2 नोट हो जाएंगे। 1000-1000 के 2 नोट होंगे नहीं, और 2 को 1000 करने के लिए कितना लगेगा? उसके सामने फिर दूसरा शीशा रख दोगे तो वह 2 के 1000 हो जाएंगे। क्योंकि 1 रुपया के सामने दूसरा शीशा रख दोगे तो 2 रुपये हो गए, है ना? उस शीशे में 1 तो हो गया बाहर, दूसरा हो गया उसके अंदर प्रतिबिंब हो गया, तो 2 हो गए, डबल हो गया। और उसके सामने और दूसरा शीशा रख दोगे तो फिर गिन के अनगिनत हो जाएंगे, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें, ये इस तरह प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब। देखो मूल 1 है बिंब, उसका दूसरा प्रतिबिंब इधर के शीशे में पड़ा, और इधर के शीशे का प्रतिबिंब फिर इधर के शीशे में, इधर के शीशे का इधर इधर। देखो बिंब के बिंब, प्रतिबिंब के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कॉपी के कॉपी, कॉपी के कॉपी। ये तो कितने जेरोक्स हैं, सब यहां खड़े हैं, यहां बैठे, कितनी फोटो कॉपी है, और कॉपी कहां, मूल कॉपी कहां है पता ही नहीं है, सब फोटो कॉपी है। ये कैसे हो गया महाराज? तो बोले जितने अंतकरण होते जाएंगे उतने ही फोटो कॉपी होते जाएंगे। मूल कॉपी कहां है तो उसको तो किसी को पता ही नहीं है, वो तो खो गया है। फोटोकॉपी के सामने मूल कॉपी खो गया है, असली के सामने, नकलियों के सामने असली खो जाता है। रहेगा उसको पता तो लगाओ ना पहले, कहां है वो असली। और हम लोग तो उसी फोटोकॉपी में गुजारा कर रहे हैं, नकली में गुजारा कर रहे हैं, प्रतिबिंब में प्रतिछाया में गुजारा कर रहे हैं, और उसी को लेकर इतना अभिनिवेश, इतना घमंड, इतना अभिमान हो रहा है। तो असली कहां है उस किसी को पता नहीं है। इसलिए होता है ना, कोई व्यक्ति मेला देखने के लिए जाता है तो जब तक मेले में नहीं पहुंचता तब तक वो मेले से अलग रहता है और कहता है कि मैं मेला देखने जा रहा हूं। जब वो मेले में पहुंच जाता है तो वह मेला ही बन जाता है। बोलो, वो मेला देखता है कि मेला बनता है? मेला बन गया। परिणाम क्या हुआ कि वो मेला देखने वाला मेला बन गया, और दूसरा कहता है कि मैं भी मेला देखने जाऊं, और जाते जाते जब नजदीक पहुंचता है तो क्या हो जाता है, वो भी मेला हो जाता है, मेला का ही एक अंग बन जाता है। तो सभी मेला देखने के लिए जाते हैं और मेला देखते नहीं, परंतु मेला हो जाते हैं और कह के आते हैं कि मेला देख के आया था। किसको देखा तुमने? किसको देखा? तो मेला देखा, मेला हो गए, होकर आए, देखकर नहीं आए, मेला होकर आ गए। तो यहां यही बात कह रहे हैं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये सारा का सारा विश्व दर्पण में दिखाई देने वाले पदार्थों की तरह है, नगरी की तरह है, वस्तुओं की तरह है। अब जब आप दर्पण में दिखाई देने वाले पदार्थ के बारे में समीक्षा करते हो कि ये पदार्थ दर्पण के अंदर है कि दर्पण के बाहर है, तो आप न दर्पण के अंदर सिद्ध कर पाओगे न दर्पण के बाहर सिद्ध कर पाओगे। पदार्थ का दर्पण के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दर्पण में पदार्थ है ही नहीं और पदार्थ खुद है ही नहीं। पदार्थ खुद नहीं है, दर्पण में दिखाई पड़ने वाला पदार्थ खुद दर्पण में नहीं है, दर्पण के अंदर भी नहीं है, दर्पण के बाहर भी नहीं है। ये अलग है कि उसका जो बिंब है वो स्वतंत्र पदार्थ है, उसके दर्पण से कोई संबंध नहीं है फिर। और दर्पण से जिसका संबंध है वो न दर्पण के अंदर है न दर्पण के बाहर है, केवल प्रतीति मात्र है। ये सारा का सारा विश्व क्या है? उसी तरह है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि वहां दर्पण अधिष्ठान है और उस अधिष्ठान दर्पण में प्रतीति के रूप में पदार्थ दिख रहे हैं, अनिर्वचनीय रूप में पदार्थ दिख रहे हैं, क्योंकि उसको भिन्न भी नहीं मान सकते, अभिन्न भी नहीं मान सकते। यदि अभिन्न मानते हैं तो उसको दर्पण ही है कहना चाहिए, पदार्थ है क्यों कहते हैं? भिन्न मानते हैं तो फिर उससे अलग होना चाहिए, तो अलग भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। इसलिए जहां इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वहां वेदांत दर्शन उसको कहता है अनिर्वचनीय। दर्पण में जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं वह अनिर्वचनीय दृश्य है। तो वहां अधिष्ठान तो दर्पण है, फिर यहां ये सारा विश्व कहां दिख रहा है? तो किसको दर्पण माना जाए? तो निजांतरगतम, निजांतरगतम, तुम जिसको बाहर देख रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है। तुम मुझे बाहर देख रहे हो कि अंदर देख रहे हो? अपने अंदर देख रहे हो। बोलो, तुम्हें क्या लग रहा है? आत्मानंद गिरी मेरे अंदर बैठे हैं, यह लग रहा है कि मेरे से बाहर है, भिन्न है लग रहा है? सारे जगत सभी को यही भ्रांति हो रही है कि पदार्थ सब के सब मेरे से बाहर हैं, यही लग रहा है कि नहीं? सभी वस्तु मेरे से बाहर हैं, ये लगता है। लेकिन हकीकत वास्तविकता यह है कि ये तुमसे बाहर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी सत्ता से भिन्न सत्ता वाले नहीं है, इसीलिए ये तुमसे बाहर नहीं है। आप बताइए, ये जो कागज में सफेदी है, ये कागज में जो सफेदी दिख रही है, वो सफेदी और कागज दोनों एक ही है कि अलग अलग है? आप बता सकते हो? सफेद ये रंग कलर सफेदी और कागज, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? तो आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, ये कह रहे हैं अलग अलग है, वो कह रहे हैं एक ही है। अब बताओ कि ये सफेदी कागज के अंदर है कि कागज के बाहर है? ये सफेदी कहां दिख रही है? तो कागज में दिख रही है। इसका मतलब हो गया कि सफेदी की सत्ता कागज की सत्ता से भिन्न सत्ता नहीं है। लेकिन कागज से सफेदी अलग है, क्योंकि कागज कागज कागज, लेकिन एक ही कागज में कोई सफेद, कहीं ब्लू, कहीं येलो, कहीं ग्रीन, कहीं ब्लैक। कार्बन कैसा होता है? ब्लैक होगा उसका कलर, या ब्लू भी होगा, है ना? लेकिन वो जो कार्बन है वह कागज है, जैसे ये कागज है वैसे वो कागज है। तो उसी कागज में कलर अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वो कलर उस कागज से अभिन्न होकर रहेगा, क्योंकि कागज की सत्ता ही रंग की सत्ता है। दूसरे उदाहरण दें, ये कपड़ा कैसा दिख रहा है आपको? लाल दिख रहा है, गेरुआ दिख रहा है। अब ये गेरु रंग ये कपड़े से अंदर है कि कपड़े के बाहर है? अब ये कपड़े से भिन्न है कि कपड़े से अभिन्न है? कपड़े की सत्ता ही रंग की सत्ता बनकर बैठा हुआ है। रंग के कपड़े के सत्ता से भिन्न सत्ता नहीं है। जबकि रंग भिन्न प्रतीत हो रहा है कपड़े से, भिन्न प्रतीत होता हुआ भी भिन्न सत्ता नहीं है। जैसे दर्पण के अंदर दिखने वाला दृश्य दर्पण से भिन्न प्रतीत होकर दिख रहा है, भिन्न सा दिखने पर भी भिन्न सत्ता वाले नहीं है। दर्पण की सत्ता से भिन्न सत्ता वाले दर्पण में दिखाई पड़ने वाले दृश्य नहीं है। इसी तरह ये सारा का सारा विश्व जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सब आपके अपने अंदर ही है, निज अंतर्गतम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सत्ता से भिन्न सत्ता वाले नहीं है। ये आपकी सत्ता से ही सत्तावान हुए हैं, या आप शब्द से जो हम कह रहे हैं बार बार, ये केवल चेतना सत्ता, आत्मसत्ता। और आत्म शब्द से हम बार कहते हैं आपनोति व्यापनोति इति आत्मा। ये समझ लेना, आपके शरीर की अलग अलग सत्ता हो सकती है, आपकी सत्ता अलग अलग नहीं हो सकती है। आपकी सत्ता और मेरी सत्ता अलग अलग नहीं हो सकती। आपकी शरीर और मेरा शरीर ये अलग अलग होने पर भी आप और मैं अलग अलग नहीं। और इसीलिए आपका शरीर और मेरा शरीर मेरी सत्ता में टिका हुआ है। ध्यान देना, आपका शरीर और मेरा शरीर मेरी सत्ता में टिकी हुई है। इसका मतलब होगा कि मेरा शरीर और आपका शरीर आपकी सत्ता में टिकी हुई है, क्योंकि सत्ता आपकी और मेरी एक ही सत्ता है। शरीर अलग हो सकते हैं, सत्ता एक है। तो यही वेदांत का रहस्य है। विश्वम, ये बड़ा विचित्र है, ये सभी की समझ में नहीं आएगी। ये सभी को आबाल बनिता, सभी को ये अनुभव हो रहा है कि सारे पदार्थ मेरे से बाहर दिख रहे हैं, मेरे से बाहर हैं, बाहर प्रतीत हो रहे हैं, बाहर ही उत्पन्न हो रहे हैं, बाहर ही अस्तित्व में आ रहे हैं, और बाहर ही विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। ये सभी को सर्वमान्य अनुभव हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत आचार्य ये कह रहे हैं, ये सारे के सारे विश्व प्रपंच सभी को अपने से भिन्न नहीं है, सभी के अंदर है। ये सारा जगत सभी के अंदर है और सभी को अंदर ही प्रतीत हो रहा है। लेकिन भ्रांति ये हो रही है कि मुझे मेरे से बाहर है, भ्रांति ये है कि मेरे से बाहर है। दो दृष्टांत दिया है शंकराचार्य जी ने। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, पहले तो इतना निश्चय कर लो, ये सारा का सारा दृश्य जगत प्रपंच केवल दर्पण में दिखे हुए प्रतिबिंब की सराह है, प्रतिबिंब से भिन्न नहीं है। अब ये बिंब रूप है तो फिर इसका माने, प्रतिबिंब रूप है तो फिर इसका बिंब क्या है? ये जिज्ञासा का विषय बनेगा ये सब, तो फिर ये प्रश्न बन सकता है। तब ये अलग अलग अलग अलग जो दिख रहे हैं, इसका क्या बिंब भी अलग अलग है? दृष्टांत में और दृष्टांत में मिल एकता होनी चाहिए, तभी वह दृष्टांत सार्थक होता है। दृष्टांत जो दिया गया है वह दृष्टांत में मिलना चाहिए। जैसे कि दर्पण के अंदर अलग अलग पदार्थ दिखाई पड़ते हों, दर्पण के अंदर, तो वह दर्पण के बाहर यदि कोई पदार्थ अलग अलग हैं तो दर्पण के अंदर भी अलग अलग ही प्रतीत होंगे, और यदि दर्पण के बाहर एक ही है तो दर्पण के अंदर भी एक ही प्रतीत होगा। बिंब एक है तो प्रतिबिंब एक होगा, बिंब अनेक है तो प्रतिबिंब अनेक होंगे। ये सर्वमान्य नियम है। दो आदमी यदि दर्पण के बाहर खड़े हो तो उसी दर्पण के अंदर दो प्रतिबिंब खड़े होंगे, होंगे कि नहीं? दर्पण के अंदर एक, बाहर एक आदमी खड़ा हो तो दर्पण के अंदर भी एक ही खड़ा होगा। दर्पण के बाहर दो कुर्सी रखी हो तो दर्पण के अंदर दो कुर्सी दिखेंगे। दर्पण के बाहर एक कुर्सी रखी हो तो दर्पण के अंदर एक ही कुर्सी दिखेगा। दर्पण के बाहर कुर्सी और टेबल दो रखे हो तो दर्पण के अंदर भी कुर्सी और टेबल अलग अलग दिखेगा। और जब दर्पण के बाहर केवल टेबल रखा हो तो दर्पण के अंदर कुर्सी और टेबल नहीं दिखेगा, केवल टेबल दिखेगा। इसी प्रकार के ये सारा का सारा स्त्री पुरुष बाल वृद्ध पशु पक्षी ये जितने भी जीव बाहर दिख रहे हैं, जब ये दर्पण में दिखने वाले पदार्थ की तरह हैं, प्रतिबिंब की तरह हैं, इनको एक प्रकार से प्रतिबिंब मान लेते हैं तो इनका बिंब कौन होगा और क्या होगा?
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ Shaivam.org. The next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kannappa Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Bhakton, aaj hum sunenge aur ek mahan sant ya Nayanmar ki kahani, jinka naam hai Kannappa. Ye Dakshin Bharat mein kafi prachalit hain. लेकिन पूर्वी या उत्तरी या दक्षिणी भारत या पश्चिमी भारत में कम ही इनका नाम सुना गया है, लेकिन दक्षिण भारत में ये बहुत बड़े संत माने जाते हैं। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है। पांडवों के वनवास के समय अर्जुन जब वन में थे तो उन्होंने भगवान शिव से पांचवता अस्त्र पाने के लिए उनकी पूजा आराधना करनी शुरू कर दी थी। शिव ने किरात रूप में उनको दर्शन दिया और उन्हें उनसे कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे परम भक्त बनकर जन्म लोगे। क्योंकि अर्जुन से उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो अर्जुन ने कहा कि सिर्फ आपका प्रेम ही मुझे चाहिए। तभी शिव ने यह वरदान दिया था कि तुम अगले जन्म में सिर्फ मेरे भक्त बनोगे। इसके कई साल पश्चात अर्जुन का पुनः जन्म हुआ। ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में श्री कालाहस्ती नामक क्षेत्र के करीब पोती पिन्नाडुन नामक एक राज्य रहता था, एक राज्य था। प्राचीन काल में नागन नाम का एक व्याधराज या भीलराज उस राज्य का शासक था। उसकी राजधानी उड़पुर थी। दीर्घ काल तक निसंतान रहने के उपरांत भगवान कार्तिकेय की उपासना के फलस्वरूप नागन को एक पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का शरीर स्वस्थ सुडौल और बलशाली था, इसलिए उसका नाम तिन्नन रखा गया। तिन्नन का पालन पोषण अत्यंत लाड़ प्यार से हुआ था। वह भील प्रजाति के अस्त्र शस्त्र में काफी काबिलियत हासिल कर चुका था। धनुष विद्या में वह विशेष निपुण था। युवक तिन्नन एक दिवस अपने दो साथियों नानन और कादन के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। भील साथियों के साथ उन्होंने बड़े कौशल से कई शिकार किए। इसी बीच एक जंगली सुअर जाल काटकर भाग निकला। उसका पीछा करते हुए तिन्नन बहुत दूर तक दीहर जंगल में पहुंच गए। काफी दौड़ धूप के पश्चात तिन्नन ने उस सुअर को मार डाला। उस स्थल के निकट एक पहाड़ी दिखाई दी। उसने अपने साथियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह श्री कालाहस्ती पर्वत है, जहां कुरुमी देव या फिर भगवान शिव का लिंग है। पहाड़ी पर चढ़ने पर भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के दर्शन हो सकते हैं। तिन्नन और नागन तो पहाड़ी पर चढ़ने लगे और कादन जो कि उनका साथी था सुअर के मांस को भूनने की तैयारी में लग गए। पहाड़ी पर भगवान की मूर्ति को देखते ही तिन्नन गदगद हो उठे। उनके उस लिंग के प्रति उनकी प्रेम उनके मन से निकल पड़ी, नेत्रों से अश्रुधारा भवतरित होकर बहने लगे और वे कह उठे, हे नाथ, तुम इतनी दूर अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें याद लोग की भांति वन्य एकाकी क्यों रहना पड़ रहा है? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। जब मैं तुम्हारा दास यहाँ हूं तो तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकते हो? कालाहस्तीश्वर की मूर्ति पर चढ़े पत्र पुष्पों को देखकर उसने अपने दोस्त नानन से यह जिज्ञासा प्रकट की। नानन ने बताया, यहाँ प्रतिदिन एक पुजारी ब्राह्मण आके पूजा करते हैं। वे जल अभिषेक और पुष्पों से पूजा करते हैं और फिर भगवान को भोग भी लगाते हैं। तिन्नन को पुनः भाव विभोर हो गए और अपने अहम को भूलकर मानो अपने अस्तित्व को ही भूलकर नाथ के चरणों में गिर पड़े। उनके मन में विचार आया कि भगवान को भूख लगी होगी। पहाड़ी से नीचे उतरकर उसने अपने दोस्त जो कि सुअर को भून रहा था उस सुअर के मांस के टुकड़ों को चखा और सबसे कोमल और स्वादिष्ट टुकड़ों को अलग अपने एक हाथों में उठा लिया। फिर भगवान के अभिषेक के लिए वो पास ही में कोकमुगली नामक नदी का जल मुंह में भर लिया। एक हाथ में धनुष, दूसरे में मांस का दाना, मुंह में अभिषेक के जल और भगवान को अर्पित करने के लिए फूल इत्यादि अपने ही सर के बालों में खोस तिन्नन ऊपर पहुंचा। विग्रह पर पहले से चढ़ा पुष्प गुच्छ उसने अपने चप्पल वाले पैर से हटाया, मुंह का जल उंडेल कर कालाहस्तीनाथ का अभिषेक किया, धनुष एक और रखकर बालों में लगे फूल पत्ते उतार कर मूर्ति को सजाया, अंत में मांस को पत्ते पर रखकर हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर लिया और वह प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने इस कोमल मांस को भलीभांति भूना है, इसमें पर्याप्त मधु डाला है, यह बहुत स्वादिष्ट है, इसे कृपया स्वीकार करें। नेत्र खोलने पर देखा कि प्रभु ने मांस नहीं खाया। सोचा, संभव है अभी भूख न हो या फिर मेरे सामने खाने में संकोच करते हैं। यह सोचकर वह मंदिर के बाहर वह थोड़ी दूर में जाकर बाहर धनुष बाण लेकर रक्षा के लिए बैठ गया। पूरी रात पहरा देने के बाद प्रातः फिर वह नीचे गया भगवान के लिए पूजा की सामग्री और मांस इत्यादि जोड़ने के लिए। तिन्नन नीच जाति या भील जाति का रहने वाला था। उसे पूजा की विधियां कुछ पता नहीं थी, इसलिए उसने अपने मन से जो भी आया उसी तरह से भगवान का पूजा करने लगा। अभी वो बहुत दूर जाकर फल फूल मांस जल इत्यादि संग्रह करने में लग गया। इसी बीच उस शिवलिंग को रोज पूजा करने वाले ब्राह्मण जिनका नाम गोचरिया था वह आ गए पूजा करने के लिए। भगवान पर चढ़ाए गए जल और नीचे रखे गए मांस को देखकर उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने उस जगह को पुनः से साफ किया और अपने फूल फल फूल और पुष्प और तब से भगवान की सेवा की, दीप जलाया और फिर अपने दुख को प्रकट किया कि कौन यह भगवान के पास मांस इत्यादि रख के जाता है, और वह चला गया। इसी बीच तिन्नन के पिता वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपने पुत्र को वहां पर काफी दूर से फल फूल मांस इत्यादि लेकर आते हुए देखकर उसने अपने पुत्र से आग्रह किया, हे पुत्र, तुम कहाँ रह गए थे रात भर, चलो घर चलो। लेकिन तिन्नन को अभी अपने स्वयं का भी ज्ञात नहीं था। उसने अपने पिता से हाथ छुड़ा लिया और कहा, यही मेरा घर है, मैं यही रहूंगा अपने नाथ के साथ। इधर तिंदन के पिता नागन को अपने पुत्र के विचित्र विवाह से विस्मित हो गए। उनके लाख पूछने पर भी तिंदन घर नहीं लौटे, वो वहीं रह गए। तिंदन फिर पहाड़ी पर चढ़े और अपने ही तरह से भगवान की सेवा अर्चना करने लगे। उन्होंने फिर से मांस के टुकड़े लगाए, फिर से अपने मुंह से जल को भगवान पर उंडेल दिया और उस जगह पर दूर जाकर भगवान की रक्षा के लिए धनुष बांध लेकर तैयार हो गए। इसी तरह तिंदन रात भर पहरा देते रहा। ब्राह्मण गोचरिया रोज सुबह आते और जब वह आते उसी समय तिंदन अपनी पूजा सामग्री इकट्ठा करने के लिए जंगल में चले जाते थे, इसलिए उन्होंने कभी उस ब्राह्मण का साक्षात्कार नहीं किया। ब्राह्मण जो गोचरिया रोज सुबह आकर भगवान को इस तरह मांस में ढका हुआ देखकर बहुत दुख व्यक्त करते। 5 रात्रि ऐसे ही गुजर गए। 5वीं रात्रि ब्राह्मण गोचरियर को स्वप्न में प्रभु के दर्शन हुए और उन्होंने अपने नए भक्त तिंदन की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे गोचरियर ब्राह्मण, हे मेरे पुत्र, क्या तुम जानते हो तिंदन की महिमा? उतना प्रेम विभोर हुआ है मेरे प्रेम में, उसे न आव पता है न दाव। वो अपने ही विधि से मेरी पूजा अर्चना करता है, लेकिन उसमें वेदों का सार है। उसके द्वारा मुंह में लाया गया जल मेरे लिए गंगा जल सदृश है। जिन पैरों से वह लिंग से पुष्प आदि हटाता है, वे मुझे सुब्रह्मण्य या फिर कार्तिकेय के पांव से भी अधिक कोमल लगते हैं। उसका पूर्ण अस्तित्व ही प्रेममय हो गया है। उसकी चेतना हमारी ही चेतना है। कल तुम उसके भक्तिभाव को प्रत्यक्ष देखना। 6ठे दिन नियमानुसार तिंदन जब पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि ईश्वर की एक आंख से रक्त बह रहा है। वे घबरा गए, हर प्रकार से उपचार करने लगे, फिर भी रक्त रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो जंगल से जड़ी बूटी उठाकर भगवान के आंखों में चढ़ाने लगे, फिर भी रक्त नहीं रुका। फिर तिंदन ने सोचा, अपने सहज भाव से सोचा, मांस को मांस से ही भरना होगा। उन्होंने अपनी एक तीर निकाली और अपनी एक आंख निकालकर उसे शिव की आंख में घंस दिया। रक्त का प्रवाह उसी क्षण रुक गया। तिंदन को खुशी हुई और अपना दर्द भूलकर नाचने गाने लगा। तभी उनकी दृष्टि भगवान के मुख पर पड़ी। अरे ये क्या, अब दूसरी आंख से भी खून बह रहा था। तिंदन ने आंख देखा न ताप, अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीक्ष्ण तीर उठाया। तभी उसके विचार में आया कि दोनों आंखों को निकाल देने पर वह अंधा हो जाएगा और किस स्थान पर अपने निकाले गए आंख को भगवान के रक्त भरे आंख में रखेगा, इसका ज्ञात उसे नहीं होगा। यह विचार कर उन्होंने भगवान की दूसरी आंख के पास अपना पैर टिका दिया और अपनी आंख निकालने लगे। ब्राह्मण गोचरियर जो कि छिपकर यह पूरा दृश्य देख रहे थे, विस्मय विमूढ़ हो गए थे। इस स्थिति को देखकर भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए। तिंदन के अहेतुक प्रबल निष्काम प्रेम को वे झेल नहीं पाए। उन्होंने 3 बार कहा, ठहरो कन्नप्पा, ठहरो तिंदन, तुम्हारी भक्ति से मैं बह गया हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और भक्त के और तिंदन के हाथ को बाई ओर मोड़ा। तिंदन के नेत्र दान से प्रसन्न होकर प्रभु तिंदन के नेत्र जिसे तमिल में कन्न भी कहते हैं, ये प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें कन्नम पर नाम दिया। प्रभु के अनुग्रह से उनके दोनों आंख वापस आ गए, वापस वो सब कुछ देखने लगे। तभी ब्राह्मण गोचरियर ने सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी भर तपस्या और पूजा अर्चना की, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन न हो पाए। तिंदन के भक्ति में 6 दिन में वो इतना प्रेम किए कि हिमालय पर पहुंच गया, उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए और उसके कारण मुझे भी दर्शन हो गए। तो आज से मैं भगवान को तिंदन की भांति ही पूजा करूंगा, तिंदन प्रेम से पूजा करूंगा। तिंदन की भांति मतलब तिंदन के प्रेम विचार वाली भाव से पूजा करूंगा और साथ में तिंदन की भी एक छोटी सी मंदिर बना के वहीं पूजा करूंगा। यह है तिंदन की गाथा।
2: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு Shaivam.org ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் Shaivam.org. ஓம் நம சிவாய.
5: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் Shaivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
6: धर्मार्थ काम मोक्ष रूपी चार पुरुषार्थ सिद्धि के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है, और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ फल देगा नहीं तो फिर जीवन तो बेकार जाएगा भाई. शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में उस किसान के भावना को ध्यान में रखते हुए उपमा के माध्यम से शिव भक्ति है. जैसे बादल देखकर किसान प्रसन्न होता है, और जब बारिश होती है तो किसान और ज्यादा प्रसन्न होता है. क्यों होता है? कि खूब फसल पकेगा, और खूब फसल पकेगा तो फिर बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा. तो इसीलिए भक्त किसान की जगह पर है. भक्त यदि किसान की जगह पर है तो शिव भक्ति, शिव का चरण आकाश की जगह है, शिव भक्ति बादल की जगह पर है, और संतोष वृष्टि पानी की जगह पर है, और भक्त का मन खेत की जगह पर है. और क्योंकि उस मन से परिचालित जीवन फसल की जगह पर है तो जीवन सफल तब होगा, अन्यथा जीवन निष्फल होगा. शिव भक्ति के बिना जीवन निष्फल है, क्योंकि शिवानंद लहरी है. इसलिए शिव भक्ति के बिना जीवन निष्फल है. अब आप वैष्णव हो तो फिर विष्णु भक्ति के बिना जीवन निष्फल है. अब आप यदि शाक्त हो तो देवी भक्ति बिना जीवन निष्फल है. अब यदि आप कार्षणी हो तो कृष्ण भक्ति के बिना जीवन निष्फल है. यदि आप गणपत्य हो तो गणेश भक्ति के बिना जीवन निष्फल है. कुछ न कुछ हो ना, कुछ न कुछ हो. तो ये नहीं समझ लेना कि शिव भक्ति के बिना जीवन बेकार हो जाएगा. शिव का मतलब परमात्मा, बस. इसलिए किसी नाम और रूप पर दुराग्रह नहीं है. यहां प्रसंग शिव भक्ति से जुड़ा हुआ है, शिवानंद लहरी है, इसलिए शंकराचार्य जी ने शिव भक्ति कह दिया है. और शायद शंकराचार्य कृष्णानंद लहरी की रचना करते हैं, वही तो कह रहे ना, कृष्णानंद लहरी की रचना करते तो फिर कृष्ण भक्ति के बिना जीवन बेकार है कह देते. तो इसमें मेरे तरफ से कोई दुराग्रह नहीं है कि आप कृष्ण भक्ति छोड़कर शिव भक्ति ही करो. हाँ, तो मैं तो ये कहता हूं, न शिव भक्ति करो न कृष्ण भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो. मैं हमेशा यही कहता हूं, बस. और आगे क्या कहते हैं देखो. बुद्धि स्थिरा भवितुमीश्वर पाद पद्मा, सक्ता बधुर विरहिणी व सदा स्मरंती, सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि, सम्मोहिते व शिव मंत्र जपे नविन्ते. अब ये भी रूप का अलंकार है, उपमा है इसमें भी. रूपक यह है कि कोई युवा शादी कर लेता है, किसी युवती से शादी कर लेता है तो उसको विधिवत शास्त्र विधि से, वैदिक विधि से, शास्त्र विधि से अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है। तब वह नववधु उसको अपना सर्वस्व मानती है। वर अपने वधु को, अपने पत्नी को सर्वस्व भले ही न माने, समझ गए नहीं, लड़का अपनी पत्नी को सर्वस्व भले ही न माने लेकिन पत्नी अपने पति को सर्वस्व माने। थोड़ा अन्याय तो है वो थोड़ा अन्याय तो है, पत्नी अपने पति को सर्वस्व मानती है तो फिर पति अपनी पत्नी को सर्वस्व क्यों नहीं मानता है? तो ये अन्याय तो है, सामाजिक साम्यता नहीं है, वैषम्यता तो है। लेकिन यह शंकराचार्य जी उपमा दे रहे हैं उसी रूप में, बुद्धि स्थिरा भवितुमीश्वर पाद पद्म शक्ता बदूर विरहिणीव। अब वो शादी कर लिए और शादी करते ही वह वर विदेश चला गया, घर में उस नववधु को छोड़कर विदेश चला गया। अब नववधु अपने पति को सर्वस्व मानती है लेकिन मानकर करे क्या, घर में तो है ही नहीं। अब रात दिन उसी का ही स्मरण करती है, चिंतन करती है। सक्ता, अपने पति के प्रति उसकी आसक्ति रहती है, सक्ता, इसलिए वो विरहिणी इव। दृष्टांत दिया, उपमा क्या करती है, बोले सदा स्मरंती। तो वहां तो नववधु विरहिणी है, अब नववधु अपने पति को सदा स्मरंती। और विरह योग से युक्त होकर सदा स्मरंती, तो यहां तुम्हें कौन स्मरण करता है, तुम्हारा पति कौन है? तो बुद्धि, ये जो बुद्धि है यह नववधु है। उसका पति कौन है? तो परमात्मा। तो बुद्धि ने परमात्मा को वरण किया। किसने? बुद्धि ने परमात्मा को वरण किया है। तब परमात्मा में स्थिर होती है। शादी के बाद कन्या विकल्प नहीं खोजती है, नववधु विकल्प नहीं खोजती है। जब तक वरण नहीं होता, जब तक शादी नहीं होती है, तो हजार विकल्प खोजती है। जो भी लड़का हैंडसम देखेगी कल्पना कर ही लेगी, वो समझेगी नहीं। जो भी लड़का जरा सुंदर देखेगी, खाता पीता देखेगी, अपडेट देखेगी, पढ़ा लिखा देखेगी, शिष्टता शालीनता आदि जो देखेगी, जो भी युवा उसके सामने खड़ा होगा तुरंत कल्पना कर बैठती है इसने शादी किया होगा कि ना किया हो, क्या पता कहां का होगा, कैसा होगा, है ये मेरे से शादी कर लेता तो अच्छा है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है बात करने की, कल्पना के जगत में तो घूम जाती है वो। एक प्रकार से वरण तो कर ही लेगी, वह पोह में तो पड़ जाएगी वो चला जाएगा, फिर दूसरा कोई और दूसरा लड़का आएगा तो फिर उसके बारे में ही सोचने लग जाएगी। ये स्वाभाविक ही है, लेकिन किसी एक लड़के के साथ जब उसका स्वयंवर हो जाता है विधिवत, तब वह जिसका वरण हो, जिसने वरण कर लिया या जिसको पति मान लिया, वो भले ही विदेश चला गया हो, दूसरा लड़के को देखकर वो उसका विकल्प नहीं खोज सकती हो। वो विदेश चला गया, इसे शादी कर लेते तो अच्छा था, विकल्प नहीं खोज सकती है। वह उसके विरह में या उसके आने की प्रतीक्षा में वर्षों रह सकती है, उसका विकल्प नहीं खोज सकती है। आजकल की बात छोड़ दो, आजकल की बात छोड़ दो, फिर भी आजकल भी लोक मर्यादा आदि के चलते इतनी जल्दी तो नहीं करते हैं। तो उसी को कहते हैं बुद्धि स्थिरा। परमात्मा के साथ बुद्धि का एक बार संबंध हो गया, जुड़ गया, तो बुद्धि ने अपने आप को परमात्मा की नववधु स्वीकार कर ली, तो वह बुद्धि परमात्मा के अलावा दूसरे का विकल्प नहीं खोज सकती है, इसलिए वही स्थिर हो गई है। ईश्वर पाद पद्मम, उस परमात्मा के चरण में बुद्धि स्थिर हो गई। शक्तः इव वधु विरहिणी, वधु इव शक्तः, तो क्या करती है वो, सदा स्मरंती। वधु हमेशा अपने पति का स्मरण करती है, इसी तरह बुद्धि अपने परमात्मा की स्मरण करती है। सद्भावना स्मरण, अनेक सद्गुणों का स्मरण करती है। देख, जब तक झगड़ा नहीं होता है तब तक असद गुणों का स्मरण नहीं कर सकती है, समझे कि नहीं। जब तक मारपीट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, नववधु अपने नवपति का, पति तो नव ही होगा, नवपति के दुर्गुणों का स्मरण नहीं कर सकती है। सद्भावना, अच्छे अच्छे गुणों का स्मरण करती है, मेरे पति कितने अच्छे हैं, अरे तुम कितने अच्छे हो, तुमने कितना के क्या क्या कहा था, तुम चले गए हैं, मैं तुम्हें फलाने जगह घूमने ले जाऊंगा कहा था और तुम छोड़कर अमेरिका चले गए, कब आओगे मुझे घुमाने, कब ले जाओगे हैं? वो ये स्मरण करेगी, मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तुझे डंडे से पीटूंगा, ये कहा था कब आओगे डंडे से पीटोगे, ऐसा स्मरण करेगी वो, पति के दुर्गुणों का स्मरण करेगी वो, तुमने कहा था दूसरे साल शादी के एक वर्ष में सालगिरह में तुम्हारे लिए एक ज्वेलरी किन खरीद दूंगा, तो कब आ रहे हो सालगिरह, एनिवर्सरी आने वाली है, तो मेरे आभूषण कान के झुमके कब खरीदोगे, गले के हार कब खरीदोगे, सद्गुणों का ही स्मरण करती है। इसी प्रकार से बुद्धि परमात्मा के सद्गुणों का स्मरण करती है। ये बुद्धि के साथ नववधु का उपमा। सक्ता वधुर विरहिणी सदा स्मरंती, क्या क्या, सद्भावना स्मरण, दर्शन, बाहर यदि कोई आया शायद मेरे ही पति आ गया, उसको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है उसको, आ गया मेरा पति। और यदि नहीं भी आया हो तो सुबह सुबह उठकर उसके फोटो दर्शन करेगी, कमरे में रखेगी उसको फोटो, सिराने में रखेगी, दर्शन करेगी। सद्भावना स्मरण दर्शन, और अपने साथी सहेलियों से जब वार्ता करना होगा तो कीर्तन, अपने पति के प्रशंसा करेगी। निंदा करेगी? अपनी मां से पति की निंदा करेगी? बोलो। अपनी सहेलियों से पति की निंदा करेगी? कीर्तन, हां उसके सद्गुणों की बखान करेगी। सम्मोहित इव, हिप्नोटाइज, मानो कि पति ने उसको सम्मोहित किया और वो ऐसे सम्मोहित हो गई है कि उसके नकारात्मक किसी भी पक्ष को वह सोच ही नहीं सकती है, सोच ही नहीं सकती है। शिव मंत्र जपे नविन्ते, नित्य निरंतर जैसे अपने पति का ही नाम स्मरण जप करती रहती है नववधू, उसी तरह ये मेरी बुद्धि सतत शिव का स्मरण नाम मंत्र जप करती रहती है। विनते, विशेष रूप में उसको ही स्वीकार करती है। एक कवि हुए हैं कश्मीर के, जगद्धर भट्ट, उन्होंने स्तुति कुसुमांजलि में शिव भक्ति, कश्मीर शैव रहे ना, वो कश्मीर के जितने भी ब्राह्मण प्राय शिव शैव ही होते हैं, तो उनका उदाहरण दिया बड़ा सुंदर। आदो भक्ति वयस्यस्याः परिचरण नीतोन्मुखत्वम शनैः, लोक व्यवहार को उपमा देकर सबसे पहले कोई लड़की, किसी लड़के प्रति उसका मन टिक जाता है तो पहले वो कहां रहता है, क्या करता है, उसकी पूरी जानकारी हासिल करती है। फिर उसके बाद किसी अपने खास सहेली के माध्यम से उस तक पहुंचने का रास्ता पूछती है, कैसे उसके पास पहुंचा जाए, और उससे पहुंचने के साधन माध्यम आदि को पूछने के बाद वह धीरे से किसी को चिट्ठी लिखकर भेजती है। अब तुम भागवत का सुभद्रा को स्मरण कर लो भाई, रुक्मिणी को स्मरण कर लो, रुक्मिणी का स्मरण करो, है ना? पहले तो कृष्ण के बारे में उसने खूब जानकारी ली, जब पता चला द्वारिकाधीश हैं, वाह राजा है, द्वारिकाधीश हैं, सर्वगुण संपन्न है, अच्छा वाह, तो वहां कैसे पहुंचे? फिर अंत में किसी को चिट्ठी लिखकर भेज दिया। जब चिट्ठी आदान प्रदान हुआ, आईफोन में चैटिंग शुरू हुई, आदान प्रदान हुआ तो लास्ट में उसने डिसीजन कर ली और सब कुछ उलिया बता दी, सहेली से उसको भेज दिया, इतनी बजे इस टाइम में इस दिन में फलाने जगह मैं आऊंगी, तुम आना, सब टक मिल गया और कृष्ण को सब कुछ जानकारी हो गई। अच्छा भाई, वो भी तो क्या कम थे, ठीक समय में वो भी पहुंच गई, वो भी पहुंच गए, उठा के ले चले बस, और क्या, रुक्मिणी हरण हो गया काम। ये द्वितीय, ये भक्ति भी ऐसे ऐसे ही करती है, पहले तो परमात्मा के बारे में साधुओं से, संतों से, गुरु से सुनती है खूब। धूती कृत्य नव नवद्य वचसम, वाणी को वह धूती बनाती है और पुकारने वाणी को भेजती है। वचसम देवीम दूतिम कृत्य तम उपगंतुम इच्छती, पतिम प्रोद्दाम कामहमति, तो मैं तुम्हें स्वीकार करना चाहती हूं। तो भगवान को भी फिर ये इच्छा

में उपमित किया कि तुम्हारे लिए तड़प रही है। अब इस 78वें श्लोक के द्वारा ये कह रहे हैं कि इसका तुम उद्धार करो, स्वीकार करो भाई, किसका बुद्धि को स्वीकार करो। कैसी है तुम्हारी बुद्धि, हम स्वीकार करने योग्य है कि नहीं? बोले हां वो तो बहुत योग्य है। सदुपचार विधि स्वनुबोधितम है, सद उपचार अच्छे सद विद्या से सदाचार से सुशिक्षित है। सदाचार सदुपचार माने सदाचार से सुशिक्षित है। विधिषु अनुबोधिताम सविनयम, बड़ा विनम्र है महाराज, तुम जो कहोगी वो मानेगी, हठिली नहीं है, ये हट करना तो जानती ही नहीं है महाराज, बड़ा सुसंस्कारी कन्या है। सुहृदम, इसका हृदय बड़ा सरल है। समुपाश्रिताम, मम बुद्धि मीमाम समुद्धर, प्रभु हे प्रभु मेरी इस बुद्धि कन्या का आप उद्धार करो। मैंने इस बुद्धि कन्या को सुसंस्कृत बनाया है। सुपद सदुपचार विधि स्वनुबोधिताम सविनयाम सुहृदम समुपाश्रिताम इमाम मम बुद्धि, इमाम मम बुद्धिम समुद्धर, प्रभो मेरी बुद्धि का आप उद्धार करो, स्वीकार करो। वरगुणेन, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं और इन्हीं गुणों के चलते आप इसका उद्धार करो। और आप वरगुण हैं, आप में वो योग्यता पूरी की पूरी योग्यता है कि इसको बुद्धि रूपी कन्या को आप वधू बना सकते हो। वर होने की योग्यता आप में पूरा है और वधू होने की योग्यता मेरी बुद्धि में पूरी है और आपके ही योग्य है, और के योग्य नहीं है। यदि और के योग्य और के कहीं पीछे लगेगी तो दुख मिलेगा, उसको कष्ट होगा, क्योंकि मैंने इसको अच्छे संस्कार दिया है तो ये दूसरी जगह जाएगी तो दुख पाएगी, समझे कि नहीं? मैंने इसको शुरू से कहा कि मीठा मटन नहीं खाना, इसने मटन खाना छोड़ दिया है? तो अब यदि आपके पास ना आकर किसी और मटन खाने के यहां चली गई तो दुख मिलेगा, इसको मिलेगा कि नहीं? दुख भोगेगा। प्रभो बर गुण ये नव ओढ़ माने अभी अभी शादी की हुई, ओढ़ा माने स्वीकार किए गए, नव वधु नव विवाहिता स्त्री को नवोढ़ वधु इव, जैसे अच्छे कन्या का कोई वरण करता है लड़का तो उसको तुरंत मैके से अपने घर ले जाना चाहता है, इसी तरह मेरी बुद्धि कन्या कमजोर नहीं है, सुशिक्षित है, सब है। जैसे नया वधु को वर आगे करके लेके जाता है, स्वीकार करता है, ले जाता है अपने घर, उसी तरह इस मेरी बुद्धि कन्या को आप सहस्र स्वीकार करो, परित्याग न करो।
और आगे

चौथे श्लोक में जो विचार किया गया था कि कई तर्कवादी ऐसे हैं, श्री पुष्पदंत जी कहते हैं कि मैं उनको मंद बुद्धि कहता हूं, प्रलपन करने वाले कहता हूं, वादी, आपके तत्व को क्यों वादी क्यों प्रलपन करते हैं? क्योंकि आपके तत्व को जानते नहीं है। परमात्मा को न जानना कोई गलत बात नहीं है, कोई नहीं जानता है, पर न जानने का प्रयत्न न करना, जानने का प्रयत्न न करना, वो हमारा गुनाह हो जाता है। तो एक तो आपको जानने की चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई चेष्टा कर रहा है परमात्मा को जानने की, और उस अवस्था में कुछ परमात्मा के बारे में अज्ञान या गलत भी बता देते हैं तो वो क्षम्य है। क्यों? क्योंकि वो अभी जान रहा है, उसे पूरा पता नहीं है। पर ये क्षम्य क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जानने का कोई भी प्रयत्न मैं इन वादियों में, यानी प्रलोभन करने वालों में, तर्क वालों, तर्क यानी क्या, देखिए कि परमात्मा का जो अस्तित्व है, परमात्मा है, उसे नहीं मानते। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि परमात्मा है, अस्थि, बस इतना ही मानना है। परमात्मा के होने में, अस्तित्व में श्रद्धा या विश्वास, बस। आगे का काम सब वेद है, शास्त्र है, ईश्वर है, गुरु है, ये तीन संभाल लेते हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ, और इसी को आत्मकृपा कहते हैं। चार प्रकार की कृपा जब कहते हैं, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, आत्मकृपा अंतिम नहीं आती है, आत्मकृपा पहले आती है कि पहले अपने आत्मा पर, खुद पर कृपा कीजिए। कैसे? परमात्मा को मानने वाली कृपा। कोई भी, जो भी परमात्मा, 33 करोड़ देवता में से जो भी परमात्मा के लिए आपको अगर ऐसा होगा, अस्थि, कोई शक्ति है, कोई परम तत्व है, जगत है तो कोई बनाने वाला है, तो अपना काम बन जाएगा। पर जो नास्तिक है, जो आपके अस्तित्व को नहीं मानते, वो मन बुद्धि वाले तर्क तो करते हैं, पर तर्क की भी सीमा के आगे जाते हैं। देखिए, ज्ञान में जब प्रवृत्त होते हैं तो ज्ञान की हमारी सीमा कहाँ है? कहाँ जाके हम रुकते हैं? एक भी प्रवचन आपने यहाँ सुना ना, या परमात्मा के मंदिर में गए, तो वो आपको कहाँ तक ले जाएगा? आपको पता है उसकी अवधि? आपके खुद के स्वभाव तक, एक दिन, या कोई भी जन्म में, ये जन्म या कोई भी जन्म में, वो कहाँ जाके रुकेगा? ये जो धक्का लग गया है, एक बार भी मंदिर में जाके मूर्ति को प्रणाम किया, तो वो धक्का लगा हुआ आपको अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह ब्रह्म हूं, वहां तक पहुंचा देगा। पर जो नास्तिकवादी परमात्मा के बारे में तर्क करने का शुरू करेगा, तो धक्का तो उसको भी लगेगा। क्योंकि देखिए, सत्ता और स्फूर्ति तो आस्तिक और नास्तिक दोनों में वो परमात्मा की है, तो वो शक्ति इतनी है, प्रबल है। तो ये प्रबल शक्ति जब परमात्मा को अस्थि कहती है कि हाँ परमात्मा है, तो वो अहम ब्रह्मास्मि तक धक्का लगा के ले जाती है साधक को। पर कोई अज्ञानी में, नास्तिक में ये शक्ति आ गई और वो कहता है परमात्मा नहीं है, तो वो परमात्मा की शक्ति कहाँ तक उसे ले जाती है? तर्क तक नहीं, कुतर्क तक ले जाती है। और वो कुतर्क कहाँ है? वो अंतिम अवधि, नास्तिक की अंतिम अवधि कहाँ है, उसकी थोड़ी बात बताई गई है। तो कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके बारे में कुतर्क करने वाले हैं, तो हम सब कहेंगे कि भाई, हम तो परमात्मा के बारे में कभी तर्क भी नहीं करते, कुतर्क की तो बात ही नहीं है, तो हमें श्री पुष्पदंत जी ऐसा क्यों बता रहे है? तो कहे कि भाई, ऐसा कुतर्क कभी कोई कर्म फल के हिसाब से, या देखिए, ऐसे व्यक्तियों के बीच आ गए, ऐसी परिस्थितियों के बीच आ गए कि वहां कुतर्क करने वाले के साथ हमें रहना ही पड़ा। तो इस प्रकार की परिस्थितियां में, इस प्रकार की जो स्थिति आ जाती है, अगर रहना ही पड़ा, तो तब आपके मन को आपको कैसे संभालना है? तो कुतर्क जान लीजिए, अज्ञान को भी जान लीजिए क्या है, क्योंकि उससे बच सके। तो कोई अगर ऐसा कुतर्क करने वाला हो, तो समझ लीजिए कि ये कुतर्क करने वाला है, तो हम उससे दूर रहेंगे, या हम उसकी बातों में नहीं आएंगे। दूसरा श्री पुष्पदंत जी बता रहे हैं कि कभी साधक को ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कुतर्क करते हैं? तो श्लोक में देखेंगे, किमी ह किम काय ह, जो चौथे श्लोक की बात थी कि परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण, ये जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण एक ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, वो महाशिव है जिससे ये सब उत्पन्न हुआ है।
तो बोलेंगे कि अगर परमात्मा ही सृष्टि का कर्ता है ऐसा आप कह रहे हैं तो वो सृष्टा की सृष्टि की रचना में चेष्टा कौन सी है भाई, किस प्रकार कौन सी चेष्टा से परमात्मा ने यह जगत उत्पन्न किया। पहले तो परमात्मा की चेष्टा के बारे में आपने कुतर्क किया, किमी ह किम काय, कौन से शरीर से कौन सा शरीर, जब परमात्मा ने जगत की उत्पत्ति की तो उन्होंने कौन सा ऐसा शरीर, क्योंकि जगत इतना बड़ा है और जो कर्ता होता है वो कारण से तो बड़ा ही होगा ना, जो कार्य जो है वो कारण से कार्य तो सूक्ष्म ही होगा क्योंकि कारण बड़ा होने से ही वो कार्य को जन्म देने लगेगा। तो ये जो सृष्टि इतनी बड़ी लगती है तो उससे बड़ी काया क्या परमात्मा ने उत्पन्न की थी, किम काया हा? कौन सा उपाय यानी उपादान कारण किस प्रकार परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना की। अच्छा, रचना करने के लिए आधार चाहिए, कोई घाट देना है, कोई सुनार कोई घाट देता है कुछ अलंकार को सोने को, तो उसके पास यहाँ एक टेबल रहता है या वो एरंड रहता है निहाई, और निहाई के ऊपर सब घाट देते हैं। तो परमात्मा ने ये सचराचर सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए आधार किसका लिया और उसकी सामग्री कौन सी है, मटेरियल, और जो सामग्री से उन्होंने ये त्रिभुवन की रचना की। कहते हैं अचिंत्य सामर्थ्य वाले अतर्क्य ही त्वयी अनवसर दुस्तो हतदियह, हतदियह यानी उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि इतने अचिंत्य सामर्थ्य वाले आपके विषय में भी बिना अवसर। देखिए, हम कभी किसी को मिलते हैं या बैठे होते हैं ऐसे ही, तो बिना अवसर कोई भी मतलब बिना की बातें हम करने लगते हैं, कोई सार नहीं होता है, यानी ये सब बातें हैं वो बिना सार की है। यहाँ कोई प्रकाश तो बात में से प्रकाश तो उत्पन्न नहीं होता है, घर्षण ही केवल उत्पन्न होता है, ये कोई सार नहीं है ये बात में। देखिए, ये लक्षण होना साधक का बहुत जरूरी है। साधक को जब बराबर ध्यान से सुनना, साधक को जब ऐसी बातें होने लगे ना तो कंटाला आना ही चाहिए, आपको अंदर से जी मचलना ही चाहिए कि अब कब छुटू, अब कब ये बात बदलू, ऐसा आपको होना ही चाहिए भीतर से, तो ही आप छूट सकेंगे। ये साधक का लक्षण है, जब भी कुछ कुतर्क होता है परमात्मा के बारे में तब ये पुष्पदंत जी हैरान हो गए, हम कहते हैं ना कंटाल गए, ऐसे वो हो जाते हैं। और ये कुतर्क कई मंदबुद्धि मनुष्यों ने ये जगत को ठगने के लिए, ये जो कुतर्क है वो मंद बुद्धि मनुष्यों को मुखरयति वाचाल बनाते हैं। वाणी का जो मौन जो है, अगर वेदांत के हम साधक हैं तो सबसे पहले वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये जो उपाधि है उसमें सबसे पहला जो साधन है वो क्या करना है, तो मौन का साधन है। देखिए, मौन तय करेंगे कि मौन रहना है तो हम कम बोलेंगे, मौन रहना है ऐसा कोई ने निश्चय किया तो वो आदमी मौन नहीं रह सकता और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। पर हम मौन रहना क्यों कहते हैं कि आपको अगर हम मौन ही रहना कहे तो 10 घंटे में से आप 5 घंटे बोलेंगे, क्योंकि मौन है तो घड़ी घड़ी बोलने से मौन याद आता रहेगा, इसलिए मौन कहा है। तो ये वाणी का, और हमेशा सोचिए कि एक की एक बात में 2 या 3 या 4 बार तो नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो भीतर बहुत समय भीतर सोचना पड़ता है और करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है और करनी पड़ती है। तो हमेशा अपनी जो वाणी जो है उसके ऊपर एक फिल्टर लगा दीजिए और मन को एक सजेशन दे दीजिए कि एक बार मैंने बात की रजिस्टर नहीं हुई तो दूसरी बार की, पर तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार एक ही एक बात, देखिए ये आदत हो गई है, इसमें हमारा कुछ चलता भी नहीं है, वी आर नॉट एट फॉल्ट, ये आदत बनी गई है। अब वही आदत को आप देखिए और वापस जाइए आपके स्वभाव में, एक बार कहा किसी ने नहीं सुना, दूसरी बार बातें खत्म हो गई, फिर भी जो काम नहीं हुआ तो फॉरगेट इट,
क्योंकि ये परम तत्व की बात जान लेने से आपको ये निर्णय में तो आप आ ही जाएंगे कि काम हुआ या नहीं हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो परमात्मा में ही सब कुछ अनुस्यूत है। तो साधक को एक और बात जाननी जरूरी है कि कोई भी बात के लिए निवृत्ति, नैष्कर्म्य सिद्धि में कहा है सुरेश्वराचार्य ने, निवृत्तिम अपि मृदनाथ सम्यक बोध प्रवृत्तिवत। क्या है, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो परम तत्व को प्राप्त करने के लिए चल पड़े हैं, उनके लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक ही है। एक ही है यानी प्रवृत्ति करनी है तो करनी है, पर करनी ही है ऐसा नहीं है, और निवृत्ति, निवृत्त होना है तो होना है पर होना ही है ऐसा नहीं है। बोलने का मन हुआ बोलेंगे, चलने का मन हुआ चलेंगे, पर चलते चलते बीच रास्ते में बैठने का भी मन हुआ तो बैठ भी जाएंगे, उस फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, चलते हैं तो उठा नहीं सकते और उठ के चले हैं तो आप बिठा नहीं सकते। हाँ, तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति में ज्ञानी जन ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ है वो परमात्मा में ही हो रहा है, वो समझ गए हैं। तो ये जरा कुतर्क को हम देख ले कि किमी है किम काय है। भाई हमें जवाब आप दे ही दीजिए कि परमात्मा में से उत्पन्न हुआ है तो कैसे हुआ है। हमें कोई ऐसी चीज उत्पन्न हुई दिखाइए जो वो चीज में से ही उत्पन्न होती है और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम जगत को क्या कहते हैं, परमात्मा का ही विवर्त कहते हैं, वो एकदम अंतिम बात है। पर जो भी कुछ जगत में है, सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसा कहते हैं, सब कुछ परमात्मा है ऐसा कहते हैं, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उत्पत्ति परमात्मा में से बताइए और उत्पत्ति होने के बाद भी ऐसा का ऐसा ही रहे। मोर है, मोर का अंडा है, उसमें से मोर का बच्चा निकलेगा तो दो हो गए, उत्पत्ति मोर में से ही हुई है पर क्या है, दो है। जो कुम्हार है घड़ा बनाता है मिट्टी का, तो वो बनाता है तब कुम्हार और घड़ा दो हो गए, बनाने वाला अलग, निमित्त और जो उपादान कारण जो है मिट्टी और जो घड़ा बन गया कार्य वो उससे अलग है। तो क्या ऐसे परमात्मा है और कार्य अलग है? तो बोले कार्य और कारण यहां ऐसी उत्पत्ति है जो कार्य और कारण से अलग नहीं है। तो भी आप कैसे बता सकते हैं? तो मुंडक उपनिषद बहुत सुंदर दृष्टांत देखे ये बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब हमारी साधना शुरू होती है तब एतस्माद् आत्मनः आकाश सम्भूतः, वो आत्मा में से परमात्मा में से, भाई परमात्मा ने कामना की।

ಇದಗಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ ತತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ. ಭೈ ವೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಕಾಮಯ ಥ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜೋ ಕಾಮನಾ ಕರ್ ಹಿ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಉಸ್ನೆ ವೋ ಕಾಮನಾ ಕಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಿ ಯಾನೆ ಕಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಿಯಾ. ಪರ್ ಯೇ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕಾ ಜೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೈ ವೋ ಕೈಸಾ ಹೈ, ಜೈಸೆ ಹಮ ರಾತ್ ಕೋ ಸೋ ಜಾತೆ ಹೈ ವರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೇ. ಆಪ್ ರಾತ್ ಕೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ಕೆ ನಹಿ ಸೋಚ್ತೆ ಕಿ ಆಜ್ ಯೇ ಸ್ವಪ್ನ, ಆಜ್ ಯಹಾ ಜಾಯೆಂಗೆ, ಆಜ್ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಇಸೆ ಮಿಲೆಂಗೆ. ನಹಿ, ವೋ ಕೈಸಾ ಹೈ ಪರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಸಾ ಹೈ, ವಹಿ ಸಮಯ ಆ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಘಟ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಸ್ವಪ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏಕ್ ಹಿ ಐಸಿ ಹೈ ಜೋ ಘಟನಾ ಘಟನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಪತಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಜಾಗ್ರತ ಮೇ ಆಪ್ ಕುಛ್ ಭಿ ಬೋಲ್ನಾ ಭಿ ಚಾಹೆ ತೋ ಭೀತರ್ ತೋ ಅಂದರ್ ಹೋ ಹಿ ಜಾತಾ ಹೈ, ವಿಚಾರ ತೋ ಆ ಹಿ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ವಿಷಯ ಪೇ ಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಮ್ ಬೋಲೆಂಗೆ ಔರ್ ಫಿರ್ ಹಮ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಕರ್ಮ ಹೋ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಸುಬೆ ಉಠಕೆ ಹಮ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಆಜ್ ಮೇನೆ ಯೇ ದೇಖಾ. ತೋ ಯೇ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಲೇಕೆ ಪೂರಾ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾ ವೈತ್ಯತ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಜೊ ಹೈ ಯೇ ಸ್ವಪ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಉದಾಹರಣ ಲೇಕೆ ಹಮೇ ಸಮಝಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಭೈ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೆ ಭಿ ಕುಛ್ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಪೂರಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಮ ರೋಜ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಯೇ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಖ್ಯಾಲ್ ಮೇ ರಖಿಯೆ. ಪರ್ ಶುರುವಾತ್ ಕೆ ಸಾಧಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಿ ಬಾತ್ ಆತಿ ಹೈ, ಪರಮಾತ್ಮಾ ನೆ ಸರ್ಜನ್ ಕಿಯಾ, ಸರ್ಜನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಅಂದರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಹೋ ಗಯೆ. ತೋ ಭೈ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೈಸೆ ಹೋ ಗಯೆ? ಯೇ ಫ್ಲವರ್ ಹೈ, ಯೇ ಪುಷ್ಪ ಹೈ, ಯೇ ಪುಷ್ಪ ಕೆ ಅಂದ ಭೀತರ್ ಮುಜೆ ಅಭಿ ಭಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಇಸಿ ಕ್ಷಣ ತೋ ಮುಜೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ? ಮುಜೆ ಯೇ ಶರೀರ ಛೋಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ? ಕೋಯ್ ಐಸಿ ವಿದ್ಯಾ ಮುಜೆ ಹಠ ಯೋಗ ಸಿಖನೆ ಚಲಾ ಜಾನಾ ಪಡೆಗಾ ಕೋಯ್ ಗುಫಾ ಮೇ, ಕೋಯ್ ಗುರು ಕೆ ಪಾಸ್ ಕಿ ಭೈ ಹಮೇ ಯೇ ಸಿಖಾ ದೀಜಿಯೆ ಯೇ ವಿದ್ಯಾ ಕಿ ಮೇ ಅಂದರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಹೋ ಜಾ. ತೋ ವೇದಾಂತಿ ಗುರು ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಐಸಿ ಮೆಹನತ್ ಮತ್ ಕರೋ, ಮೇ ಅಭಿ ಆಪ್ಕೋ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರ್ವಾ ದೇತಾ ಹೂಂ. ಕೈಸೆ? ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಇತ್ನಾ ಹಿ ಮಾನ್ನಾ ಹೈ ಕಿ ಮೇ ಯೇ ಫ್ಲವರ್ ಹೂಂ, ಬಸ್ ಬಾತ್ ಖತಮ್ ಹೋ ಗಯಿ. ಯೇ ಮೇರಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಹೋ ಗಯಾ ಪುಷ್ಪ ಮೇ. ಅಭಿ ಪುಷ್ಪ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜೋ ಹೋಗಾ, ಯೇ ಪುಷ್ಪ ಕಿಸಿ ಕೆ ಗಲೆ ಮೇ ಪಡಾ ತೋ ಮೇ ಮಾನೂಂಗಿ ಅರೆ ಭೈ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಗಲೆ ಮೇ ಪಡ್ ಗಯಿ ಹೂಂ, ಅಬ್ ಮೇ ಗಿರ್ನೆ ವಾಲಿ ಹೂಂ, ಓ ಮೇ ತೋ ಮುರ್ಝಾನೆ ವಾಲಿ ಹೂಂ, ಓ ಮೇ ಮೇರಿ ಸುಗಂಧ ತೋ ಐಸಿ ಹೈ ಮುಜೆ ಕಿಸಿ ನೆ ಪಾನಿ ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಮೇ ಡಾಲ್ ದಿಯಾ. ಪುಷ್ಪ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜೋ ಜೋ ಹೋಗಾ ವೋ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಹೋನೆ ಲಗೇಗಾ. ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಯಾನೆ ಯೇ ಮೇ ಹೂಂ ಬಸ್. ಐಸೆ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ನೆ ಯೇ ಶರೀರ ಮನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಾ ಸಂಘಾತ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಪ್ರವೇಶ್ ಕಿಯಾ. ಪರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕಿಯಾ ಐಸೆ ಕೈಸೆ ಕಿಯಾ ಕಿ ಯೇ ಮೇ ಹೂಂ, ಮೇ ಕಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಹೋ ಗಯಾ ಯಹಾಂ ಸೆ. ಯೇ ಜೋ ಅಜ್ಞಾನ್ ಜೋ ಹೈ ಯೇ ಯಹಾಂ ಸೆ ಜುಡ್ ಗಯಾ. ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕಿ ಮಾಯಾ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ? ಯೇ ಸಂಘಾತ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜಬ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಮಿಲ್ ಗಯಿ ತೋ ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿ ಜೀವ ಯೇ ಏಕ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ಮೈ ಕಿ ಉಪಾಧಿ ಕ್ಯಾ ಲಗ್ ಗಯಿ? ಬಡೆ ಮೈ ಕಿ ಉಪಾಧಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಬಡೆ ಅಹಂ ಕಿ ಉಪಾಧಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಮಾಯಾ. ವಹಿ ಮಾಯಾ ಸೈಕಡೋ ಟುಕಡೋ ಮೇ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಏಕ್ ಮಿರರ್ ಹೈ, ಏಕ್ ಕಾಂಚ ಕೆ ವೋ ಮಿರರ್ ಕೆ ಮೇ ಹಜಾರ್ ಟುಕಡೆ ಕರ್ ದೂ, ಮೇ ಹಜಾರ್ ಟುಕಡೆ ಕರ್ ದೂ ಔರ್ ಮೇ ಆಕೆ ಖಡಿ ರೇ ಜಾವ್ ತೋ ಮೇ ಕಿತ್ನಿ ದಿಖೂಂಗಿ? ಹಾ, ಮೈ ಹಜಾರ್ ದಿಖನೆ ಲಗೂಂಗಿ. ಪರ್ ಹರ್ ಮಿರರ್ ಮೈ ಜೊ ಯೇ ಬಾಹರ್ ಜೊ ಹೂ ಐಸಿ ಕೆ ಐಸಿ ಹರ್ ಟುಕಡೆ ಮೇ ನಹಿ ದಿಖೂಂಗಿ, ಉಪಾಧಿ ಬದಲ್ ಜಾವುಂಗಿ. ಮೈ ಕೈಸಿ ದಿಖೂಂಗಿ ಹರ್ ಮಿರರ್ ಮೇ? ಜಿಸ್ಕೆ ಜೈಸೆ ಟುಕಡೆ, ಜೈಸಾ ವಜನ್, ಜೈಸಿ ಶೈನಿಂಗ್. ಕೋಯ್ ಟುಕಡಾ ಖರಾಬ್ ಹೋಗಾ, ಕೋಯ್ ಟುಕಡಾ ದಾಗ್ ವಾಲಾ ಹೋಗಾ, ಕೋಯ್ ಟುಕಡಾ ಏಕ್ದಮ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೋಗಾ, ಕೋಯ್ ಬಡಾ ಹೋಗಾ, ಕೋಯ್ ಛೋಟಾ ಹೋಗಾ. ಉಪಾಧಿಯೆ ಬದಲ್ತಿ ಹೈ, ಏಕ್ ಹಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಬ್ ಟುಕಡೆ ಮೇ ಹೈ. ಐಸೆ ವೋ ಏಕ್ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಏಕ್ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಮ್ ಸಬ್ ಮೇ. ಹಮ್ ಐಸೆ ಟುಕಡೆ ಟುಕಡೆ ಟುಕಡೆ ಹೈ, ಹಮ್ ಸಬ್ ಮೇ ವೋ ಝಲಕ್ ರಹಾ ಹೈ. ಕೈಸೆ? ದೇಖಿಯೆ, ಸಬ್ ಭಿನ್ನ ಟುಕಡೋ ಮೇ ಹಜಾರ್ ಹಮ್ ದಿಖ್ತೆಂಗೆ ಹೈ, ಪರ್ ಹಜಾರ್ ಮೇ ಹೈ ಕೌನ್? ಹರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೋಲೆಗಾ ತೋ ಕ್ಯಾ ಬೋಲೆಗಾ? ವೋ ಏಕ್ ಹಿ ಮೈ ಹೈ, ಐಸೆ ಏಕ್ ಹಿ ಅಹಂ ವೃತ್ತಿ. ಪರ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಟುಕಡೆ ಕೆ ಅಂದರ್ ಕಾ ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ ವೋ ಕೈಸಾ ಹೈ? ವೋ ಬೋಲೆಗಾ, ಅರೆ ಭೈ ಮೈ ತೋ ಇತ್ನಾ ಛೋಟಾ ದಿಖ ರಹಾ ಹೂ, ಮೈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಹೂ, ಮೈ ಐಸಾ ಛೋಟಾ ದಿಖ ರಹಾ ಹೂ. ಔರ್ ಆಪ್ ಬಾಹರ್ ಜೋ ಭಿ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ಭೀತರ್ ಕಾ ಟುಕಡಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಹಿ ಹೈ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ನೆ ಮೇ. ಇಸಿಲಿಯೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಪರಮ ಜೀವ ಕೈಸಾ ಹೈ? ಭೈ ಮೈ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಹೂ, ಮೈ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಹೂ, ಮೈ ಛೋಟಾ ಹೂ. ತೋ ಉಸೆ ಆಕೆ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಭೈ ಐಸಾ ನಹಿ ಹೈ, ಜೋ ತೂ ಹೈ ವಹಿ ಮೈ ಹೂ. ತೇರಿ ಛೋಟಿ ಉಪಾಧಿ ನಿಕಾಲ್ ಲೆ, ಮೇರಿ ಬಡಿ ಉಪಾಧಿ ನಿಕಾಲ್ ಲೆ, ತೋ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೆ ಹಮ್ ಏಕ್ ಹಿ ಹೈ. ಐಸೆ ಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಬ್ ಜಗೆ ಅಹಂ ವೃತ್ತಿ ಸೆ ಏಕ್ ಹಿ ಹೈ. ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಮಜ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಕಿಯಾ ವೋ ಕೈಸೆ ಕಿಯಾ? ಯೇ ಮೈ ಹೂ. ಔರ್ ಕರ್ನಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಪೂರಿ ಜಿಂದಗಿ ಯೇ ಮೈ ಹೂ ಐಸಾ ಜೋ ಪ್ರವೇಶ ಸೆ ಘಟಿತ ಹೋ ಗಯಾ
वो जो घटित हो गया उसे प्रबोध समय यक्ष साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम एव अद्वयम। ये परमात्मा जो अहम वृत्ति से शरीर मन बुद्धि में प्रवेश कर गया वो परमात्मा क्या है, वो जो टुकड़ा जो है कांच का टुकड़ा, उसे जब समझ में आता है कि मैं ये जो भीतर जो अहम अहम मेरा छोटा हो रहा है वो सत्य नहीं है, मैं किसका प्रतिबिंब हूं वो मुझे जानना चाहिए, तो मेरा प्रवेश किसने मेरे अंदर प्रवेश किया है उसका सच्चा ज्ञान जब से मुझे जब मुझे होगा तब मुझे पता लगेगा कि ये मैं शरीर मन बुद्धि की उपाधि नहीं हूं, मैं तो बड़ा हूं। ये कैसे पता लगेगा? मात्र प्रबोध समये, मात्र ज्ञान से। इसीलिए हम कहते रहते हैं ज्ञात्वातम मृत्युमत्येति नान्यः पंथा। ये इसलिए ये ज्ञान को इतना महत्व महात्म्य देते हैं, ये इसलिए क्योंकि उसके बिना आपको समझ में आने वाली बात नहीं है। तो उपनिषद का दृष्टांत इतना सुनने के बाद परमात्मा में थोड़ी श्रद्धा थोड़ा समझ में आने लगा तो हमारे दृष्टांत बदलते रहते हैं। अब मुंडक उपनिषद का दृष्टांत आया, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। ये सब कुतर्क को यहाँ ये श्लोक में भेदन हो जाता है। हाँ, यथा पृथिव्याम, और आप सब उपनिषद के श्रवण किए हुए साधक है तो ज्यादा समझ में आएगा। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती। यथा सत्पुरुषात् केशलोमानी तथा क्षरात संभवंती इह विश्वम। भई ये विश्व कैसे उत्पन्न हुआ ये प्रश्न तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप पूछते ही है जानना ही है तो सुन लीजिए। उपनिषद कहते हैं यथोर्ण नाभि, जो मकड़ी होती है, गुजराती में उसको करोलिया कहते हैं, तो ये जो मकड़ी है वो लार से अपने ही पेट से अपने ही मुख से अंदर जो ग्रंथि होती है उससे एक तार निकालती है और वो पूरा जो उसका जाल है वो धीरे धीरे धीरे करके बुनती है और उसी में वो स्थापित रहती है, सेंटर में रहती है। इसी प्रकार उसी में तो मटेरियल कहाँ से लाई वो मकड़ी, तो बोले खुद के अंदर से ही। हाँ, पर जाला जो बनाते हैं ये जाला बनाने का ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो बोले वो ज्ञान उसके भीतर ही था, कोई और की मदद लेनी नहीं पड़ी। भाई जैसे मकड़ी ने अपने ही भीतर से मटेरियल निकाल के जाला बुना, इसी प्रकार ये आकाश से लेकर ये पुरुष तक का जितना भी है झुंबण दिख रहा है वो परमात्मा में से ऐसे उत्पन्न हुआ। ये मकड़ी के दृष्टांत से इतना समझ लीजिए कि जो निमित्त कारण है वो उपादान भी हो सकता है, इतना ही आपको हमें समझाना है। बोले समझ गए। अच्छा, किम काय स खलु किम उपादान मिति। जब उपादान की बात हो गई, अब कहते हैं कि कैसी कौन सी काया से बनाया, तो उसके लिए यही श्लोक दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। कौन सा? यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती। अच्छा, मकड़ी ने तो कर्म भी किया, दिख रहा है कि कर्म हो रहा है, और यहाँ तो परमात्मा को आप अकर्ता कहते हैं, कोई भी प्रकार का कर्म वह नहीं कर सकते, फिर भी उत्पत्ति बतानी है, तो उसके लिए दृष्टांत दिया यथा पृथिव्याम, जैसे पृथ्वी में धरा में औषधियां उग जाती है, घास जो उग जाता है, तो पृथ्वी पे चलेंगे पानी अपने आप जब आता है भेज होता है, तो जो बारिश के समय में बहुत सारी वनस्पतियां अपने आप उग जाती है। आपने बीज बोए क्या अंदर? हाँ, आपने तो बीज नहीं बोए, आपने लॉन भी उगाई होगी तो क्या होगा, उसमें कोई दूसरे प्रकार की भी घास उग जाती है और फिर उसको हम निकाल देते हैं तो वो अपने आप स्फुरित हो जाती है, कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं, कर्म नहीं, किसी और का कर्म नहीं, और वो वनस्पति जैसे फूट जाती है जमीन में से, ऐसे ये विश्व उत्पन्न हुआ है, आप इतना ही ध्यान रखिए। अच्छा, किमी है किम काय, फिर कहते हैं किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च। अभी आधार क्या है, तो आधार के बारे में एक दृष्टांत देते हैं। जब ज्ञानी जन संत हमें समझाते हैं तब एक दृष्टांत दिया जाता है कि भाई हजारों मील ऊपर पक्षियां हम यहाँ जो देखते हैं वो ही इतने नहीं है, अब ऊपर हिमालय में जाइए, नारायण आश्रम में जाइए तो बड़े पक्षी हैं, वहां बड़े बड़े हैं, तो वहां 9000 फीट पे वो आश्रम है और वो पक्षी तो उससे भी ज्यादा ऊपर उड़ रहा है, यानी ही इज फ्लाइंग एट द लेवल ऑफ 11000 या 10000, पर आप उससे भी ऊपर चले जाएंगे कैलाश मानसरोवर भी जाएंगे तो वहां भी पक्षी दिखेगा, तो वो पक्षी 18000 20000
की हाइट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था देखी है, वहां 18,000-20,000 पे सब जगह बर्फ ही होगा। बर्फ में अगर अंडा दे भी दिया तो सेवन कहां होगा, बर्फ के अंदर तो रख नहीं सकेंगे, ढक नहीं सकेंगे। तो ये जो पक्षियां ऊपर जो है उसके बच्चे अंडे में से निकलेंगे कैसे? परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि वो पक्षी एकदम ऊंचे आकाश में उड़ता है 20,000-25,000 की हाइट के ऊपर, और वहां से अंडा जब देता है तो रास्ते में गिरते वो जो उसका पतन जो होता है नीचे आना होता है, ग्रेविटी से नीचे ही आएगा, पर नीचे आते आते आते 10,000-9,000 पे तो वो फूट जाता है। ये जो फोर्स होता है वो फोर्स ही उसके सेवन का कारण बन जाता है। ये फोर्स से जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा से वो फूट जाता है और पक्षी उड़ने लगता है। ये कितनी व्यवस्था है। धरती पे ऐसा हमें दिखा, धरती पे जरूर नहीं है क्योंकि बर्फ नहीं है, यहाँ व्यवस्था है, आराम से वो अंडा सेवन होगा और बाहर आएगा। वहां व्यवस्था नहीं है, सभी प्रकार की ऑक्सीजन भी कम है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए परमात्मा ने ये। तो भाई पक्षी का हमें क्या समझना है, हमें वो पक्षी के ऊपर पीएचडी नहीं करना है, हमें ये समझना है कि भाई जैसे बिना कोई आधार अंडे में से बच्चा भी निकल सकता है, तो वो पक्षी और अंडे का आधार जो परमात्मा है वो बिना आधार क्या कुछ नहीं बना सकता, उसे आधार की जरूर है। बोले नहीं, उसे आधार की जरूर नहीं है। हाँ, अब समझ में आया कि सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे हो सकती है। आप इतना ही समझे कि हम हमारा प्रिय दृष्टांत लेकर उपस्थित हो जाते हैं। कौन से प्रिय दृष्टांत लेकर उपस्थित हो जाते हैं? तो बोले रज्जु सर्पवत ये उत्पत्ति हुई है। वो दृष्टांत बाद में, मैं आपको दृष्टांत की सीमाएं बताती हूँ। जैसे हमारा साधन का, हमारा साधन जैसे सशक्त हो जाता है, बुद्धि का साधन सूक्ष्म बुद्धि, ऐसे ये दृष्टांत बदलते रहते हैं। साधक को ध्यान रखना चाहिए, कोई भी एक दृष्टांत को लेकर जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि नहीं यहाँ ऐसा ही कहा है तो उत्पत्ति ऐसी ही होगी, यही कहते हैं तो ऐसी ही होगी। कभी साधक एक ही एक समझ लीजिए, साधक जिद्दी नहीं होता, जिद छोड़ दीजिए बस, तो ही आपको वो परमात्मा बहुत सरलता से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार परमात्मा में से ही ये सब उत्पत्ति हुई। और अब मांडुक्य उपनिषद आगे प्रवृत्त होकर बताती है कि हकीकत में उत्पत्ति हुई ही नहीं है। क्यों हुई नहीं है? जैसे स्वप्न सृष्टि निर्माण होती है, स्वप्न सृष्टि थोड़ी देर के लिए रहती है और चली जाती है, तो जागृत अवस्था में वो स्वप्न की कितने पदार्थ रहे आपके साथ? एक भी रहे नहीं। और उत्पत्ति हुई थी कि नहीं? उत्पत्ति तो हुई थी, दिख भी रही थी और हम उसमें एंजॉय भी कर रहे थे या दुखी भी हो रहे थे। उत्पत्ति दिख रही है तो हम और आप भी हमारे छोटे से संकल्प से, हाँ, हमारा संकल्प छोटा छोटा होता है, हमारी जो भी विषय की वासनाएं वृत्तियां होती है जागृत में जो भुगत नहीं सकते वो रात को हम भुगतते हैं। ये तो साइड वर्क है, ये तो बाई प्रोडक्ट है कि भुगती जाती है। मेन इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि दुखी हो या सुखी हो, स्वप्न जैसे भी आते हो उसकी बात नहीं, स्वप्न आते हैं या नहीं, यू आर दैट मिनी लॉर्ड, यू आर दैट परमात्मा। ये जो मन है, संकल्प करके पूरी सृष्टि आपके भीतर उत्पन्न होती है और उत्पत्ति का कार्य सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है और मेरे भीतर कुछ उत्पन्न हो सकता है, तो नक्की वो मेरे भीतर जो अहम वृत्ति से जो परमात्मा जो प्राविश्य अनुप्राविश्य, हाँ, प्रकर्षण अनुप्राविश याने ये कोई दरवाजे में से आने वाला प्रवेश नहीं है, ये कोई विशिष्ट प्रकार का प्रवेश है। नक्की अब मैं मान रही हूँ कि मेरे भीतर भी वो परमात्मा का प्रवेश हुआ है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों मेरे में हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? संकल्प से हो रहे हैं। मटीरियल कहाँ? मेरा ही। उपादान मेरा ही, निर्माण मेरा ही। स्वप्न सृष्टि में जो भी निर्माण किया, पूरी सृष्टि वो पूरी मेरी है। ओहो, मेरे में ही ये सब हो रहा है, मेरे में ही वो अहम वृत्ति से परमात्मा है। मैं ये अल्पज्ञ अल्प उपाधि वाली ये जीव जो जिससे समझती हूँ वो भी ये उत्पन्न कर सकती हूँ। परमात्मा का ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि रूप से भी अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया, उसको भी सपने आते हैं, वो भी उत्पन्न करता है। तो इमटीरियल ऑफ आइदर यू वेदर यू नो और डोंट नो, वो परमात्मा तो अंदर चुंबन हो ही रहा है। तो मेरा और आपके सचराचर कारण का समष्टि जो परमात्मा जो ब्रह्म है वो क्या ये उत्पन्न नहीं कर सकता, ये धारण नहीं कर सकता हमें? इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो हे परमात्मा,
श्रद्धा से आपको न मानने वाले कुतर्क जो करते हैं वो आपके उत्पत्ति के बारे में ऐसे कुतर्क करते हैं। और ये स्तुति करके ये स्तोत्र से मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसा कुतर्क मेरे मन में कभी न आए। श्लोक नंबर 6। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगतां

0: वो कुतर कर श्री पुष्पदंत जी को इतना अखर रहा है। देखिए, जिसने जान लिया है वो सहन नहीं कर सकता कि मैं जो परमात्मा का उपास्य हूं, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, मुझे हर्ज नहीं है। साधक का यह दृष्टिकोण हमेशा रहना चाहिए। मुझे आप अल्प कह लीजिए चलेगा, पर मैं जिसको, मेरा जो आराध्य देव है, मेरा जो उपास्य है, वो ब्रह्म है और वो बड़ा विराट है, बड़ा है, उसके बारे में तो कोई कम बोलेगा तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे बारे में कुछ भी बोलिए तो मुझे हर्ज नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर परमात्मा को, ब्रह्म को जानने चले हैं तो जिसे आप जानने हैं, जानते हैं, उसकी गरिमा बनाए रखना।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 7. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோர்சஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோர்சஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Bhakti Shakti Shanta, Vasal Mai Matao, Kisne Mai Veno, Aap Saru Bandhu. To Taittiriya Upanishad ko Madhyam Bana Karke, उपनिषद के प्रारंभ में जो किया गया मंगलाचरण उसको लेकर के चर्चा की जा रही है. तो ऋषि मंगलाचरण करते हुए शांति पाठ रूप जो मंगलाचरण है उसको करता हुआ संकेत करता है, सन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमः सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्रमः. यहां पर जो है सबसे पहले संकेत किया सन्नो मित्र. मित्र शब्द का अर्थ बतलाया. मित्र क्या है? जो मान्य करता है, सहायक है, उसका नाम ही है यहां मित्र शब्द. श्रेष्ठ है, ये सब शब्द बतलाए. उसकी प्रकार से फिर आगे किया वरुण, अर्थात वर्ण करने अर्थ में धातु से वर्ण शब्द बना वरुण, अर्थात जो उत्तम है, श्रेष्ठतम है, ऐसे उसका वर्ण करना, ये सब संकेत किया. आगे संकेत किया भवत्वर्यमा. अर्यमा शब्द से अर्थ बतलाया. अर्य माने होता है श्रेष्ठ, सुसंस्कृत, ज्ञान आदि आदि शब्द उसके बतलाए. तो वो क्या है? तो मां शब्द का अर्थ मापना, अर्थात हम जो कुछ भी मापते अपने मन के द्वारा ही संकल्पित होकर के मापते हैं. तो मां शब्द का अर्थ मन कहा. तो श्रेष्ठ मन या जो है अकुटिल मन, सरल मन, ये सब संकेत किया गया. ऐसा हमारा मन हो तो हमारे मन में ये सब जो है गुण प्रदान करने वाला जो देव है उससे प्रार्थना की गई. आगे संकेत किया कि इंद्र, सन्नो इंद्र. इंद्र क्या है? तो इंद्र शब्द को लेकर के बतलाया. ये बल का परिचायक, पराक्रम का परिचायक है, शौर्य का परिचायक है. ऐसे इंद्र को लेकर के यहां संकेत किया कि वो इंद्र हमारे में बल प्रदान करे. अब बल प्रदान करे तो बल क्या है इसको लेकर के चर्चा की गई. कौन सा बल हम चाहते हैं? तो यहां पर ऋषि जो है, ऋषि का तात्पर्य ही होता है वेद शास्त्र तत्वा अवगंतारा इति ऋषया मुनया वा. ऋषि हम किसे कहते हैं? जो वेद शास्त्रों के तत्व का अवबोध करने में लगा हुआ है उसका नाम है ऋषि या मुनि. इसी को दूसरे शब्दों में भी संकेत कर दिया जाता है. मननम शीलम एशान ते मुनया ऋषया वा. मनन करना, चिंतन करना ही हो गया है स्वभाव जिसका, उसे क्या कहते हैं? ऋषि मुनि. दूसरे अर्थों में कह सकते हैं जो अनुसंधाता है, अन्वेषण करता है उसको भी ऋषि शब्द से कहा। और आधुनिक को भाषा के अंतर्गत उसी को वैज्ञानिक कहा। वैज्ञानिक लोग भी अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, वो भी अनुसंधाता है, और ऋषि भी यही कार्य ऋषियों का है, वो भी अन्वेषण करने वाले, खोजने वाले। फिर कहने लगे कि वही वैज्ञानिक और ऋषि, इनमें दोनों शब्दों में अंतर क्या है? जब दोनों ही खोज करने वाले हैं, अन्वेषण करने वाले हैं, अनुसंधाता हैं, तो फिर वैज्ञानिक और ऋषि में कोई फर्क है क्या, या दोनों एक ही? कहने लगे अन्वेषण खोज की दृष्टि से दोनों में साम्य है, एकता है। फर्क किसमें है? फर्क भी बतलाया। फर्क इसमें है, वैज्ञानिक कार्य को प्रधानता देते हुए अन्वेषण करते हैं, उनके यहां कार्य की प्रधानता है। ऋषियों के यहां खोज करते हैं लेकिन कारण को वो प्रधान मानते हैं। ये अंतर है। एक कार्य को प्रधानता देते हुए अन्वेषण कर रहा है, एक कारण को जो है प्रधानता देते हुए अन्वेषण कर रहा है। तो ये ऋषि में अंतर है। तो ऋषि की लक्ष्यात्मक जो दृष्टि है वो किस पर है? कारण पर है। वैज्ञानिकों की जो लक्ष्यात्मक दृष्टि है वो किस पर है? कार्य पर है। इसलिए कार्यगत जो सिद्धांत होता है वो परिवर्तित होता रहता है, और कारणगत जो सिद्धांत है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो ऋषि यहां लक्ष्य उनका क्या है? ऋषियों का जो ऋषि शांति पाठ कर रहा है, मंगलाचरण कर रहा है, उसका लक्ष्य है कारात्मक, जो अपरिवर्तनीय है। तो इस प्रकार से अपरिवर्तनीय को लक्ष्य बनाकर के जब खोज करेगा तो उससे जो उसे लाभ होगा वो कैसा होगा? अपरिवर्तनीय होगा। और जब हम कार्य को परिवर्तनशील को लक्ष्य बनाकर के खोज करेंगे, उससे जो हम खोज करके निकालेंगे उससे जो लाभ होगा वो भी कैसा होगा? परिवर्तनशील होगा। ये अंतर है। तो ऋषि यहां पर, ऋषि का लक्ष्य समझ लो कि क्या है, तो कारण है। और आप जानते हो कारण की ही सत्ता होती है, कार्य की सत्ता केवल प्रतीयमान होती है या मायिक होती है या व्यावहारिक होती है। कार्य की सत्ता सर्वथा रहती नहीं और कारण की सत्ता सर्वथा रहने वाली होती, यह अंतर है। तो इसलिए ऋषि का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? अपरिवर्तनी या निरतिशय जो सुख है वही उसका लक्ष्य। उसकी प्राप्ति करने के लिए ऋषि चाह रहा है कि उसकी प्राप्ति कब होगी, तो उसके साधन क्या हैं, और उन साधनों से जब हम संपन्न होंगे तभी हम उसे प्राप्त कर सकें। इसलिए उसके साधन क्या हैं उनका ही यहां संकेत किया। वो साधन क्या हैं? तो उसके लिए उन्होंने सहयोग मांगा, और जो है मने सहयोग मांगते हुए मन की सरलता आदि मांगी, और उसी के साथ में बल मांग रहे। तो वो कौन सा बल? जिनके द्वारा, जिन साधनों के द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। तो बल को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो जो श्रुति कहती है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, श्रुति ने भी कहा यह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती। तो कहने ही लगे कौन सा बल? कई वैज्ञानिकों के पास भी बल है, और हमारे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भी बल है, अन्य लोगों के पास भी बल है। क्या ये बल? क्या उस बल को प्राप्त करने के लिए हमें मल्लशाला में जाकर के मल्लई करनी पड़ेगी, या शस्त्र अस्त्र इकट्ठे करने पड़ेंगे, या इसी प्रकार से अन्य साधन इकट्ठे करने पड़ेंगे? कहा ये सब बल नहीं। तो कौन सा बल? तो उसकी चर्चा कर रहे थे बृहदारण्यक श्रुति के अंतर्गत, संकेत किया पांडित्यम निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासीत। क्या कहा? पांडित्यम निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासीत। तो पांडित्यम, तो पांडित्य क्या है? तो आप जानते हो, सुनते रहते हो, सत और असत का विवेचन करने वाली बुद्धि जिसको पंडा बुद्धि कहते, और वह पंडा बुद्धि जिसमें है उसे पंडित कहते, और ऐसे पंडितत्व धर्म से संपन्न जो है, जो भाव है, उसका नाम है पांडित्य। तो ऐसे पांडित्य भाव से युक्त जो, और जब ये पांडित्य आ जाएगा, ये भाव जिसमें आ जाएगा, सद असद का विवेक करना आ जाएगा, तो उसके अंतर्गत क्या होगा? तो जहां साधन चतुष्टय की बात की गई, तो वहां क्या बतलाया? पहले विवेक और फिर वैराग्य। पांडित्य विवेक के बाद वैराग्य आता, इसलिए कहा पांडित्यम निर्विद्य। आगे निर्वेद शब्द की चर्चा करते, पांडित्य को प्राप्त करता हुआ वह वैराग्य को प्राप्त करता है, और ऐसे पांडित्य वैराग्य से संपन्न जो, वही इस बल को प्राप्त करने वाला होता। वो बाल्यन तिष्ठासी, तो वो क्या है? बाल्य भाव में स्थित हो जाता है, तिष्ठासी। और ऐसा जो बाल्य भाव में स्थित होता है, वही उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता। तो ऐसा बाल्यत्व, बाल्यत्व का मतलब अन्य जो है अवस्थाकृत बाल्यत्व नहीं, अवस्थाकृत जो बाल्यत्व है वो बाल्यत्व नहीं, वो बल नहीं, किंतु यहां पर क्या बाल्यत्व है? तो जहां पर विवेक वैराग्य से युक्तता होकर के जो उसी भाव में विद्यमान है, उसी को यहां बाल्य भाव से संकेत। अब जब ये बाल्य भाव आएगा तो क्या होगा? सत असत का ज्ञान हुआ। तो नियम है, जब हम जानते हैं कि ये पदार्थ सत है और ये असत है, तो किसी भी प्राणी की असत में फिर ईहा नहीं होती, वो सत पदार्थ को ही प्राप्त करना चाहता है, और सत पदार्थ की ईहा उसके अंतर्गत होती है, और असत पदार्थ से यह समाप्त हो जाता, इसी का नाम वैराग्य। असत पदार्थ से उसे वैराग्य हो जाता, और जब ये स्थिति हो जाती है, तब जो इसके अंतर्गत बल आया वही वास्तव में बल है, और उसमें उसका स्थित होना यही बाल्य भाव में स्थित होना, ये संकेत किया जा रहा। तो बाल्येन तिष्ठा से ये जो संकेत किया, इसको लेकर के ही हमने चर्चा की थी। जैसे सनत कुमार, सनत कुमार क्या है? तो वो हो इस स्थिति वाले, जिस स्थिति का यहां रूप बतलाया जा रहा, उस स्थिति से संपन्न वो सनत कुमार। सनत शब्द का अर्थ होता है शाश्वत, अर्थात जो सर्वदा रहे हमेशा, और कुमार शब्द का अर्थ बतलाया था कुत्सित मारे अति कुमार, माने मार शब्द माने काम, मार शब्द का अर्थ क्या है? काम। तो जिसने कुत्सित कामनाओं का त्याग कर दिया, जिसके अंदर कुत्सित कामना है ही नहीं। कुत्सित कामना का मतलब है राग द्वेष पूर्विका जो कामना होती है उसका नाम होता है कुत्सित काम, और राग द्वेष से रहित जो कामना होती है उसे कहते हैं अकुत्सित। इसलिए गीता भगवान ने क्या कहा? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तृष्व। जो धर्म का विरोध न करने वाला, तो धर्म का विरोध क्या है? तो वहां सीधा संकेत है, जहां कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं, लेकिन केवल कर्तव्यता को लेकर के, देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार क्रिया करने वाला, ठीक है, उसकी अपनी कोई ईहा नहीं, कोई राग नहीं, राग पूर्विका यह नहीं है, या द्वेष पूर्विका यह नहीं है, ऐसा जो काम है, ऐसी जो कामना है, ऐसी जो इच्छा है, उसका ही नाम क्या है? माने माने उसी को ही सनत कुमार करके कह दो, या बाल्य की जो है इच्छा कर। तो इस प्रकार से संत कुमार के अंतर्गत चर्चा की गई। और भी इसको देखें, गीता में भगवान ने बड़े ही सरस और सुंदर शब्दों में इन चीजों को बतलाया। इसलिए क्या कहा? मानव जीवन की सार्थकता कब है? तो इसके लिए भगवान ने संकेत किया कि भाई ये वाल्यत्व हमारे अंदर आ जाए और वाल्यत्व को लेकर के हम उस बाल्यवस्था का जो सुख है उसे प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन की सार्थकता। तो संकेत किया ये कब होगा, तो गीता में भगवान ने क्या कहा, भगवान ने संकेत किया सक्नोत्येव यह सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। अब देख लो जो श्रुति कहती है उसी को स्मृति प्रतिपादित करती है, हमारे इतिहास पुराण भी उसी को प्रतिपादित करते हैं। अब संकेत किया सक्नोति, समर्थ हो गया, सामर्थ्य वाला हो गया, शक्ति वाला हो गया। कौन सी सामर्थ्य आ गई, कौन सा बल आ गया, कौन सी शक्ति आ गई, तो क्या कहा, सक्नोति इह एव, एव शब्द भी जोड़ दिया, एव शब्द दृढ़ता का वाचक है। तो इह एव, इह शब्द का अर्थ किया अस्मिन लोके, इसी लोक में, इसी संसार में रहते हुए, अथवा अस्मिन शरीरे वा, इस शरीर में रहते हुए ही, इस देह में रहते हुए ही, सक्नोति माने जो समर्थ हो गया, सामर्थ्य वाला हो, सक्नोति ही सोढुम का क्या करने में समर्थ हो गया, का सहन करने में समर्थ हो गया, सोढुम माने सहन करने में। कहा अच्छा, तो सक्नोति ही सोढुम कब, तो कहने लगे आचार्य शंकर ने लिख भी दिया, का भी क्या इसकी जरूरत है, वृद्धावस्था आ जाएगी तब सह लेंगे। भाई वहां तो आचार्य शंकर लिखते हैं कि नहीं नहीं, सामर्थ्य रहते रहते और उसको सामर्थ्य को प्राप्त कर ले, सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर ले, उसी की श्रेष्ठता। लेकिन वैसे गथे कहा काम विकारा, सुस्के नीरे कहा का सारा, तो वो स्थिति आए तब कोई लाभ नहीं। इसलिए संकेत किया कि शरीर के रहते रहते, सामर्थ्य के रहते रहते, और फिर जो है हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाए, ये बल आ जाए। तो सक्नोति एव सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर के जीर्ण होने पर या शरीर के नष्ट होने पर के लिए बात नहीं कही, शरीर के रहते रहते, यह शब्द का प्रयोग कर दिया। एक यत्र एव कारा तत्र अन्यत्र नियम, जहां एव कार आ जाता है वो अन्य का व्यावर्तन करते हुए उसी वस्तु में बांध देता, कहीं क्रिया के साथ प्रयोग होता है एव का, कहीं कर्ता के साथ प्रयोग होता है, कहीं कर्म के साथ। जैसे आप सुनते हो अर्जुन एव धनुर्धरा, तो क्या किया, अन्य धनुषधारी हैं लेकिन वहां अर्जुन में बांध दिया, अर्जुन ही धनुषधारी, तो ये क्या है, कर्ता के साथ बांध दिया है। पांडुरेव शंख, शंख जो है कैसा होता, का पीला ही होता, तो ये जो है उसके माने कर्म के साथ बांध दिया है। तो इस प्रकार से कहीं भवत्येव क्रिया के साथ जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से यहां पर भी संकेत कर दिया, माने कहा इस शरीर के रहते रहते ही। और जैसे आप कहते हो कि वही सभी लोग आ जाना, लेकिन आपको अवश्य ही आना पड़ेगा, है ना, तो निश्चयात्मक कर दिया। ऐसे ही यहां पर भी माने शरीर के रहते रहते जो समर्थ हो जाए, तो किस में समर्थ हो जाए, किसको सहन करने में, तो वहां भी यही संकेत किया काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम का जो उद्वेग है, क्रोध का जो उद्वेग है, उनको सहन करने में जो समर्थ हो गया। ये आवेश आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आवेश आता है, आवेश की आंधी आती है तो क्या करती, आंधी वृक्षों को गिरा चली जाती, रुकती नहीं। वैसे ही यहां पर भी ये सदा रहने वाले भी नहीं है, आते हैं जाते हैं, लेकिन आते जाने में ही क्या करते हैं? हमको धराशायी कर जाते, हमारा नुकसान कर जाते। इसलिए कहा ऐसे इन आवेशों को, उद्वेगों को जो सहन करने में समर्थ हो गया, ये है बल, ये सहन शक्ति। अब यही चीज वहां पर संकेत की सनत कुमार शब्द को लेकर के सनत कुमार की भी वही स्थिति बतलाते हैं कि जो इस प्रकार से सदा जो है अपने में जो बाल्य भाव में स्थित रहने वाले हैं, ऐसे बल से युक्त हैं, तो उनका बल क्या है? संकेत किया। एक बार सनत कुमार जो थे हिमालय की उपत्यका में बैठे हुए थे, और हिमालय की उपत्यका में बैठे हुए थे और अपने इसी बल से युक्त होकर के शांत चित्त बैठे हुए, जब इसके अंतर्गत क्रोध नहीं, कामना नहीं, तो कोई हलचल भी नहीं हो, ऐसे अपने बाल्य भाव में